0: सटलिए पिछलाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए।
1: और जित से वे सुख पाई है सो साहेब सदा संभाली है, जित किता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल न कीचई ते लम्मी नजर निहाली है, जो साहेब नाल ना हारी है ते वेहा पासा काली है, पिछला है ऊपर काली है पिछला है ऊपर काली है।
0: जिनी गुरमुख

0: आप गवाए सेवा करे ता किश पाए माण। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो प्रवाण महला दूजा।
1: जो जी होए सो उगवे मुका कहे आवाओ, बीजे विख मंगे अमृत वेखो इओ न्याओ महला दूजा।
0: नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास, जिहा जाने ती हो वरते वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सहित विगास महला दूजा।
1: नाल एयाने दोस्ती वडारू से ने हो, पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ न थे महला दूजा। होए एयाना करे कम।

आप कराए साथी फिर आप कराए मार, इतना गलत इंजीनियर एक तुझे चले दिसे यार, आप कराए करे आप हो कैसे हो फिर पुकार, नान करना जिनकी।

आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंत उपाय के दिखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप बड़ी बड़ी क्या बढ़िया।

0: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: थोड़ी वे कैमड़िया कुछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिस्क सवाहे साई कर कमाम इनको छोड़ी ते न पाए नानके एक ही बाहरी हो दूजी नहीं जाए सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए।

अब आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधर 9870 किलोहर्ट्ज़ से तें का समय तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस वॉइस ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश तक दी सकना प्रोग्राम शो थे चुका है डिटेल्स कुछ न तरह थोड़ी देर में तमा हमेशा भगत कोराम साहब जन जे सदाबार आवाज में कलाम बुधना तें का पे तबसरो पेश कंदा पोए को जमा तमा कलाम बुधना खास खास खबरों प्रोग्राम जे आखिर में नशर कई वेंदियों या तो असि प्रोग्राम जी डिटेल्स तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधर हिंसर छो त भगत कोराम साहब के बुधूँ।

मोहम्मद कलम साहब जे मिठड़े आवाज में कलाम हो रही आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है। यह पेश है तबसरो। भारत ए जापान मंझ वर्कफोर्स मोबिलिटी ए तावन ते टोक्यो में एक गड़ियल सेमिनार कराया वो। सेमिनार जो इंतजाम भारत में जापान के एम्बेसी ए आसियान वन कंपनी लिमिटेड कराया। कोरियत ए रोजगार वजारत की सेक्रेटरी श्रीमती वंदना गुरनानी सेमिनार में मुख्य तकरीर डी। सेमिनार में जापान के पॉलिसी तैयार कगवान अदीबन इदार वर्कफोर्स मोबिलिटी हिस्सेदार बाहर थियल वर्कफोर्स मंझ लंबे अरसे के तावन लाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाय भारत ए जापान मंझ तय यकनुश्त कर वाकई में घणन ही अहम डिग्निटरीज हिस्सो वरतो से भारत ए जापान हुआ तैमा हुआ जापान के एवान जा एजी जड़ो कि श्री यमाशिता जो कि इंसाफ जो अगूणो वजीर तंहिंखां अलावा मिस्टर इनो इकोनॉमी जो सूबाई वजीर तंहिंखां अलावा ट्रेड वापार ऐं हुनर जो पिण श्री नकामूरा सवाइ तइलीम सकाफ़त रांदियुनि साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जो सूबाई वज़ीर श्री तादाशी मायदिया सवाइ जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो सरबराह श्री केंगो ओसुका सवाइ पाड़े मामलन जे वज़ारत जो डायरेक्टर जनरल नायब डायरेक्टर जनरल इन खां अलावा सुश्री नागमा मोहम्मद मलिक साए भारत में जापान में भारत ॾांहुं एम्बेसडर। पंहिंजी मुख्य तकरीर में पोरत ए रोजगार वजारत के सेक्रेटरी भारत के बदंदड़ रोल के एक भरोसेमंद आलमी वर्कफोर्स माहवार तौर रोशनी में आंदो। रोजोड़ी चो तो भारत की सरकार एक पारदर्शी उसूल ए स्केलेबल इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी पाथवे के अडन लाय कॉलबद्ध है। रोजोड़ी चो तो भारत की डेमोग्राफिक मजबूती इन खां अलावा सघारो स्किलिंग इकोसिस्टम ए इदारन में सुधार से मुल्क के स्किल पावर मैन पावर डेण लाय भरोसेमंद माहवार करे आणन था। खास करे आर्मी इक्तसादतन में तहने जापान पण अची थो वञे। हुन भारत जे लंबी सतह ते लंबी समत ते वर्कफोर्स प्रिपरेशन इकोसिस्टम के रोशनी में आंदो। तहने हिमायत ॾेई रहिया आहिनि ऊची तइलीम जा इदारा हुनरी तरबती इदारा उन खां अलावा अप्रेंटिसशिप सिस्टम डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म ऐं कैरियर सेवाऊं। हुन भारत जे आलमी लेबर मोबिलिटी फ्रेमवर्क खे रोशनी में आंदो। तंहिंमें अची थो वञे पाड़ी वज़रात जो ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म इन सभ खां अलावा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोग्राम मॉडल कैरियर सर्विस सेंटर्स इन खां अलावा वसीय स्किलिंग इकोसिस्टम जंहिंमें स्किल डेवलपमेंट ए एंटरप्रेनरशिप की वजारत अची थी वे। इन खां अलावा सूबाई ए

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। पेशन कुछ गीत कलाम आगाज कर रहे हूं। अनिता जयसिंघाणी जी आवाज़ से बोला सचल सरमस जा।

0: इस्तेमाल हुआ, रंग जूंगा दूं याद पवन।
1: आकाशवाणी जी सिंधी सरसा इरपेशन खास खास खबरों। नई दिल्ली में भारत ए इंडोनेशिया गडल कमीशन गडजाणी कई, तह में बचा व्यापार एनर्जी ए गांडापे ते वसी हिकमत अमली भाईवारी जू गाल क्यों। अमेरिका ईरान मंझ आर्थिक जंगबंदी के डिसंदे जिका कि नथी अचे, ओपेक प्लस प्लस फैसलो किया तो तेल के पैदावार के अधाया वो। अमृतसर डोनाल्ड ट्रंप है तो जैसी ईरान से करार न थे, अमन करार न थे, तेसी संदस मिल्कियत के जब्त रखे वो। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया के सदर ली जै म्यू हेन सियोंग सुक के मुल्क जो इंदड़ प्रधानमंत्री तौर नामजद किया। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव फ्रेंच ओपन में पहले पहरों ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। उन्हें इटली के फ्लेवियो कोबोली के मात दिनी।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलोवाट से बुधी रहा हिंसा संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरी रहा है वो तवासा गजानी थी सुबह सुबह जो भारतीय वक्त मुताबिक 10:30 बजे तेसी तीन दींदा इजाजत सभी गट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी

0: While other areas will continue to endure heat wave-like conditions. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka today. Interior Karnataka, Kerala, Mahi, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim are likely to experience heavy to very heavy rainfall. In tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam title, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling five-set final to win the French Open crowd at Roland Garros. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज. जीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं. अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका. इसमें आज आप सुनेंगे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजन. आपके साथ संगत कर रहे हैं सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 7:30 और पूरे 20 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त, आपकी आज की हम सफर अर्चना गुप्ता, जो लेकर आई हूँ आपके साथ कुछ बातें और आपके लिए बहुत सारे गीत।

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी सुबह मुस्कुराहटों से भरी हो और अगर कल का दिन थोड़ा सा मुश्किल रहा हो तो याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हिम्मत मत हारो ऐ मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारो ऐ मेरे दोस्तों, वक्त चाहे जैसा हो बदल ही जाता है।

जिंदगी में कई बार हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं कि खुद के बारे में सोचना और समझना करना भूल ही जाते हैं। हम सबको खुश रखने की अक्सर नाकाम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ और आज सुबह एक बस छोटी सी बात मैं आपके साथ कहना चाहूंगी, आपसे कहना चाहूंगी कि खुद को इतना मत थकाइए कि मुस्कुराना ही भूल जाएं। खुद को इतना भी मत थकाइए कि मुस्कुराना ही भूल जाएं। दूसरों को खुश करते करते अपने सपनों को ही भूल जाएं।

जी आप सुन रहे हैं गीता भाई गुड मॉर्निंग और आपके साथ आज हूँ मैं आपकी आज की मेरी होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। ये सारे गीतों के साथ और थोड़ी एनर्जी के साथ आज मैं लेकर आई हूँ ये एनर्जेटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ अपने लिसनर्स के लिए। जी कभी कभी सुबह के पहले किरण ना हमें ये याद दिलाने आती है कि कल चाहे जैसा भी था आज एक नया मौका है। ठीक वैसे ही जैसे हम आते हैं आपको जगाने और थोड़ी सी एनर्जी आपको देने। आप हमारे द्वारा यहाँ से प्ले किए जा रहे खूबसूरत गीतों को सुने, एनर्जेटिक सॉन्ग्स को सुने और जल्दी जल्दी अपना बिस्तर छोड़े और फटाफट से रेडी हो जाए अगले दिन की चुनौतियों के लिए।

सूरज हर रोज यही पैगाम देता है, सूरज हर रोज यही पैगाम देता है, अंधेरों से लड़ने का हौसला देता है, जो गिर कर भी संभल जाए रास्तों में उसी को जिंदगी का असली मजा मिलता है। दोस्तों, अगर आज आप किसी परेशानी में है ना, किसी बात को लेकर परेशान है, तो बस इतना याद रखिए कि जिंदगी की किताब में ये पन्ना भी एक दिन पलट जाएगा। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त भी निकल जाएगा। वक्त की धूप हो या मुश्किलों की आंधी, वक्त की धूप हो या मुश्किलों की आंधी, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। जो आज आपको रुला रहा है, कल वही आपको मजबूत बना रहा होगा।

कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:45 और पूरे 45 सेकेंड। दोस्तों कभी कभी अपने पेरेंट्स के चेहरे को गौर से देखिए, मतलब देखिए गौर से देखिए, उनकी मुस्कान में आपकी खुशी छिपी होती है, उनकी दुआओं में आपकी कामयाबी होती है। कहते हैं ना कि माँ की दुआओं से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, माँ की दुआओं से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, पिता की छाँव से प्यारा कोई किनारा नहीं होता। जो इन रिश्तों की कद्र कर ले उससे अमीर कोई इंसान नहीं होता। दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में अपने अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, क्योंकि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुक कर उठा लेना चाहिए।

बात करते हैं, एक छोटी सी मोटिवेशनल बात मैं आपसे के साथ जो है ना वो शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपके सपने बड़े हैं दोस्तों तो रास्ते भी थोड़े से कठिन तो होंगे ही, लेकिन याद रखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। गौर फरमाइएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है कि जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी मेहनत रंग लाए और आपके चेहरे की मुस्कान कभी ना जाए, यूं ही बरकरार रहे।

चुका है 7:57 और हमारा भी यहाँ से जाने का जो है ना वक्त नजदीक आ चुका है ऑलमोस्ट। तो जाने से पहले बस एक आखिरी बात आपसे कहूंगी कि सुबह की किरण बनकर हर गम को मिटा दीजिए, सुबह की किरण बनकर हर गम को मिटा दीजिए, जो बीत गया उसे दिल से भुला दीजिए, मिलेगी सफलता कदम कदम पर आपको, बस अपने हौसलों को जरा जगा दीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त, आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना, आपसे इजाजत चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा और इसी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हिम्मत रखिए, खुश रहिए और अपने दिन की शुरुआत प्यार, उम्मीद और जो है ना पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ का जो है वो रखिए अपने आसपास, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। दोबारा जल्द ही मिलूंगी आपसे इसी वादे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीएनएम 810 किलो हर्ट्ज पर सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा

0: साइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ, इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं

0: और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिज़्बुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS दबाज के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक के मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द है, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर जरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ

0: Iran fires waves of missiles at Israel, the first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पूर्वी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए इम्तहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फिलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी। इस मफाहमत नामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुमेंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के नफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ़ुज़ फराहम होगा, जबकि मुल्क भर में हिफ्ज़ान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मेयारी और सस्ती हिफ्ज़ान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्ज़ान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से। एनटीए की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीकाकार के तहत करवाया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाकई है। एनटीए ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताजा ऐलान के बारे में मालूम उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को एनटीए की जानिब से मंसूख कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के

0: जामे के लिए भी शराकत दारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुलेमानी ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का ये पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंगबंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम प्वाइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बैरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बैरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजामत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातून नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लेबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात की बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर्व ने इटली के फेलियो कोवेलो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकेल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोवेलो भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौमीन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपने शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास जेसीएम की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तहान मुनद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए इम्तहान के शहर से मुतालिक सिलसिला जारी कर दी है। ये इम्तहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीन पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और 20 जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने एटीए के फिल्मों को भी

0: 1965 में हरा कर स्वतंत्र खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे रूबी गोस्वामी द्वारा राग नट भैरव में गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे रूबी गोस्वामी द्वारा राग नट भैरव में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम आवर गेस्ट।
1: Time for a weekly program, Our Guest.
2: It's a pleasure and a privilege to welcome none other than Renu Khanna to the studios of All India Radio Akashwani. I'm sure most of us are familiar with the name Renu Khanna, especially people of a slightly older generation. Please don't mind Renu when I say that. But even for the younger

सर मैं आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम समाप्त फरमाइएगा बेगम मुमताज मिर्जा से नाते रसूल करीम। पेश करेंगे प्रोग्राम आज सवेरे 9:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 10 बजे सुनिएगा अखबार जर्री पर मैं अपनी प्रोग्राम शाने फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम समाप्त फरमाइएगा अमीर अहमद और अमीना बरनी की गायी गजलें। 10:30 पेश करेंगे हबीब तनवीर की शख्सियत और खिदमात के हवाले से खसूसी फीचर नए थिएटर का अपना नयापन और हबीब तनवीर। 11 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का, फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 बजे तक। 11:30 बजे पेश करेंगे रेडियो डॉक्टर, 12 बजे खबरें निश्चित की जाएंगे और 12:10 से आप लोग ले सकेंगे फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। इस दौरान हम पेश करेंगे प्रोग्राम तारीख साज, आज का मौजू है अजंता, तहरीर जनाब महमूद हाशमी की है। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

के सर झुकाते हैं, नजर में दौलत गुनाहगार भी महशर में बख्शे जाते हैं, गुनाहगार भी महशर में बख्शे जाते हैं।

چار عظمت عرض حجاز بڑھتی ہے

नजर से जितने हिजाब और उठते जाते हैं, नजर से जितने हिजाब और उठते जाते हैं।

दिल के स्याहान जगमगाते हैं, दमाग दिल के स्याहान

ये तेरी मौजे करम की है कार फरमाई, ये तेरी मौजे करम की है कार फरमाई, जहाँ के सारे चमनजार लहलाते हैं, जहाँ के सारे चमनजार लहलाते हैं। मुख्तार अज़हर, मैं एक ज़र्रा कूड़ा

पे सर झुकाते हैं, हे मजहरे अनवार खुदा रूए मोहम्मद, हे मजहरे अनवार खुदा रूए मोहम्मद, मखलूक है यूं सजदा कुना सूए मोहम्मद, मखलूक

अरे खुदा रूए मोहम्मद, समझे हैं जिसे हुक्म खुदा अहले जमाना, समझे हैं जिसे हुक्म खुदा अहले जमाना, दरअसल

0: और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था.
1: वेरी ट्रू. मूविंग ऑन टू द ईयर 1948, इंडिया स्टेट ओन्ड कैरियर एयर इंडिया लॉन्च इट्स वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन सर्विस विद अ हिस्टोरिक फ्लाइट ऑपरेटिंग बिटवीन मुंबई एंड लंदन.
0: वहीं 1997 में टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने पेरिस में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था.
1: इन 2002 सेरेना विलियम्स डिफीटेड हर सिस्टर वीनस विलियम्स टू विन हर फर्स्ट फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल. एंड इन 2004 अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट द ट्रांसिट ऑफ वीनस अक्रॉस द फेस ऑफ द सन वाज सक्सेसफुली ऑब्जर्व्ड ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 122 ईयर्स ऑन दिस डे दैट इज द 8th of June.
0: जी. और रेनू, अब आज के दिन से जुड़े उन अहम नामों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी थी.
1: जी.
0: आज पुण्यतिथि है भारतीय रंगमंच के उस महान शिल्पकार की जिन्होंने थिएटर को महलों और सभागारों से निकालकर गांव की मिट्टी से की सौंधी खुशबू से जोड़ दिया. हबीब तनवर प्रसिद्ध नाटककार, कवि, अभिनेता और निर्देशक थे. रायपुर में जन्मे हबीब तनवर ने 1959 में नया थिएटर की स्थापना की और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ मिलकर एक ऐसी नाट्य भाषा गढ़ी जो न पूरी तरह शहरी थी न पूरी तरह ग्रामीण बल्कि दोनों का एक जीवंत संगम थी.
1: जी. एंड टॉकिंग अबाउट हबीब तनवीर, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन उर्दू प्ले राइट्स, अ थिएटर डायरेक्टर, पोएट एंड एक्टर. And he was the writer of plays such as Agra Bazaar and Charandas Chor. And very true, you have spoken about his work with Chhattisgarhi tribals at the Naya Theatre, a theatre company he founded in 1959 in Bhopal. And here we will hear a little bit from Habib Tanveer ke muh se khud hi sunna chahenge ki wo kis tarah is ke bare mein baat kar rahe hain.
2: Saasgari Devi Nanad Muhalave Devar Babu.

0: डिंपल कपाड़िया आज 68 साल की हो रही है, लेकिन उनकी अदाकारी में वही जादू भी आज भी कायम है।
1: सामने आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह 9:50 हुए, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहान मुनद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख

लगाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY नाफिज करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नफाज के लिए आज एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करेगी। इस मुफाहमत नामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के नफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफिदीन को भारी भरकम सेहत अखराजात से माली तहफ़ फराहम होगा, जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निजाम भी मजबूत होगा। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनक़िद कराया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर्स के प्रिजाइडिंग और नायब प्रिजाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेम्बरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। यह तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से वसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जबानों में 146 इलाकाई जबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है।

0: जमीनों, मैंग्रोव और साहिली माहौलियाती निजाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निजाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। 2024 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक कलीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर ख़ारिजा सोबानियों ने कल नई दिल्ली में वजीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर के साथ वसीतर मुज़ाकरात किए। गहरे तहजीबी राब्तों का जिक्र करते हुए वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया जामे कलीदी शराकतदारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा और ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। दोनों वज़रा ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने भारत इंडोनेशिया जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और सियासत, दिफा और सिक्योरिटी के अलावा पहली तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती शोबे और आवाम से आवाम के दरमियान तबादलों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के उमूर पर तबादले ख्याल किया। इसराइल डिफेंस फोर्सेज के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए हैं। 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरान के सरकारी नशरिए ने भी इन हमलों की तस्दीक की है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। सदर ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान मिसाइल हमले रोक दे और मुज़ाकरात की तरफ लौट आए। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के साबिका हमले वाशिंगटन के साथ मिलकर नहीं किए गए थे। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि इसराइल के कई इलाकों में ईरान हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। शमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खत्ते में कई हफ्तों से जारी जंगबंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम प्वाइंट के तौर पर शिनाख्त किया था। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लाविओ कोबोली को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फ्लाविओ को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लाविओ कोबोली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर। पेश खिदमत है अखबार जदी पर मबनी प्रोग्राम शम फरोजा।

0: सेहतमंद इंसान सिर्फ वो नहीं है जो जिस्मानी तौर पर तनामंद हो, बल्कि हकीकी मानों में सेहतमंद वो है जो जिस्मानी, जहनी, समाजी और माशी हैसियत से फ़ाल और खुशहाल हो। गोया इंसान की सेहत का दारोमदार महज उसके अपने तंदुरुस्त होने पर नहीं है, बल्कि इंसानी सेहत दीगर बहुत से अवामिल से इबारत है। इन अवामिल में मुतवाजन गिजा और आलूदगी से पाक साफ फजा से लेकर बहुत सारे माशरती, सियासी और नफसियाती अवामिल शामिल हैं। सफाई सुथराई, पाकीजगी और तहारत किसी भी सेहतमंद समाज के लिए अजहद जरूरी है। सेहतमंद समाज सेहतमंद अफराद से बनता है और कोई भी फर्द सेहतमंद उसी वक्त हो सकता है जब वो सफाई का खुसूसी ख्याल रखता हो। सफाई सुथराई की इसी अहमियत के पेश नजर इस्लाम ने सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसे आधा ईमान करार दिया। सफाई उन चंद सिफात में से एक है जिस पर कुरान और हदीस में सैकड़ों मकामात पर जोर दिया गया है। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने तकरीबन 2000 से ज्यादा आयात में सफाई सुथराई का जिक्र किया है। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह साफ है और सफाई को पसंद करता है। एक दूसरी रिवायत में आपने सफाई रखने वाले को जन्नत की बशारत दी और सफाई सुथराई न रखने वाले इंसान को अल्लाह का मबहूस ठहराया। इंसान अगर नापाक रहे और अपने जिस्म की सफाई का ख्याल न रखे तो कई किस्म के जरासीम उस पर यलगार कर देते हैं और वो कई तरह के अमराज का शिकार हो सकता है। इस्लाम हमें तथीर माहौल के साथ साथ अपनी जिस्मानी सफाई की भी खास हिदायत करता है, लेकिन सफाई सिर्फ जिस्म की ही नहीं होती बल्कि रूह की सफाई भी उसी कदर जरूरी है। इंसान अगर रूहानी आलाइशों से पाक साफ नहीं तो जिस्मानी सफाई सिर्फ उस डब्बे की मानिंद है जो बाहर से तो बहुत खुशनुमा और अच्छा है लेकिन उसके अंदर गंदगी का ढेर है। इसीलिए हसद, जलन, कीना कपट, नफरत और अदावत, कमतरी या बरतरी का एहसास, किब्र गुरूर, तासुब और नाइंसाफी जैसी रूहानी आलाइशों और गंदगी से पाक होना भी वैसे ही जरूरी है जैसे कि जिस्मानी तौर पर पाक और साफ होना। जिस्मानी सफाई के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना भी जरूरी है। आप खानदान साफ रह लें, अगर आपके घर के इर्द गिर्द और आपके मोहल्ले में कूड़े का ढेर है तो आपकी सफाई मुकम्मल नहीं। सड़े हुए सेबों के दरमियान एक अच्छा सेब भी जल्द ही खराब हो जाता है। लिहाजा अपने समाज और सोसाइटी में भी सफाई सुथराई की उसी कदर जरूरत है जितनी के खुद आपके घर में, और इसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है। आप पहल करें, कारवां खुद ब खुद बनता चला जाएगा। एक हदीस का मफहूम है कि रास्ते से तकलीफदेह चीजें हटाना भी सदका है। मौजूदा दौर में जबकि पूरी दुनिया दिन ब दिन गंदगी का ढेर बनती जा रही है, जहरीली गैस, गली मोहल्ले में जा बजा बिखरे हुए कूड़े के ढेर, नुकसानदेह गजा और हिफ्जान सेहत के उसूलों से नावाकफियत आम है, ऐसे में सफाई सुथराई के इन रहनुमा उसूलों पर अमल और भी जरूरी हो जाता है। फर्द समाज और मजहब का नुमाइंदा होता है और लोग समाज की वही तस्वीर लेते हैं जो तस्वीर फर्द उनके सामने पेश करता है। आप भी अपने समाज, मुल्क और कौम के नुमाइंदे हैं। अगर आप गंदे रहेंगे तो दुनिया के सामने आपके समाज की भी गंदी तस्वीर ही जाएगी। लिहाजा सफाई सुथराई का ख्याल रखें और दूसरों से कहीं ज्यादा अपनी सेहत की खातिर सफाई रखें। सेहत आपकी है, इसीलिए सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी है। मशहूर मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, बेहतर होगा कि आप खुद को साफ सुथरा और चमकता दमकता रखें, क्योंकि आप वो खिड़की हैं जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं।
1: सुनिए, भी आप सुन रहे थे अखबार जर्री पर अपने प्रोग्राम शमे फरोजा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत गैरफिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। हुस्न गजल प्रोग्राम में आज समाज फरमाइए अमीना बरनी और अमीर अहमद की गाई गजलें। लीजिए पहले समाज फरमाइए अमीना बरनी से मीर तकी मीर का ये कलाम।

आज के हुसैन गजल प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमीर अहमद की आवाज में समाप्त फरमाइए अमीर मीनाई का ये कलाम।

हिंदुस्तानी ड्रामों के नामवर ड्रामा निगार और मायनास हिदायतकार हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खान था। हबीब अहमद खान ने यकुम सितंबर सन 1923 में वस्ती हिंदुस्तान के शहर रायपुर के एक मुतवस्सित खानदान में आंखें खोली।

अदबी माहौल ने ही हबीब तनवीर को होश संभालने से पहले ही शायर बना डाला। रायपुर का तहजीबी माहौल रोज बरोज की महफिलों और तकरीबों से मामूर रहता था। अक्सर बेशतर दावतें होती थी जिनमें शायरी और गानों का माहौल गर्म रहता। हबीब तनवीर ने लिखा है कि बहुत से गीत और मिलाद की महफिलें उन्हें अपनी नानी की वजह से याद है।

यूपी एमपी और बिहार के मुसलमानों का अपने त्योहारों और रसूमात का अपना एक कैलेंडर हुआ करता था और ये कैलेंडर अक्सर मौसमों के मुताबिक तय किया जाता था।

0: सन 1944 में मॉरिस कॉलेज नागपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद एमए के लिए हबीब तनवीर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन एक ही साल बाद बम्बई चले गए और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बतौर प्रोड्यूसर वाबस्ता हो गए। ऑल इंडिया रेडियो में दीगर प्रोग्रामों के साथ साथ उन्होंने कई ड्रामों की हिदायत के फराइज भी अंजाम दिए। मुंबई में रहते हुए उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे और कुछ में अदाकारी भी की। उसी दौर में वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। उस दौर से लेकर बाद के दौर तक हबीब तनवीर ने तकरीबन 9 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें गांधी भी शामिल है। मुंबई में रहते हुए हबीब तनवीर एक फिल्मी रिसाले की इदारत भी किया करते थे और साथ ही साथ थिएटर में भी काम किया करते थे। अपना खर्चा चलाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग फिल्मों की स्क्रिप्टिंग भी किया करते थे। मुंबई में हबीब तनवीर को एक दिन मैसूर के एक लड़के का एक खत मिला, जिसमें लिखा था, मैंने आपको और आपके काम को स्टेज पर देखा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हबीब ने मैसूर के इस लड़के को जवाब में लिखा, चले आओ। इन लोगों ने मुंबई में एक हिंदी थिएटर ग्रुप शुरू करने का मंसूबा तैयार किया। नामवर साइंसदान प्रोफेसर यशपाल उस दौर को याद करते हुए बताते हैं,
1: मैं कहा एक तो कहानी सुनाता हूँ उनकी जिंदगी की और मेरी जिंदगी की। जितने वे ओपरा हाउस में रहते थे, एक छोटा मकान था, वन बेडरूम छोटा सा मकान, जो पहले दीना सांगवी के होता था, उसके रहने के लिए दिया। मिला करते थे, मेरी नई नई शादी हुई थी, रहने को जगह नहीं थी। किसी दोस्त के यहाँ रात पहले कुछ दिन, उन्होंने क्या वो वापस आने वाले थे और कोई जगह थी नहीं, तो मेरी बीवी निर्मल और मैं अभी क्या गए जा करते थे। यार अभी भी एक दो महीने रह सकते तुम्हारे यहाँ? कहते खाना खिलाओगी? निर्मल ने कहा जरूर खिलाएंगे। निर्मल से पहले दोस्ती और भी हो चुकी थी, क्योंकि इनके यहाँ थिएटर की हमेशा रिहर्सल होती रहती थी घर में। एक बार इन्हें चिट्ठी लिखी लड़के ने मैसूर से कि मैं बम्बई आना चाहता हूँ, मैंने आपको देखा है बहुत अच्छा लगा है, तो उन्होंने कहा चले आओ। वो लड़के निकले सत्यु, तो सत्यु भी आके इन्हीं के पास रह गए। तो जब हम जाते थे वहां, तो कोई पोस्टर बना रहा है, कोई क्या हो रहा है, एक छोटा सा कमरा है, दो कमरे छोटे छोटे, और साथ में एक नौकर भी था। तो चलता ये था कि ये इनके दोस्त और वो नौकर आमतौर पे उधार पे, एक बार दुकान थी वहां खाना खाया करते थे, कभी कभी हमें भी ले जाते थे। हम उनसे पूछा, भाई उधार से खाते हैं, कितने दिनों से चल रहा है? कहते जाने दीजिए लाने दीजिए, जब होंगे पैसे दे देंगे, आपके बात करते हैं। तो बहुत आश्चर्य थे। तो हमने कहा कि जा रहे हैं, वहां रह गए। अब नौकर था वह, कभी घंटी बजती थी तो नौकर कुर्सी पर चढ़ के ऊपर से देखता था कौन है,

0: मैंने कहा क्या होता है? कहते देखना है मालिक मकान तो नहीं है, तीन चार महीने के किराए। It was an amazing intellectual feast being there. दुनिया के बारे में बात करनी, अपने बारे में बात करनी। एक बार निर्मल क्या गई, रिहर्सल हो रही थी, निर्मल मेरी बेबी, आओ निर्मल आओ निर्मल बैठो बैठो चाय पियोगी? क्या जरूर पियेंगे? अच्छा चमनी निकालो, चीनी के पैसे नहीं है। So that's the kind of thing, and yet such intensity going on, and it was a real privilege.
1: मुंबई में जब हिंदी थिएटर की तैयारियों में थे, तब इस मंसूबे पर सबने कहा कि मुंबई में इस किस्म का थिएटर मुमकिन नहीं है और आप लोगों को दिल्ली चले जाना चाहिए। चुनांचे ये दोनों लोग दिल्ली चले आए। दिल्ली पहुंचकर हबीब तनवीर ने मशहूर ड्रामा आगरा बाजार लिखा। उस वक्त हम दिल्ली के ओखला इलाके में एक झोपड़ी में रहते थे और खुले आसमान के नीचे ड्रामे की रिहर्सल किया करते थे। इस पर इस ग्रुप का नाम ओखला थिएटर रख दिया गया।

इस तरह नजीर अकबर आबादी की जिंदगी पर मबनी आगरा बाजार ड्रामे की रिहर्सल शुरू हुई और लोगों को यह ड्रामा बहुत पसंद आया। इसकी एक वजह नजीर अकबर आबादी की शायरी भी थी, क्योंकि उस वक्त तक लोग नजीर को कम जानते थे और उनकी शायरी भी मकबूल नहीं हुई थी। इसी दौरान इन लोगों की मुलाकात बेगम कुदसिया ज़ैदी से हुई, जिन्होंने सेमी प्रोफेशनल थिएटर शुरू करने का वादा किया। इसी असना में हबीब तनवीर को राडा यानी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से स्कॉलरशिप हासिल हुई, जिसकी वजह से 50 के अशरे में हबीब तनवीर ड्रामे की तकनीक में तरबियत के हुसूल के लिए चंद बरस इंग्लैंड में मुकीम रहे। उसी दौरान उन्हें जर्मन के शहर बर्लिन में कयाम का मौका मिला, जहां उन्होंने मुमताज जर्मन ड्रामा निगार ब्रेख्त के कई ड्रामे देखे। ये ब्रेख्त के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद की बात है। ब्रेख्त ने उनके फन पर गहरे असरात मुरतब

0: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हबीब तनवीर ने सन 1954 में आगरा बाजार नाम से एक ड्रामा स्टेज किया, जिसमें क्लासिकी दौर के अवामी शायर नजीर अकबर आबादी को खराज तहसीन पेश किया गया था और ये इनका ही लिखा था। नजीर अकबर आबादी गालिब से पहले के दौर के उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जिसके वो मुस्तहिक थे। पिछड़े तबके के लिए और आम मौजूआत पर शेर कहने वाले नजीर अकबर आबादी का बहुत सा कलाम उनके इंतकाल के कई बरस बाद शाये हो सका।
1: हर मुफलिस हो गदा है सो है वो भी आदमी, हर मुफलिस हो गदा है सो है वो भी आदमी, अशराफ और कमीने से बेशाहता वजीर है आदमी ही, साहिब इज्जत भी और फकीर।

0: रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स यानी के राडा से थिएटर की तरबियत हासिल करने के बाद हबीब तनवीर ने जब सन 1954 में आगरा बाजार का पहला शो दिल्ली में किया तो उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और नवाही इलाका ओखला के बाशिंदों को अपने ड्रामे में अदाकारी के लिए मुंतखब किया और बाद में उनका ये अंदाज जारी रहा।
1: इसी इसकी आंखों में छू लो, दिल्ली जा के जले पिलाओ,
0: खा वो रियासत छत्तीसगढ़ के कबायली हों या फिर ख्वाजा सरा की जमात, तरह तरह के लोग आगरा बाजार में 19वीं सदी के किसी भी बाजार के असल रंग को भरते नजर आते हैं। ड्रामे में जहां एक तरफ होली के रंग और मजहबी गीत होते हैं तो दूसरी जानिब मीर और जौक की शायरी भी हुआ करती थी और तंजिया और मिजाहिया फिक्रबाजियां भी। यूं तो इस ड्रामे की कहानी 19वीं सदी के शायर नजीर अकबर आबादी की जिंदगी के चंद पहलुओं को छूती है, लेकिन दरअसल इसका पस मंजर सन 1857 की आजादी की नाकाम तहरीक के बाद के जमाने को बखूबी पेश करता है।

0: और मुफलिस हो गदा।
1: इस ड्रामे की कहानी आगरा शहर के एक बाजार की है, जहां ककड़ी, लड्डू और तरबूज फरोख्त करने वाले अपना सामान फरोख्त करने में नाकाम नजर आते हैं। तभी ककड़ी फरोख्त करने वाले को ख्याल आता है कि अगर कोई शायर उनकी ककड़ी पर कोई शेर कह दे तो शायद उसकी ककड़ियां बिकनी शुरू हो जाएं। इस सिलसिले में वो बाजार के कई अदीबों से दरखास्त करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी दरखास्त मंजूर नहीं करता। फिर उसे नजीर अकबर आबादी के बारे में पता चलता है और वो न सिर्फ उनकी ककड़ी पर शेर लिखते हैं, बल्कि लड्डू और तरबूज बेचने वालों के लिए भी अशआर लिखते हैं और नतीजतन सभी की जबरदस्त कमाई शुरू हो जाती है।

थिएटर के फनकारों को जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से था अपनी मकामी जबान में मकालिमात अदा करने की आजादी दी। यहीं से इस सफर का आगाज हुआ जो आगे चलकर उनके मुनफरिद और इनकलाबी अंदाज की हिदायतकारी की पहचान बन गया।

फिर उन लोगों ने मिट्टी की गाड़ी नाम का एक नाटक उठाया और उसे ब्रेख्त के स्टाइल में किया। ये तजर्बा भी सबके लिए नया बल्कि काफी नया था, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान में ब्रेख्त को कोई नहीं जानता था। सन 1975 में उन्होंने चरणदास चोर के नाम से एक और ड्रामा लिखा जो बेहद मकबूल हुआ, और इस ड्रामे के बायस उन्हें सन 1982 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में फ्रेंच फर्स्ट अवार्ड से नवाजा गया। हबीब तनवीर की मशहूर तरीन तख्लीकात में आगरा बाजार सन 1954 और चरणदास चोर सन 1975 जैसे ड्रामे शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से दूसरे ड्रामों की हिदायत के फराइज भी निभाए।

0: इसके अलावा वो मुल्क के आला एजाजात से भी नवाजे गए, लेकिन शायद उन्हें सबसे ज्यादा याद इसलिए किया जाता है कि उन्होंने अपने ड्रामों में बहुत बड़े नामों के बजाय लोक फनकारों का इस्तेमाल किया और इन गलियों और बाजारों को ही स्टेज बनाया जिनकी कहानी वो बयान करते थे। चरणदास चोर हबीब तनवीर का सबसे मकबूल ड्रामा साबित हुआ जो तकरीबन 3 दहाइयों तक हिंदुस्तान और यूरोप के अलावा भी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर स्टेज किया गया।
1: यह कोई चोर भाग क्या है?
2: अरे चोर आता भूमि के थाक में चोरी करे बार है कि माल वाले घर जाए तो माल चला यह तुम चोर नहीं आए चोर न खोजे रहे ना जाओ जंगल झाड़ में खोज गए रंग का कारण में चोर को जुटा है।
0: तनवीर को जो बेशुमार एजाजात मिले उनमें सन 1969 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, सन 1983 में मिलने वाला पद्मश्री और सन 2002 में मिलने वाला पद्म भूषण भी शामिल है। सन 1972 में उन्हें राज्यसभा की रुकनियत अदा की गई।

0: स्टेज की दुनिया में एक जिंदा दास्तान की हैसियत से जाने जाने वाले हबीब तंजीर मुख्तसर अदालत के बाद बरोज दुशंबा 8 जून 2009 की सुबह भोपाल के नेशनल अस्पताल में खालिक हकीक से जा मिले। उनके इंतकाल के बाद नामवर फनकारा जोरा सैगल ने हबीब तंजीर की याद में मुनक्कदा एक महफिल में कहा था,
1: मेरे लिए तो हबीब जो वैसे दुनिया के लिए बहुत ग्रेट आर्टिस्ट था, क्रिएटर था, पोएट था, प्ले राइट था, मेरे लिए हबीब एक दोस्त था। हमारी उसकी दोस्ती और उसकी बीवी से मोनिका से जब भी बेटो हंसी से मिलता था, प्यार से मिलता था, प्यार बुलाता था। मेरे सराय में मैं और मेरी बेटी के हम कितने बार गए जहां के मोनिका ने एक लौकी सानन और पुष्का उसके हाथ का इतना लजीज होता था कि मैं आपको होता है मेरे मुंह में उसके पास।
0: मशहूर अदाकार फारूक शेख ने हबीब तंजीर की रहलत पर उनको याद करते हुए कहा था, हिंदुस्तानी थिएटर का एक मुकम्मल बाप हबीब साहब की मौत के बाद खत्म हो गया। मैंने उनके साथ काम नहीं किया लेकिन गाहे बगाहे उनसे मिला भी हूँ और जाहिर है कि जब मैं इस थिएटर की दुनिया से मुंसलिक हूँ तो उनके ड्रामे देखे हैं। उनके ड्रामे हमारे लिए एक सबक है। थिएटर की दुनिया का हर तालिब इल्म उनके ड्रामे देखे बगैर फनकार ही नहीं बन सकता। जिस मकसद और जिस लगन के साथ वो थिएटर करते थे वो अब दिखाई ही नहीं देता है। इस सतह के जीनियस फनकार और इंसान अब नापैद हो चुके हैं। वो हमारे दिलों में और थिएटर की दुनिया में ताहयात जिंदा रहेंगे।

0: लंदन के हम पुजारी, लंदन के प्रेम से कब हुए हैं आजाद।
1: सलाम, भी आप सुन रहे थे हबीब तनवीर की शख्सियत और खिदमात के हवाले से ये फीचर, नए थिएटर का अपना नयापन और हबीब तनवीर। सदाकार थे अली मोहतशम रजा और मोहम्मद आयतुल्ला, पेशकश अली मोहतशम रजा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशकश प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन को अपनी मुस्बानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हम ऑल इंडिया रेडियो की 90वें सालगिरह मना रहे हैं, यानी हमें 90 साल मुकम्मल हो गए हैं। अगर ऑल इंडिया रेडियो की तारीख पर नजर डाली जाए तो ये मतलब अगर हिन्दुस्तान में नशरियात की तारीख पर नजर डाली जाए तो 23 जुलाई 1927 को बिल्कुल इब्तदाई तौर पर दो ट्रांसमीटर से नशरियात का आगाज हुआ। एक ट्रांसमीटर बम्बई में था और एक कलकत्ता में, जिसका आगाज उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में किया था। उस वक्त इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 1930 में हुकूमत ने इसे अपने हाथों में ले लिया और इस तरह यह इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के तौर पर सामने आया। और फिर 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ गया। एक मकसद के तहत ऑल इंडिया रेडियो का क्याम अमल में आया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। ¶¶

8 जून 1936 को जिस दिन इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा, उसी दिन से एक मकसद था कि मास तक यानी बड़ी तादाद तक अपनी बात पहुंचानी है। एक मोटो रखा गया, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट, यानी तीनों चीजें हमें साथ लेकर चलनी है। लोगों को मालूमात भी देनी है, उनको एजुकेट भी करना है, उनको उनकी तफरी का सामान भी करना है, और ये सिलसिला 1936 से आज तक बरकरार है।

एक कंपनी के जरिए जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम दिया गया था, यानी आईबीसी। इसके बाद फिर ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बन गया और उसके बाद फिर इसको कहा जाने लगा 1936 में, जब इसे 1930 में हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद 1936 में आज ही के दिन इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ गया। जो मकासद लेकर हम चले थे उन मकासद में आज हम कामयाब हैं। साइंसी मैदान हो, जंग का महाज हो या खेत खलियान हो, हर जगह हम अपनी खिदमत दे रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं।

0: सेना की खिदमत के लिए प्रोग्राम हो, उनका मोरल बढ़ाने के लिए प्रोग्राम हो, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम हो, या खेत खलियानों के प्रोग्राम हो। बड़ी मजे की और दिलचस्प बात यह थी कि हर तरह के प्रोग्रामों को लोगों ने सराहा और हमारे सामईन, हमारे लिसनर्स का कॉपरेशन और ताउन हमें हमेशा मिलता रहा। जब हम कोई प्रोग्राम तरतीब देते हैं तो सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो ये ध्यान में रखता है कि हम किस तरह के लोगों के लिए प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। एजुकेशन का प्रोग्राम है, इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, या इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, सबको इस तरह से पेश किया जाता है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध होकर रेडियो ही को सुनता रहता है।
1: दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे कोई देखे, बेचैन जिगर बेताब नगर, कोई देखे कोई देखे।

देखो तो डरा क्यों झुकने लगा।

अब उसने एक चीज की इतना और आप तक पहुंचा दें कि 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया और कितनी खुशी की बात है आज आकाशवाणी 551 स्टेशन चला रहे हैं जो हिंदुस्तान की तकरीबन 98% आबादी को कवर करता है। यानी कि ये कहा जाए तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो ज्यादा से ज्यादा गांव दर गांव, कस्बा दर कस्बा, देहात दर देहात पहुंचता है और इसका मकसद एक ही है कि आवाम बेदार हो, खुद कफील हो और वतन की मोहब्बत उनके दिलों में इसी तरह सरगर्दा रहे।

बट नहीं सकता, ये जिस्म है भारत का कभी कट नहीं सकता। दीवान के हम हार

Vem de azad se lekar kanki ki vartak har mauke par आकाशवाणी ने अपनी फौजों का साथ दिया है, उनके जज्बात को बरकरार रखा और उनके हौसले को बढ़ाया है। अगर आज की तारीख की बात की जाए तो आकाशवाणी आज की तारीख में 23 जबानों में और 146 यानी 146 इलाकाई जबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। और जहां तक एक्सेल सर्विसेज की बात है तो आकाशवाणी का एक्सेल सर्विसेज डिवीजन 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर हिंदुस्तान की आवाज को पहुंचा रहा है। यह वाली बड़े फख्र की बात है कि हमारा ये मीडिया यानी ऑल इंडिया रेडियो आज भी मुख्तलिफ जरायों से मुख्तलिफ जराय ब्लाग में बहुत अहमियत का हामिल है। दुनिया से कदर की निगाह से देखती है, हमारा न्यूज का शोबा हो यानी खबरों का शोबा हो या फिर किसी भी प्रोग्राम का यूनिट, हर एक की अपनी अलग पहचान है, अलग शान है। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है, मंजिल अभी वो नहीं है जहां हम ठहर जाएं, अभी मंजिल दूर है, हमें चलना है और चलना है। चलिए चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। हमारी और आपकी ये दुआ होनी चाहिए कि रेडियो का ये सफर यूं ही बरकरार रहे और हम आपको इसी तरह से इंटरटेन करते रहें।

0: यार हम
1: उंगली मुट्ठी
0: अपनी जीत हो
2: यार। दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।
3: आकाशवाणी प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: प्रसारित किया जा रहा है। प्रोग्राम शुरू हो रहा है रेडियो डॉक्टर। स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का, कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो डॉक्टर में आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय और इस विषय के साथ हम हाजिर हैं प्रोग्राम में और आज बात करेंगे तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव। और इस विषय के बारे में आपके सवालों के जवाब और समस्याओं का समाधान देने के लिए स्टूडियो में हमारे पास आज एक बहुत अच्छा सा कहना चाहिए पैनल है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हैं मोना दीपा तालुकदार, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। और साथ में है जो डॉक्टर की प्रोड्यूसर शालिनी मित्तल, और रेडियो के जरिए जो है आप तक हमारे एक्सपर्ट्स घर पहुंच रहे हैं आपके। आप सभी अपनी बात रखिए, विशेषज्ञों से पाइए जानकारी। और अब शालिनी जी आप बताइए प्रोग्राम को
1: तो सीमा आगे बढ़ाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा इंट्रोडक्शन के लिए, और सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस विशेष अंक में, रेडियो डॉक्टर के विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जैसे सीमा ने बताया हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और हम कार्यक्रम का आरंभ कर चुके हैं, पर सबसे पहले जैसा विषय सीमा ने बताया आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ता है और ये कार्यक्रम जो है रेडियो डॉक्टर आपकी हेल्थ के लिए ही है।

ऑयल इनटेक हेल्थ रिस्क, तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, हर आयु वर्ग यहां तक कि युवा भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि मोटापे से मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि दो बातों पर जरूर ध्यान दें, हर दिन थोड़ा समय निकालें और व्यायाम करें, चलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो वो करें। दूसरा, अपने आहार पर ध्यान दें, अपने तेल में अस्वास्थ्यकर वसा और तेल को कम करें। हर महीने हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले तेल की मात्रा को 10% कम करें। ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी सेहत में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये तो वो बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की, और इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको विस्तार हम देना चाहते हैं आज के रेडियो डॉक्टर में। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो स्वागत करेंगे मोनी दीपा जी आपका। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल हैं FSAI में। तो और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन लिटिहा मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।

0: सबसे पहले कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री ने कही कि हमें ऑयल इनटेक रिड्यूस करना चाहिए 10%। तो मुनी दीपा जी आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले जान लेते हैं कितना ऑयल जरूरी है और फिर डॉक्टर संजय आप भी जरूर बताएं इस विषय पर।
1: जी, ये बहुत ही रेलिवेंट सवाल आपने पूछा है क्योंकि ICMR NIN ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस इश्यू किए हैं जिसमें एक एडल्ट मेल को पूरे दिन में 30 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे और एक फीमेल के लिए 20 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे का मानक निर्धारित किया गया है। तो इसके हिसाब से ये हमारी विजिबल फैट की लिमिट हमारे हमें ICMR की गाइडलाइंस में दिशा निर्देश किया गया है। तो यदि हम इसको महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से जो प्रधानमंत्री जी ने हमें 10% रिडक्शन का टारगेट दिया है वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 30 ग्राम पर डे को 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक महीने का हम टोटल 900 ml या रफली 1 लीटर तक निकाल सकते हैं, उसका 10% रिडक्शन करके हम 900 ml से 800 ml का टारगेट रख सकते हैं और एक पूरा परिवार इसको 4 से गुना करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा तो 3600 के करीब आएगा, जिसको हम लोअर फिगर में अगर रखेंगे तो 3.5 liters ऑफ ऑयल पर फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ 4 पीपल का अगर हम टारगेट रखें तो डेफिनेटली हम 10% रिडक्शन तक जा सकते हैं। और इस तरह से ही हम तेल का डेली हिसाब किताब और मंथली हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं।
0: तो सिर्फ हमें अपने पैसे का हिसाब किताब नहीं करना है, हमें इनटेक ऑफ ऑयल का भी हिसाब किताब बिल्कुल तरीके से करना है। डॉक्टर संजय कुमार, जैसा मैंने कहा हम जानना चाहेंगे, मोहित दीपा जी ने बताया कि 10% रिडक्शन किया जा सकता है, पर यह सवाल ये उठता है कि क्यों कम करना है, क्या हेल्थ जो रिस्क हो सकते हैं अगर बिना कैलकुलेशन के ऑयल इनटेक या फैट इनटेक किया जाए।
2: जी बिल्कुल जरूरी है, ये हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जो हमारा जो युवा पीढ़ी है आजकल, पहले हम लोग देखते थे जो ओबेसिटी जो थी वो पहले मिडिल एज या उससे आगे में होता था, लेकिन आजकल देखते हैं कि यंगस्टर्स भी इसके प्रभावित में आ रहे हैं। एडोलेसेंट एज ग्रुप जो है, मिडिल एज ग्रुप तो और ज्यादा इसमें, और सेंट्रल ओबेसिटी हम लोग आजकल देख रहे हैं जो कि जो विसरल फैट होता है, जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट होता है जो कि काफी घातक होता है, एज कम्पेयर टू दी जो वेस्टर्न पॉपुलेशन हम देखते हैं कि वो उनका फैट हर जगह पूरे लिम्स में और हर जगह पूरे होता है। तो ये जो विसरल फैट है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस फैट यानी स्किन के नीचे जो फैट होता है, तो विसरल फैट जो एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा देखा जाता है ये काफी घातक होता है। उसमें क्या होता है, आपका जो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, पेट मोटा हो जाता है लेकिन हाथ पैर पतले रहते हैं आपके। तो ये जो फैट है जो आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ है ये काफी घातक होता है और ये आगे चल के आपको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक या पांव में जो धुनिया है उसमें रुकावट आ जाना, आंखों के जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाना, अचानक से ब्लाइंड हो जाना, ये और इसके साथ साथ आपको कई सारी जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हो सकते हैं, और फिर ये आपको राइज देता है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर होने के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस, साथ में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि कमर के घुटनों की प्रॉब्लम, बहुत सारी अन्य बीमारी, इसके साथ साथ कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है काफी इसमें।
0: जी जी, तो बिल्कुल सही, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: हाँ मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं योगेश मौर्य बोल रहा हूँ मैडम, गोरखपुर से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है, आप प्रश्न करें, क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैडम मेरे दो सवाल है, ये जैसे 9 ml मैडम ने बोला है 900 ml एक आदमी को तेल खाना चाहिए
0: महीने में,
3: इससे कम खाते हैं तो क्या नुकसान है, और एक फिर सरसों का तेल हम फिर यूज करते हैं तो उससे क्या फायदा, क्या नुकसान है?
0: जी आपके प्रश्न हो गए, मुनी दीपा जी सुन रही हैं, बताए मैम क्या कहना चाहेंगे इनको?
1: नहीं, यदि आप इससे कम ऑयल में अपना सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सभी खाद्य पदार्थों में इनविजिबल फैट, इनहेरेंट फैट रहता ही है। ऑयल का या फैट का जो हम विजिबल कंजम्पशन करते हैं वो बेसिकली हम एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। तो यदि आप 900 ml कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं है, इससे कम पे भी आपका हो जाता है तो द लेस द बेटर। और दूसरा सवाल आपका था सरसों के तेल को लेके।
0: जी तो एक ऐसा ही मिलता जुलता आया है मैसेज भी, अमित टंडन जी ने मेरा से लिखा है कि क्या सरसों का तेल नुकसान करता है, हम सामने का निकाला हुआ तेल लाते हैं, तो कोई भी तेल, मेरा ये प्रश्न है जो दोनों को मैं जोड़ के पूछना चाहूंगी आपसे।

0: कि तेल का हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा तेल हमें खाना चाहिए और क्या देखें उसको खरीदते वक्त, ये थोड़ा सा बताएं
1: जी। किसी भी तेल का एक फैटी एसिड प्रोफाइल होता है, जो सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का रेशियो होता है, जिसको हम सैचुरेटेड फैट इज टू मूफा इज टू पूफा बोलते हैं। इसका एक रेशियो वेल डिफाइंड है, 1:1:5:1। इसका मतलब है यदि आप 1 ग्राम सैचुरेटेड फैट है आपके उस तेल में, तो उसमें 1.5 ग्राम मूफा एक आइडियल रेशियो है और उसी प्रकार से पूफा 1 ग्राम होना चाहिए। तो आप जब भी कोई तेल खरीदते हैं आप उसका फैटी एसिड प्रोफाइल चेक करें। ये प्रोफाइल आपको गूगल साइट्स पे या आईसीएमआर एनआईएन के साइट्स पे आप इजीली इस तरह के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चाहे आप सरसों का तेल लें, राइस ब्रैन ऑयल लें, सनफ्लावर तेल लें या फ्लैक्सीड ऑयल लें, आप उसका प्रोफाइल चेक करिए। यदि उसमें सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोफाइल इसके नियर बाय सिमिलर प्रोफाइल मिलता है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी तेल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल करें, क्योंकि कोई भी तेल अपने आप में कंप्लीट फैटी एसिड प्रोफाइल नहीं देता है। तो ऑलवेज गो फॉर ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल्स एंड रोटेशन ऑफ ऑयल्स इन अ मंथ।
0: जी, और ये लगभग ऐसा ही प्रश्न श्याम मित्तल जी ने पूछा था रोहिणी से कि हमें क्या कंटेंट्स देखने चाहिए ऑयल कंटेनर में बिफोर परचेजिंग। तो काफी कुछ हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, मैं बीपीसी बोल रहा हूँ, बीपीसी बोल रहा हूँ
0: जी। बीपीसी जी बताएं।
2: मेरा आज कोई प्रश्न नहीं है आपसे, जो आपने टेक्निकल एक्सपर्ट बना आज इन्वाइट किया इनको, उनसे मेरा एक सुझाव है, अगर इससे किसी तरीके से गौर किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। तेल तो हम लोग पहले से खाते हैं, इससे ओबीसी का सवाल नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जो हम आजकल जो प्रैक्टिकल जो ये जो वेस्टर्न जो फूड आ रहा है, जो डब्बावन चीजें ज्यादातर आती है, उनमें कोई ऐसा मापदंड नहीं है जो कि इसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। इन चीजों के सेवन करने से ओबीसी की प्रॉब्लम हमारे देश में ज्यादा पड़ रही है। थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का एक मैसेज भी आ गया है सामने, देख रहा है मुझे, अंकित सिंह ने दिल्ली से लिखा है कि पूरे दिन में एक व्यक्ति को कितना ट्रांस फैट अलाउड है। तो कहीं ना कहीं डिब्बा बंद, ट्रांस फैट, पॉली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये जो सब हम सुनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और डॉक्टर संजय से भी मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब जब हम अनसैचुरेटेड, पॉली सैचुरेटेड, ये सारी चीजें जो ट्रांस फैट, कितना नुकसानदायक होता है ये हमारे हृदय के लिए और बाकी ऑर्गन्स के लिए?
3: देखिए, इसमें अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं, खास करके जो ट्रांस फैट है या सैचुरेटेड फैट से, तो ये नुकसानदेह होता है। वैसे भी अगर आप कोई भी तेल ज्यादा मात्रा में, इवन अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, फैट मैटर, क्योंकि हमारे बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी एसिमुलेट करके वो फैट में स्टोरेज फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो खास करके जैसे अभी वीपी सिंह जी ने बताया कि डब्बा बंद खाना जो है हमारे पास, और जो आजकल फास्ट फूड का जो सेवन ज्यादा बढ़ गया है, आप देखेंगे बहुत फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जिसमें काफी डीप फ्राई चीजें मिलती हैं या नमकीन चीजें, या फिर जिसमें ट्रांस फैट वाली जो आइटम्स होते हैं, जिसको ऐसा तेल जो बार बार यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, वो भी आपके ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो आपने ये पूछा कि भाई टोटल इंटेक कितना होना चाहिए ट्रांस फैट का, तो WHO के हिसाब से 2.2 ग्राम होना चाहिए आपका 2000 किलो कैलोरीज के हिसाब से, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एक तो इंटेक ऑफ ऑयल ज्यादा होता जा रहा है, साथ में इनएक्टिविटी जो है हमारी बढ़ती जा रही है। बच्चे आजकल मोबाइल में ज्यादा समय बिता रहे हैं रेदर देन की बाहर खेलते कूदते, जो पहले हम लोग देखा करते थे। आजकल बच्चों को बाहर धक्के मार के भेजा जाता है, पहले धक्के मार के अंदर किया जाता
0: है। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब आपने, और यही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दो बातें हैं, सिर्फ अकेली नहीं, एक से नहीं काम चलेगा, बैलेंस फूड या ऑयल इंटेक कम करना है, लेकिन साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज पर भी उन्होंने जोर दिया है। कॉलर को ले लेते हैं और उसके बाद आगे बात पढ़ेंगे। हेलो।
2: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका लेडी डॉक्टर में।
2: आर्या जी को और शालिनी मित्तल जी को हाथ जोड़कर नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: दोनों डॉक्टर्स को मेरा सादर प्रणाम।
3: नमस्कार।
2: और रघुवंदर सिंह चाचा बोल रहा हूँ।

0: से मेरे दो सवाल है। ज्यादा तेल लेने से हमारे बॉडी के किस किस पार्ट पे सबसे ज्यादा असर होता है, और हमारे पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं, उसमें प्रोसेस्ड ऑयल भी होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ दो दो साल तीन तीन साल होती है, वो कितना नुकसानदायक है। नंबर टू, सीजन के हिसाब से भी ऑयल इनटेक लेना चाहिए या कि एज यूजुअल जो हम ले रहे हैं वो ले, कृपया बताने का कष्ट है। धन्यवाद, जय हिंद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब बताएं, ज्यादा तेल जो उन्होंने बोला कि प्रोसेस्ड ऑयल, ये सारी चीजों का कैसे हिसाब रखें?
2: देखिए, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन ये किया है कि भाई कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, इसमें जब हम कोई भी चीज खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वो पहले उसका डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, हमारे जो पथरी होती है उसमें, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर ये सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन जो ब्लड होता है ये लिवर में जाता है, वहां जाके इसमें फिर इसका चेंज होता है, लिवर में इसकी पैकिंग होती है या इसको स्टोरेज होता है। तो सबसे पहला ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो लिवर है, उसके बाद ही सारे ऑर्गन्स इसके, धीरे धीरे अगर आप ज्यादा मात्रा में फैट ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं या ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, और एक्टिविटी भी आपका कम है, तो ये धीरे धीरे आपका बाकी ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, और पूरे बॉडी का ये जो है ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स के जो जो उसकी लाइनिंग है उसमें वो चिपकने लग जाता है, और कभी कभी वो रप्चर भी हो जाता है, वो लाइनिंग में रप्चर हो जाता है, वहां एकदम से वो वहां पे टॉप जम जाता है।
1: सबसे पहला इंडिकेशन फैटी लिवर ही होगा डॉक्टर साहब?
2: हाँ जी, सबसे पहले यही होता है कि फैटी, इसमें भी दो तरह के हम लोग फैटी लिवर देखते हैं, जिसमें कि फैट आपके लिवर में है लेकिन वो डैमेज नहीं कर रहा है लिवर को, तो उसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं ब्लड में, तो उसमें देखते हैं अगर हम उसमें जो लिवर एंजाइम्स का जो मात्रा है वो 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है, वैसे 50 तक नॉर्मल लेते हैं, तो अगर 100 से ऊपर है तो फिर हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं, अदरवाइज हम उनको क्लोज फॉलोअप में रखते हैं, और अगर 50 से नॉर्मल रेंज में है तो भी हम उनको एडवाइस करते हैं कि इसको आप फॉलोअप में रहिए और इसको कोशिश करिए कि अपना वेट और अपना फैट इंटेक थोड़ा सा,
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं अगर फैटी लिवर के उसमें थोड़ा सा इंडिकेशन आता है तो।
2: एग्जैक्टली, आजकल कई ऐसे एंड स्टेज लिवर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि लिवर पूरी तरह खत्म हो गया, और जो इनफैक्ट है वुमेन में भी ऐसा हो रहा है कि, क्योंकि मैक्सिमम केसेस तो हमारे अल्कोहल लिवर डिजीज के आते हैं, लेकिन ऐसे वुमेन्स में भी आ रहा है कि जो अल्कोहल नहीं लेती, या मेल भी है जो कभी अल्कोहल नहीं लिया लेकिन उनको भी एंड स्टेज लिवर डिजीज हो गया लिवर पूरा, तो उस केसेस में ज्यादातर ये देखा गया है कि उनको कहीं ना कहीं फैटी लिवर रहा होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनको कभी ऐसा अल्ट्रासाउंड या LFT नहीं कराया, उससे उनको डिटेक्ट नहीं हुआ, और वो सीधा सीधा धीरे धीरे धीरे धीरे वो लिवर को डैमेज करता रहता है, एंड स्टेज में लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो गया।
1: मोहित दीपा जी, बहुत सारे हमारे श्रोता मैसेज के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं, धीरे धीरे करके शामिल कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑयल सही है, और जैसे चटर्जी जी मैंने भी पूछा कि सीजन के हिसाब से क्या ऑयल चेंज करना चाहिए, आपने ये तो बताया कि वी शुड मिक्स ऑयल, कुछ चेंज करते रहना चाहिए, बट सीजन से भी चेंज करना चाहिए क्या?
3: सीजन का इतना इसमें महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि यदि हम रोटेशन में ही ऑयल ले रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हमें बेसिकली फैटी एसिड प्रोफाइल देखना है तेल का, जो सीजनल वेरिएशन का फैक्टर उसमें नहीं अप्लाई होता। तो तेल अगर आप चेंज करते रहेंगे तो दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द एसेंशियल फैटी एसिड्स विच शुड कम थ्रू अ डाइट, तो सीजनल वेरिएशन को हम इतना मायने नहीं देते, परंतु ऑयल को चेंज करना और क्वांटिटी को मॉडरेशन में रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप घर पे भी जब तेल इस्तेमाल करें उसकी रिपीटेड फ्राइंग ना करें, उसको हाई टेम्परेचर पर फ्राई करके ओवर यूज ना करें, रेस्टोरेंट्स बाहर जाके भी जब आप खाना खाएं तो हमेशा देखें कि जो किस प्रकार का तेल जो फूड आउटलेट्स जो ओपन वेंडर यूज कर रहा है उसमें भी आप आंखों से खुली जांच करके भी आप पता लगा सकते हैं कि तेल कितना पुराना हो गया है। पुराना तेल बहुत गाढ़ा होता है, रंग भी उसका बहुत गहरा काले रंग का होता है, तो इस तरह की चीजों का हम विजुअल इंस्पेक्शन करके भी चेक कर सकते हैं। और ऑयल की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दें, ऑयल की क्वांटिटी को मॉडरेशन में रखें, सीजनल वेरिएशन का इतना महत्व नहीं रहेगा।
1: जी जी, एक और हमारे कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो,
0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चैनल चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी अग्रवाल सर,
0: मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है माँ के दूध की बजाय आजकल डॉक्टर कहते हैं कि पाउडर का दूध जो है वो दो डब्बे का दूध पिए, और डब्बे का दूध जब बच्चा पीता है तो बहुत मोटा नजर आता है, तो क्या वो आगे चल के वो मोटा बन सकता है, नुकसान देता है, कि उसमें शुगर भी ज्यादा होती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो आजकल चलन है लड़कियों का जो मोमोज और ये पैटीज और ये चाउमीन जो खाते हैं मैदा की चीज है, क्या उससे भी मोटापा बढ़ता है? कहते हैं कि भाई एक केला में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, लेकिन बच्चे केला इसलिए नहीं खाते कि उसका वजन बढ़ जाएगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो आदमी बच्चे मोटे हो जाते हैं, लड़की या लड़के आजकल नौजवान, वो अपना वेट लॉस करते हैं, क्या वेट लॉस करने से जो उनकी झुर्रियां पड़ जाती है, उनकी खाल लटक जाती है, वो कितनी हानिकारक है? बस बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछी हैं, छोटे बच्चे से शुरू करके वेट लॉस पे बात किए, फास्ट फूड पे बात किए। तो पाउडर का जो दूध बच्चों को दिया जाता है क्या हार्मफुल होता है, सबसे पहला जो उनका प्रश्न था।
2: हाँ जी बिल्कुल होता है, जहां तक होता है हो सके तो जो बेस्ट होता है बच्चे के लिए वो मदर का मिल्क होता है, क्योंकि उसमें ना तो आपके जो मिल्क की जो सारी जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं, इसके साथ साथ आपको ऐसे एंटीबॉडीज भी होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि जो डब्बे का मिल्क होता है उससे ओबेसिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और एंटीजेनिसिटी के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्पेशली जब आप न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू प्रोटीन है बच्चे के लिए, तो ये चीजें काफी नुकसानदेह भी हो सकती है बच्चे के लिए। और दूसरा इन्होंने बोला कि चाउमीन बर्गर पिज्जा चाउमीन
1: की बात,
2: तो ये हम देखा जाएगा कि हमारे इंडियन डाइट में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसफैट, जैसे डीप फ्राई चीजें हैं, छोले भटूरे हो गया या फिर प्रोसेस्ड फूड हो गया, समोसे हो गया, आजकल हम लोग उसका जैसे पूड़ियां हो गई, या जितना भी आप जो डीप फ्राई वाली चीजें हमारे इंडियन डाइट में भी हैं वो भी नुकसानदेह है। और जो प्रोसेस्ड फूड हो गया जैसे नमकीन हो गया या कुछ भी चीज एक्सेस में, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो नमकीन नमक ज्यादा हो या ऑयल ज्यादा हो, वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह करता है, तो ये भी चीज है। और जो झुर्रिया की बात की इन्होंने, देखिए मेरे ख्याल से वेट लॉस करने का सबसे जो फायदा है कि आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत फिट नजर आते हैं, और झुर्रियां धीरे धीरे वो अपना जो स्किन लूजिंग होती है वो खास करके तब होता है जब आप एक्यूटली यानी बहुत जल्दी आप वेट लॉस करते हैं। अगर आप धीरे धीरे करें, और वेट लॉस जल्दी भी करना भी नहीं चाहिए,
1: तो क्रैश लाइटिंग पे चले जाते हैं
2: तो उसके लिए आप धीरे धीरे वेट लॉस करें तो ये झुर्रियां भी नहीं पड़ती।
1: जी जी, हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में है?
4: नमस्कार शालिनी मैडम, यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी यशपाल जी, आप प्रश्न करें, हमारे विशेषज्ञ सुन रहे हैं।
4: आज आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है और थोड़ा डिफरेंट वे में लिया है, पैनल के साथ प्रोग्राम चल रहा है।
1: जी थैंक यू,
4: रियली गुड इनिशिएटिव,
1: थैंक यू सो मच। प्रश्न करना चाहेंगे आज के?
4: प्रश्न मेरा ये है, एक तो दो तीन आजकल मार्केट में आते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये अच्छे ऑयल माने जाते हैं, तो दूसरा ऑलिव ऑयल भी है, ये जो है इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल बिक रहा है, वो कितना करेक्ट है? और तीसरा ये भी बोलते हैं कि ऑयल जो होता है वो सीड ऑयल बेटर है नट्स ऑयल वाला, मतलब सीड्स जितने भी सनफ्लावर ऑयल है या राइस ब्रान है वो इतने अच्छे ऑयल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल और देसी घी और कोकोनट ऑयल ये बेस्ट है, तो थोड़ा सा ये
1: जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है यशपाल जी, और मोनी दीपा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैम प्लीज बताएं इसके बारे में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ऑर्गेनिकल, बहुत सारी चीजें हम रोज सुन रहे हैं मार्केट में, इसका जरूर हमें पता लगना चाहिए कि क्या फैक्ट क्या है, बताएं प्लीज।
3: जी, ऑयल प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फिल्ट्रेशन, और उसके बाद इसकी ब्लीचिंग की जाती है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है ऑयल प्रोसेसिंग में, जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके दौरान ऑयल के बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स इफेक्ट होते हैं, तो उस सेंस में यदि हम कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि उसको बहुत हाई टेम्परेचर्स पे नहीं प्रोसेस किया जाता, तो बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो रिटेन्ड रहते हैं, तो डेफिनेटली कोल्ड कंप्रेस ऑयल्स हेल्दियर रहेंगे किसी भी रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल से। और जहां तक आपने बताया ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का निश्चय ही फैटी एसिड प्रोफाइल बहुत बैलेंस्ड है, परंतु उस तरह का फैटी एसिड प्रोफाइल आपको किसी दूसरे चीपर वर्जन में भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल अपने आप में

0: बहुत एक्सपेंसिव हैं, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली। जैसे इनका प्रश्न था कि इंडियन कुकिंग के लिए ठीक है ओलिव ऑयल, देखिए इंडियन कुकिंग से हमारा मतलब है कि हम हाई टेम्परेचर पे जो फ्राइंग कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग प्वाइंट कम माना जाता है, तो ठीक है हम सॉटे प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली फ्राइंग करेंगे तो वो लो टेम्परेचर पे बहुत स्मोकी हो जाता है और वो लूज कर जाता है अपना अपने उसमें बहुत सारे चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो हीटिंग के होते हैं वो पहले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग प्वाइंट काफी हाई रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर तक वो मेंटेन करके रख सकता है अपना प्रोफाइल, उसमें इतने रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव चेंजेस नहीं होंगे, वही ऑक्सीडेटिव चेंजेस ऑलिव ऑयल में लो टेम्परेचर पे हो सकते हैं, तो फ्राइंग के लिए आप इस्तेमाल ना करें, परंतु बाकी प्रोसेसेस में सैलड्स में और बाकी जिसमें हाई टेम्परेचर कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल ठीक ऑप्शन है।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन-इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
0: आज हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि बहुत नाप तोल कर हमें अपने ऑयल को यूज करना है अगर स्वस्थ रहना है, और इसी तरह इशारा किया है प्रधानमंत्री जी ने, सभी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से बढ़ता मोटापा हमारे देश के लिए आगे चलकर किस तरह नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि बात यह भी हो रही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी शुरू में कहा, डॉक्टर संजय ने, कि सिर्फ मिडिल एज नहीं, इवन यंगस्टर्स, इवन बच्चे, वो भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मैसेजेस बहुत आ चुके हैं, सीमा लेना चाहोगे एक मैसेज?
2: बिल्कुल, एक मैसेज तो ये अश्विनी जी का दिल्ली से आया है, और ये इन्होंने कि किस तरह से खाना बनाया जाए, खाना बनाने के लिए भी कि तेल का किस तरह यूज किया जाए वो भी ये जानना चाह रहे हैं, जिससे कि ज्यादा नुकसान ना हो। और एक ये जो हमारे साथी हैं वो गुड फैट्स और बैड फैट्स के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, ये है संतोष दास, तो ये आप बताएं प्लीज।
0: जी, सिंपल भाषा में आम लोगों के लिए फैट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गुड फैट्स और बैड फैट्स। गुड फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स आते हैं जो हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते और उनको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है, और बैड फैट्स एक वो कैटेगरी है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इसमें मेन हिट लिस्ट में रहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, उसमें भी इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स को हम खासकर बहुत ही ब्लैकलिस्ट करते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल है बैड फैट्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये न तो सिर्फ एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, बट ये प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है उसकी मात्रा को भी साथ में कम करता जाता है। तो बैड फैट्स की कैटेगरी में सैचुरेटेड फैट्स और इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स आते हैं। सैचुरेटेड फैट हम ज्यादातर उस तरह के प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो जो एनिमल फैट से आते हैं, जैसे कि घी हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह के अंडा है, इस तरह के प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट रहता है। और गुड फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं, और ये बड़ी आसानी से, ये एसेंशियल फैटी एसिड जो डाइट के थ्रू लेना बहुत जरूरी है, हमें बड़ी ही आसानी से, जैसे पहले प्रश्न में भी बोला गया था, नट्स एंड सीड्स एक वो कैटेगरी है जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो यदि हम एलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल यूज करते हैं, लेते हैं, तो हमें ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसी तरह से ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के लिए वेजिटेबल ऑयल्स एक सोर्स है, सोयाबीन का तेल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सभी प्रकार के एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल्स में ओमेगा 6 की भी मात्रा पाई जाती है।
3: चलते चलते हमें आप दोनों अपने बात क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए लास्ट में? बोलिए दीपा जी।
0: जी, जब भी बाजार से तेल या फैट खरीदें तो पैकेट की लेबलिंग जरूर चेक करें। अगर पैकेट में आपको PVHO टर्म दिखता है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल शॉर्टनिंग या हाइड्रोजनेटेड ऑयल, इस तरह के टर्म्स देखें तो आप अलर्ट हो जाएं कि इसमें ट्रांस फैट डेफिनेटली है, और कई प्रोडक्ट्स को ट्रांस फैट फ्री क्लेम करने का भी उनके पास ऑप्शन रहता है। तो जिन प्रोडक्ट्स में 0.2 ग्राम से कम पर 100 ग्राम ऑफ द फूड प्रोडक्ट में ट्रांस फैट रहता है वो क्लेम करते हैं ट्रांस फैट फ्री फैट, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए जिसमें कम से कम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स की मात्रा कम रहे, क्योंकि इनके बहुत ही दूरगामी हैजार्डस हेल्थ इफेक्ट्स हैं। बाकी घर के खाने में आप ऑयल की मात्रा को मॉडरेशन में रखिए, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है, अपने टोटल ऑयल का 10% ऑयल रिडक्शन पर महीने करिए।
3: डॉक्टर संजय,
4: जी, साथ साथ में आपको जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो उस पर एम्फोसिस किया है कि हमें अपनी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, और वो हम सबसे पहले एक लाइट

0: वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम से आपको रनिंग या बहुत जॉगिंग में एकदम से इंडल्ज नहीं होना है, धीरे धीरे उसको आप बढ़ाते रहें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नियमित, मतलब आप उसको एक शेड्यूल बना लें और अपना नियमित तौर से आप उसको करें, और फिर साथ साथ में आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन भी करना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो साथ साथ में कैलोरी का जो आपको देखना है कि कितना कैलोरीज पर डे आप ले रहे हैं, तो कहीं क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपकी भूख भी ज्यादा लगने लग जाती है एंड आपका वेट उतना ही मेंटेन रहता है अगर आप ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो अगर वेट लॉस करना है तो आपको खाना भी थोड़ा सा उसी के हिसाब से, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी ध्यान रखें, सिर्फ फैट का ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट से भी फैट बढ़ता है बॉडी में। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी फैट में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को धन्यवाद देंगे। आज हमने काफी इन डेप्थ कोशिश की कि एक्सेस ऑयल इनटेक का क्या हेल्थ रिस्क होता है, तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर क्या नुकसान होता है, उस पर हम आप तक महत्वपूर्ण बातें अपने जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से पहुंचा सके। आप सभी को धन्यवाद। सीमा,
2: सबको धन्यवाद देते हैं और अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मोना दीपा तालुकदार जी थी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
3: नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। दिन के 12 बजे अब खबरें नशर होंगी।
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान में अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिजाइलों से हमले किए हैं। जनूबी फिलीपाइंस के मिंडानो खित्ते में आज सुबह सवेरे जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए जिसकी शिद्दत 7.8 थी। और टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इटली के फ्लेविओ कोमोली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर्स के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इब्तदाई इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी का कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद होगा जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। वजारती खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुबेनो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात किए। गहरे तहजीबी राब्तों का जिक्र करते हुए वजारती खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया जामे क्लीदी शराकतदारी जारी रहेगी जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा और ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। दोनों वजरा ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने भारत इंडोनेशिया जामे क्लीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और सियासत, दिफा और सिक्योरिटी के अलावा बहरी तिजारती, सरमायाकारी, फार्मा और हिफजान सेहत, डिजिटल तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती शोबे और आवाम से आवाम के दरमियान तबादलों में

0: में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि मानसून की पेशरफ्त से मुल्क के बाज खित्तों में बारिश होने का इम्कान है, जबकि दूसरे इलाकों में गर्म लहर के हालात बने रहेंगे। मौसमियात की एजेंसी ने पेशगोई की है कि आज साहली कर्नाटक में अलग अलग मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। अंदरून कर्नाटक, केरलम, माहे, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने मजीद कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कोकण, गोवा, लक्षद्वीप, वसती महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज मकामात पर भारी बारिश होगी। दरअसलाम मौसमियात एजेंसी ने यह भी कहा है कि साहली आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी राजस्थान के अलग अलग मकामात पर गर्मी की सूरत हाल बने रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में श्री माता वैष्णो देवी जी पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए अकीदतमंद कसीर तादाद में पहुंच रहे हैं। जम्मू से हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि यात्रियों की बड़ी तादाद के बावजूद यात्रा बिना रुकावट जारी है। टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ने इटली के फेलिवियो कोबिलो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीफ नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंग बंदी के बाद से पहली मरतबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। जुनूबी फिलीपींस के मंडियानो खित्ते में आज सुबह सवेरे जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ने इटली के फेलिक्सियो कोबिलो को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी दुकानों पर मबनी प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की पहली पेशकश जुबीन और श्वेता पंडित की आवाजों में देश दोहरी फिल्म का ये नगमा।

बंद हो गया और वो इलाका छोटी छोटी रियासतों में मुंकसिम हो गया। मगर खान का ख्याल है कि सकारत के दौरे हुकूमत में अजंता के गारे की बुनियाद पड़ी और उन्हें तकलील को पहुंचाया गया।

कुंडम ने की हालत में रहने के बाद सन 1819 में मद्रास फौज के कुछ अफसरों ने रंगा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर इसे इत्तफाकन दरियाफ्त किया।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। ये गाना फिल्म थी कश्मीर की कली, नामा निगाते सच बिहारी मौसीकार ओपी नैयर। अब सुनिए यशुदास और प्रीति सागर की आवाजों में आनंद आश्रम फिल्म का नगमा, नामा निगार इंदिवर मौसीकार श्यामल मित्रा।

0: सलाम इस दुगाने के साथ ही आज का फिल्मी दुगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। दिन का एक बजा है, आलमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने कहा कि इंडोनेशिया मशरकी मुल्कों से रابطے बढ़ाने की भारत की पॉलिसी का अहम सुतून है। चीन के सदर शी जिनपिंग शुमाली कोरिया के दो दिन के सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं। ईरान ने अप्रैल की जमबंदी के बाद से पहली बार इसराइल पर कई मिसाइल दागे हैं। जनूबी फिलीपींस में आज सुबह सवेरे मिंडानाओ खत्ते में 7.8 का ताकतवर जल्जला आया। और टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में इटली के फ्लाविओ कोवली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक करीबी सुतून है। जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुवाइनो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एच जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात किए। गहरे तहजीबी राब्तों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इंडोनेशिया जामे कलीदी शराकतदारी जारी रहेगी, जिससे ताउन के नए शोबों में इजाफा होगा और ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। दोनों वजरा ने कल 8वें भारत इंडोनेशिया कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने भारत इंडोनेशिया जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और सियासत, दिफा, सिक्योरिटी के अलावा बहरी तजारत, सरमाएकारी, फार्मा और हिजान सेहत, डिजिटल तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती शोबे, आवाम से आवाम के जरिए तबादला ताउन को मजीद मुस्तकम करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले दिन में जनाब सुवाइनो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजर हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग दो रोजा सरकारी दौरे पर शुमाली कोरिया पहुंचे हैं। ये जनाब शी जिनपिंग का तकरीबन 7 वर्षों में प्योंगयांग का पहला दौरा है। चीनी सदर के दौरे का मकसद अपने देरीना साथी शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है, जो हालिया वर्षों में रूस के साथ ज्यादा करीब हो गया है। तवक्को है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के दौरान इकतसादी ताउन, कोरियाई जजीरेनुमा से वाबस्ता सिक्योरिटी के मामला और शुमाली कोरिया चीन और रूस के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया मशरिकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी का अहम सुतून है। चीन के सदर शी जिनपिंग शुमाली कोरिया के दो दिन के सरकारी दौरे पर गए हैं। ईरान ने अप्रैल की जंगबंदी के बाद से पहली बार इसराइल पर कई मिसाइल दागे हैं। जनूबी फिलिस्तीन में आज सुबह सवेरे मिंडानाओ खित्ते में 7.8 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। और टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वरेविन ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कवोली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। ये थी इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने दिन का 1:15 हुआ चाहते हैं। यहां हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। अब से कुछ ही देर बाद यानी दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

श्रोताओं, 1968 में रिलीज हुई फिल्म नीलकमल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और 1968 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 16वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में नीलकमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राम महेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजकुमार को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शशिकला और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता महमूद सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए। और वहीं वहीदा रहमान को

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, नीलकमल फिल्म का संगीत रवि शंकर शर्मा द्वारा रचित था और इसके गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा, जिसे हम ऑलमोस्ट हर शादियों में सुनते हैं, हमें हर बार भावुक कर देता है। इस गीत के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए मोहम्मद रफी को नामांकन प्राप्त हुआ था। इस फिल्म के अन्य गीतों की बात करें तो वो भी एक से बढ़कर एक साबित हुई।

आपको बता दें कि फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और रहस्य पर आधारित है। एक आधुनिक कॉलेज की लड़की सीता यानी वहीदा रहमान नींद में चलने यानी स्लीप वॉकिंग की अजीब बीमारी से ग्रस्त है। नींद में अक्सर वो एक पुराने किले के खंडरों में पहुंच जाती हैं, जहां उसकी पिछले जन्म की यादें और अधूरी प्रेम कहानी छिपी हुई है। पिछले जन्म में वो एक राजकुमारी नीलकमल थी और चित्रसेन नामक एक मूर्तिकार से प्रेम कर बैठी थी। राजा द्वारा चित्रसेन को दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाने के कारण उन दोनों का प्रेम अधूरा रह जाता है। वर्तमान जीवन में राम नाम का एक व्यक्ति सीता को बचाता है और बाद में दोनों का विवाह हो जाता है, जिसके बाद सीता के पिछले जन्म का रहस्य खुलता है।

श्रोताओं, फिल्म नीलकमल की निरंतर लोकप्रियता का कारण अलौकिक तत्वों, जटिल रिश्तों और मनमोहक अभिनय का अनूठा मिश्रण है। फिल्म पुनर्जन्म, अमर प्रेम और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं जैसे विषयों को कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोती है, जिससे एक ऐसी सम्मोहक कहानी का निर्माण होता है जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है।

चित्रसेन के राजकुमारी नीलकमल के प्रति अमर प्रेम पर केंद्रित अलौकिक कहानी में एक रहस्यमयी रंग भर देता है, जिससे यह अपने समय की अन्य रोमांटिक फिल्मों से अलग पहचान बनाती है। वहीदा रहमान द्वारा सीता के किरदार में निभाई गई भावनात्मक गहराई, राजकुमार द्वारा चित्रसेन के रूप में किया गया दमदार अभिनय और सहायक कलाकार

इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ इस फिल्म से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अब अपने होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। कुछ ही देर में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, मैं आकाशवाणी हूं। खबरों के नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 साल की विकास यात्रा से चानना पाया। उन्होंने कहा, गरीबों को वांझे वर्ग की भलाई देश में हो रही तब्दीलियों के केंद्र च। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चंडीगढ़ में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय प्रीक्षा एजेंसी ने 21 जून में होने वाली नीट यूजी मुड़ प्रीक्षा लिए शहरों की जानकारी जनता कर दी है। देश का भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। भारत पलके तो इंदौर ब्रिक्स खेतीबाड़ी कार्य समूह और ब्रिक्स खेतीबाड़ी मंत्रियों की मुख्य मीटिंग की मेजबानी करेगा। हुण खबरां विस्तार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 साल की विकास यात्रा उत्ते चानना पाया है। श्री मोदी ने अज एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि इस समय दौरान देश ने बहुत सारिया तब्दीलियां देखिया और गरीबों के वांझे वर्गों की भलाई इन तब्दीलिया के केंद्र च रही है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा सरकार लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और यकीनी बनाने की कोशिश रही है कि विकास के लाभ दहाकिया तो पिछे रह चुके लोगों तक पहुंच सकन। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता सीधा लाभ तबादला स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत वर्गी हर पहलकदमी का उद्देश लोगों के मान और मौके को यकीनी बनाना है। टेक्नोलॉजी ने गरीबों के जीवन पद्धर में सुधारण च अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीधे लाभ तबादले और डिजिटल साधना राही सहायता लोगों तक सीधे और पारदर्शी ढंग पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्तिगत शक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जन आंदोलन बन गई है। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 साल का समा पूरे देश में करोड़ों वांझे परिवारों के जीवन च मान सम्मान सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लियाने वाला नवा अध्याय साबित होया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्गिया पहलकदमियों ने मुश्किल हालात में करोड़ों परिवारों को मजबूत किया है। हरियाणा विधानसभा वालों करवाई जा रही भारतीय खेतर के उत्तरी जोन 2 राष्ट्र मंडल संसदीय संघ CPA कॉन्फ्रेंस की अब चंडीगढ़ की शुरुआत की जाएगी। यह कॉन्फ्रेंस 2 अप्रैल तक जारी

0: उप आक्रामक खबरा के विचार प्रदान करता है। इस दौरान आकाशवाणी जलंधर वालों अज केएल सहगल ऑडिटोरियम विखे उप शास्त्री संगीत समारोह एक शाम शास्त्री संगीत के नाम करवाया जा रहा है। भारत च आकाशवाणी के प्रसारण के 90 साल पूरे होने समाप्त यह संगीत समारोह शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी के प्रोग्राम मुखी परमजीत सिंह ने दस्सिया कि शास्त्री संगीत के वख-वख रूपां च गायन के नाल नाल साजां की जुगलबंदी भी पेश की जाएगी। भारत मध्य प्रदेश के इंदौर च अज तो आउंदी 13 जून तक हो जा रही ब्रिक्स खेतीबाड़ी कार्य समूह ते ब्रिक्स खेतीबाड़ी मंत्रियों की अहम मीटिंगां की मेजबानी करेगा। अज भोपाल च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे हुए खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्रिक्स दीआं इह मीटिंगां इस साल भारत की प्रधानगी हेठ कीतीआं जाणगीआं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को दुनिया की लगभग 42% खेती योग जमीन है और यह देश कौमांतरी खुराक उत्पादन का तकरीबन 45% हिस्सा भी पैदा करते हैं। ईरान च भारतीय दूतघर ने भारतीय नागरिकों खिते हाल ही हुए घटना चक्कर के मद्देनजर ईरान की यात्रा तो बचने की सलाह दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दूतघर ने इस समय ईरान च मौजूद भारतीय नागरिकों को उपलब्ध आवाजाई के साधनों राही देश छोड़ने की सलाह दी है। खास खबर एक बार फिर सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 साल की विकास यात्रा से चानना पाया। उन्होंने कहा गरीबों के वांझे वर्गों की भलाई देश हो रही तब्दीलियों के केंद्र च। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अज चंडीगढ़ च राष्ट्रीय मंडल संसदी संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 21 जून में होने वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लिए इश्तहारा की जानकारी जारी कर दी है। देश का भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होने के जश्न मना रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खबर का यह बुलेटिन खत्म होता है। सादा अगला प्रादेशिक खबर का बुलेटिन शाम 6:20 से होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदय से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। और आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहबूद के सरकार के 12 साल के सफर को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदय से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुंचे जो कई दहाइयों से पीछे रह गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों की अजमत वकार और मौकों को यकीनी बनाने के मकसद से ही जनधन अकाउंट्स, फायदों की बराह रास्त मुंतकली, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम किए गए। जनाब मोदी ने कहा कि गरीबों के बेहतर मियारे जिंदगी को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम रोल अदा किया है। दही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे मुल्क में पिछले 12 साल के दौरान गरीबों की बहबूद, करोड़ों महरूम गरीब कुंबों की जिंदगी में अजमत, वकार, सलामती और खुद एतमादी का एक नया बाब साबित हुआ है। जनाब चौहान ने इस बात को उजागर किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे इकदाम से करोड़ों कुंबों को दुश्वार हालात में कुव्वत और ताकत मिली है। मगरबी बंगाल सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली है जो रियासत में हिजान सेहत के दायरे को वसत देने की समत एक नुमाया कदम है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल सरकार आज नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने वाले हैं। साबका तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को रियासत में नाफिज नहीं किया गया था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए इंसानी सेहत तक मसावी रसाई के वसूल में एक अहम संगी मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहम मुस्तफीन को

0: राशि कुंदा 5 लाख रुपए तक के सानवी और आला दर्जे के इलाज की सहूलत फराहम करती है। बाहरी बंगाल मरकज के जेरेंसम इलाकों समेत इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। स्कीम के तहत 36,000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पैनल में शामिल है। इस अब तक 44 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसके आगाज के बाद से अब तक ये स्कीम भारत के जान सेहत के शोबे में कायापलट, इलाज के अखराज में नुमाया कमी लाने और सरकारी और निजी अस्पतालों के एक वसी नेटवर्क के जरिए मियारी इलाज तक रसाई को बेहतर बनाकर भारत के सेहत के शोबे में तब्दीली की बुनियाद बनकर उभरी है। आकाशवाणी से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: बाहरी बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सरकारदा लीडर जहांगीर खान को आज सुबह सवेरे नेपाल सरहद के नजदीक गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि वो सरहद पर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ के अहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान को मजीद पूछताछ के लिए कोलकाता लाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से कबल गुज़श्ता चंद हफ्तों से यह कयास आरई की जा रही थी कि वो कहां है। इससे कबल कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने 5 FIR के मामलों में उनके लिए उबूरी तहफ्फुज़ की मुद्दत में तौसी करने से इनकार कर दिया था। रियासत में सरकार बदलने के बाद कई गांव वालों ने जहांगीर खान के खिलाफ जमीन हड़पने और जबरन रुपया वसूल करने के इल्जाम लगाए थे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जनाब रॉय ने न सिर्फ ऐवान बाला से बल्कि तृणमूल कांग्रेस की इब्तदाई रुकनीत से भी सुबकदोश हो गए हैं। एक प्रेस नोट में जनाब सुखेंदु शेखर रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर बदनवानी, खवातीन के खिलाफ इंतहाई तशद्दुद और तालीम, सेहत, सनअत और रोजगार और अमन कानून के शोबे में नाकामी का इल्जाम लगाया। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बहरान बढ़ गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब ने इसराइल के अहम फौजी ठिकानों पर कई हमले किए। इनमें इसराइल के सबसे अहम 2 फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। मीडिया इत्तला के मुताबिक 3 अलग अलग मकाम पर इसराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के राडार मराकज को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। उधर इसराइली फौज ने जनूब मगरबी ईरान में एक बड़े सनअती ठिकाने पर फजाई हमले करने की बात की तस्दीक की है। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1936 में आज के ही दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तलात और नशरियाती तारीख में खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुल्क की आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो की खिदमत को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 551 स्टेशन काम कर रहे हैं, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी 23 जबानों और 146 इलाकाई बोलियों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का गैर मुल्की नशरियात का शोबा 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अजीम ख्यालात पर अमल करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोबा मुल्क के हर शहरी को, ख्वाबो किसी भी खत्ते में रहता हो, 24 घंटे 7 दिन तमाम अहम जबानों और बोलियों में खबरें और नजरियात से हमकनार कर रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शमीम इरफान।
1: अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के शानदार सफर पर आकाशवाणी के कई नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक वीडियो पैगाम में जनाब रिजिजू ने कहा कि आज पूरा मुल्क आकाशवाणी के साथ मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के तबस्सुम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मुस्तहकम बनाया जा रहा है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: भारत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस माह की 9 से 13 तारीख तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स जरई वजरा की अहम मीटिंगों की मेजबानी करेगा। आज भोपाल में एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जरात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मीटिंगें इस साल भारत की ब्रिक्स अदालत के तहत मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक ताकतवर आलमी प्लेटफार्म बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मेंबर ममालिक के पास

0: सीखता रहे। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया। जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ।
1: Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Mr. Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities.

0: cricket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bunting out Afghanistan for 152 in their first innings in a one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों

0: कारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। देवेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

0: उन्हें भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: This is Akashvani and I am Vansa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Sakran Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
4: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इस्राइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस्राइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी

में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले हम आपको आकाशवाणी के गौरवमय 90 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी प्रिय श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लाखों दिलों पर राज किया करना शुरू कर दिया था। उनकी मुस्कान, उनके वो खुले लहराते बाल और वो कमाल का अंदाज और उनके स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन हमारी आज की जो कलाकार हैं, उन पर ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती है। 16 साल की उम्र में जो जादू इन्होंने शुरू किया था वो आज भी है, जी हाँ आज भी उतना ही बरकरार है। चाहे वो 70 के दशक का वो आइकॉनिक मॉडर्न लुक हो या फिर आज के दौर के संजीदा और दमदार किरदार, इन्होंने हर पीढ़ी के दिलों पर राज किया। तो श्रोताओं, क्या आप अंदाजा लगा पाएं कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो चलिए दोपहर की सुस्ती को थोड़ा दूर भगाते हैं और आपके साथ इस गपशप को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की उस गॉर्जियस दमदार और एवरग्रीन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया जी की। आज बस आप आराम से बैठिए और सुनते रहिए एक ही कलाकार, क्योंकि आज डिंपल जी की जिंदगी के कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुने पन्ने हम मिलकर पलटने वाले हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जो आज की हमारी कलाकार हैं वो हैं एवरग्रीन डिंपल कपाड़िया, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि बॉलीवुड की एवरग्रीन और शानदार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया जी का आज जन्मदिन है। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से यूं ही दर्शकों का मनोरंजन करती रहें। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प पन्नों की। 8 जून 1957 को मुंबई में जन्मी डिंपल कपाड़िया गुजराती बिजनेस

वाकई एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने कई ठिकानों पर हाल ही में हमले किए थे। इस तरह जंग खत्म होने की कोशिशों के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई है। ये लड़ाई इस साल 28 फरवरी को शुरू हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो ईरान के मिसाइल हमलों पर जवाबी कार्रवाई न करें। उन्होंने ये तंबीह भी की है कि ऐसा करने से कायम अमन समझौते के लिए की जाने वाली कोशिशों को जख्म पहुंचेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों से मुजाकरात में खलल पैदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो बातचीत का रास्ता अपनाए। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरीका समझौता करने के करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये वार्निंग दी कि किसी तरह के मजीद टकराव से इन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। ये आकाशवाणी है। चीन के सदर शी जिनपिंग दो रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंचे। ये जनाब जिनपिंग का तकरीबन 7 वर्षों में प्योंगयांग का पहला दौरा है। चीनी सदर के इस दौरे का मकसद अपने देरीना साथी शिमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है, जो हालिया वर्षों में रूस के साथ ज्यादा करीब हो गया है। तवक्को है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के दौरान इक्तिसादी तआवुन, कोरियाई जजीरानुमा से वाबस्ता सिक्योरिटी मामलात और शिमाली कोरिया चीन और रूस के दरमियान बाहमी तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1936 में आज के ही दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमत को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 स्टेशन काम कर रहे हैं, जो भारत के 98% आबादी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी 23 जबानों और 146 इलाकाई बोलियों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का गैर मुल्की नशरियात का शोबा 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियात खिदमत फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अजीम ख्यालात पर अमल करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोभा एनएसटी मुल्क के हर शहरी को, ख्वा वो किसी भी खित्ते में रहता हो, 24 घंटे सातों दिन तमाम अहम जबानों और बोलियों में खबरें और नजरियात से हमकिनार कर रहा है। बूढ़ी बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सरकर्दा लीडर जहांगीर खान को आज सुबह सवेरे नेपाल सरहद के नजदीक गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि वो सरहद पार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ के अहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान को मजीद पूछताछ के लिए कोलकाता लाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से कबल गुज़िश्ता चंद हफ्तों से यह कयास आरई की जा रही थी कि वो कहां हैं। इससे कबल कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने 5 एफआईआर के मामलों में उनके लिए उबूरी तहफ्फुज की मुद्दत में तौसी करने से इनकार कर दिया था। रियासत में सरकार बदलने के बाद कई गांव वालों ने जहांगीर खान के खिलाफ जमीन हड़पने और जबरन रूपया वसूल करने के इल्जाम लगाए थे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जनाब रॉय ने न सिर्फ ऐवान बाला से बल्कि तृणमूल कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से भी सुबुकदोश हो गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मनुष्यात की स्मगलिंग के नेटवर्क से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिजोरम म्यांमार सरहद, त्रिपुरा बांग्लादेश सरहद और मगरबी बंगाल में 4 मकाम पर तलाश की कार्रवाई कर रही है। इस केस का ताल्लुक मनुष्यात पर कंट्रोल से मुतालिक बोर्ड के अगरतला जोनल यूनिट की जानिब से मनुष्यात जब्त किए जाने से है। इस मामले में 49 किलोग्राम से ज्यादा मेथाफिटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। तहकीकात से यह इंकशाफ हुआ है कि एक मुनजिम सरहद पारग्रो म्यांमार से यह नशावर मादा हासिल कर रहा था। इस जुर्म के इर्तकाब से हासिल होने वाली 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की अब तक निशानदेही की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कहा है कि इस महीने की 2 तारीख से 7 तारीख तक 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच और तस्दीक के लिए जो वक्त दिया गया था, उसमें 3,08,000 से ज्यादा इम्तिहान के पर्चों के लिए 1,60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। बोर्ड ने कहा है कि वह शिकायत के अजाले के अपने निजाम हेल्पलाइन नंबर और दीगर मवासलाती वसीलों के जरिए तलबा की तमाम हकीकी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदया से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद

0: लता मंगेशकर की आवाज में तलाश फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म का नाम है अमन।
1: हुसैन

मंगेशकर की आवाज में ये नगमा था परख फिल्म से। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हेमंत कुमार की आवाज में है, फिल्म है 16 साल।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम कहकशां। आज की फिल्म है मुझसे शादी करोगी। फिल्म की कहानी को तरतीब दिया है मोहतरमा राज हिमानी ने।

जमीर यानी सलमान खान के पैदा होने के कुछ अरसा बाद ही उसके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था, लिहाजा उसकी परवरिश उसकी दादी माँ यानी शशिकला ही करती है। वो भी पोते की जन्म कुंडली के बारे में पंडित जी से पूछती है तो वो बताते हैं कि आपके पोते पर सूर्य ग्रह का असर है, ये बड़ा होकर जुबान कम और गुस्से ज्यादा चलाएगा। पंडित जी पोते का नाम समीर रखते हैं, समीर यानी ठंडी हवा का झोंका, मगर बड़ा होने पर समीर का मिजाज हवा के ठंडे झोंके के बजाय आग के गर्म शोले जैसा होता है। वो अक्सर सुकून के लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया करता है, यहाँ तक कि एक दिन तो गुस्से में आकर वो अपने सुकून के प्रिंसिपल पर भी हाथ उठाता है। जब भी समीर को गुस्सा आता है तो उसका अजीज दोस्त अरुण उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता है, मगर गुस्सेल मिजाज वाले समीर पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता। समीर के उल्टी सीधी हरकतों से आजिज आकर प्रिंसिपल समीर के दादी से उसकी शिकायत करता है। वो कहता है कि इसका अभी से ये हाल है तो जवान होने पर कैसा होगा। दादी माँ परेशान हो जाती है। दादी माँ की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब समीर जवान होने पर एक दिन एक गुंडे की खूब पिटाई करता है, क्योंकि उसने समीर की महबूबा को छेड़ दिया था। जब सजा के तौर पर समीर को कोर्ट में लाया जाता है तो वो फिर कहता है कि किसी भी लड़के को बदतमीजी करने पर वो फिर उसे पीटेगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद समीर लाइफ गार्ड की नौकरी करने के लिए गोवा जाना चाहता है। दादी माँ उसे जाने की इजाजत दे देती है और कहती है कि वादा करो कि तुम अब आइंदा कभी लड़ाई झगड़ा और मारपीटी नहीं करोगे। समीर दादी की कसम खाकर वादा करता है और गोवा के लिए रवाना हो जाता है। जाते जाते वो दादी से कहता है कि उससे उनकी बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि अभी उनकी आंख का ऑपरेशन करवाना है, बहन को पढ़ाना है और उसकी शादी करनी है। दादी बच जाते वक्त उसे बहुत दुआएं देती है। समीर ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा है उसी में रानी यानी प्रियंका चोपड़ा के मामा मामी भी बैठे हैं। समीर रात भर जाकर उनके सामान की रखवाली करता है। गोवा पहुंचने पर समीर की मुलाकात राज नाम के एक ज्योतिषी से होती है। राज ज्योतिषी यानी राजपाल यादव की पेशनगोई अक्सर गलत निकलती है। समीर राज के साथ दुगल यानी कादर खान के मकान में किराए पर कमरा लेने के लिए आता है। ज्योतिषी समीर को बताता है कि दुगल के दिमाग में कुछ क्लॉट्स जम गए थे, इसीलिए वो कभी अंधे हो जाते हैं तो कभी बहरे। समीर को दुगल की इस बीमारी का सबूत भी देखने को तभी मिल जाता है क्योंकि वो कभी समीर को बलची दूध वाला समझकर दूध लाने को कहता है तो कभी राज ज्योतिषी को ही बलची समझ लेते हैं। बाद में बातचीत करने के बाद दुगल समीर को कमरा किराए पर दे देता है। दुगल के घर के ठीक सामने कर्नल साहब यानी अमरीश पुरी का फ्लैट है, जिसमें वो अपनी इकलौती बेटी रानी के साथ रहते हैं। उन्हीं के साथ उनका प्यारा कुत्ता टॉमी भी रहता है, जिसे कर्नल और रानी बहुत प्यार करते हैं। समीर जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है तो सामने का नजारा देखकर उसके दिल की घंटी टन टन बोलने लगती है। वाह क्या नजारा था। खिड़की के ठीक सामने कर्नल साहब की लाडली हसीन नाजनीन रानी खड़ी थी। खूबसूरत और जवान रानी को देखते ही समीर उस पर फिदा हो जाते हैं। उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। समीर राज से कहता है कि वो उस हसीना से उसकी मुलाकात करवा दे। राज ज्योतिषी उसे रानी तक पहुंच

समीर का अपनी महबूबा रानी से इश्क अभी परवान में न चढ़ पाया था कि एक लड़का सनी यानी अक्षय कुमार उसके प्यार में आग लगाने आ पहुंचा। दुग्गल सनी को उसी के कमरे में उसका रूम पार्टनर बनाकर बतौर किराया रख लेता है, यानी अब आधा कमरा समीर का था तो आधा सनी का। जब कमरा एक और किराएदार दो हो और वो भी अलग अलग तबीयत के और शौक वाले तो नोकझोंक होनी तो लाजमी थी। समीर को अक्सर दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाने में दिलचस्पी रहती है तो सनी को फिल्मी अदाकारों की। सनी खिड़की खोलकर सामने वाली हसीना रानी के हुस्न का दीदार करना चाहता है मगर समीर को ये सब पसंद नहीं। वो सनी पर गुस्सा होता है तो समीर से पूछता है कि ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना कमरा गर्म हो जाएगा। सनी जब मकान मालिक दुग्गल को शरीफ लड़का कहता है तो समीर उसकी बेअदबी पर नाराज होकर कहता है कि वो इस कमरे में उसके साथ नहीं रहेगा मगर उसकी हर टोका टापी का सनी खुद ही जवाब देता है और आधा कमरा उसका है। अब ऐसे में बेचारा समीर करे में तो क्या करे, हर थक को वो मन महसूस कर रह जाता है। उधर रानी के इश्क के चक्कर में समीर और सनी दोनों ही कर्नल साहब को पटाने के चक्कर में रहते हैं। अगर समीर कर्नल साहब को

एक तरफ रानी से दिल ही दिल में इश्क करने वाले समीर अपनी गला तोड़कर उसके फीस चुपचाप भरता है, मगर दूसरी तरफ चालाक सनी इस बात का क्रेडिट खुद ले लेता है। उसके लच्छेदार बातों में आकर रानी समझती है कि उसने फीस के लिए पैसे सनी ने ही दिए हैं। रानी उससे इम्प्रेस हो जाती है। एक रोज सनी और समीर एक डांस शो देखने के लिए जाते हैं। जब फैशन शो में रानी को पहला इनाम दिया जाता है तो अपनी इस कामयाबी पर खुश होकर वो अपने उस अनजान दोस्त को स्टेज पर बुलाती है जिसने उसकी एंट्री फीस जमा की थी। मगर इससे पहले कि समीर स्टेज पर जाता, सनी वहां पहुंच जाता है। रानी खुश होकर सनी को गले लगा लेती है। एकदम यानी इश्क के इस खेल में एक बार फिर समीर बाजी हार जाता है। रानी सनी के साथ चल देती है तो जहर बना समीर मोटरसाइकिल से उन दोनों का पीछा करता है। पर हाय की किस्मत, गुस्से और जल्दबाजी में एक बार फिर वो कर्नल से टकरा जाता है और कर्नल को चोट लग जाती है। पहले से खफा कर्नल उसे अब खूब गालियां देते हैं। ये देखकर रानी भी उसे खुद से दूर करने को कहती है। बेचारा समीर का दिल एक बार फिर टूट जाता है, मगर रानी के लिए उसकी चाहत फिर भी कम नहीं होती। वो ख्यालों में रानी को देखता है।

कर्नल का कुत्ता टॉमी अचानक गायब हो जाता है जब महबूबा के बाप का कुत्ता खो जाए और महबूब उसे ढूंढ लेना भला ऐसे कैसे हो सकता था। समीर कर्नल को खुश करने की कोशिश में टॉमी को ढूंढने निकलता है। अलबत्ता समीर ये कोशिश नहीं करता क्योंकि कुत्ते को तो उसने गायब किया था। मगर जब वो देखता है कि समीर ने कुत्ता ढूंढकर कर्नल को दे दिया तो उसे शक होता है। और अब जब उसने देख लिया कि ये तो डुप्लीकेट टॉमी है, वो कर्नल को कहता है कि उसे रगड़ कर नहलाए। नहलाते ही टॉमी के माथे पर लगा रंग निकल जाता है जिसे समीर ने लगाया था। तो कर्नल की खुशी गुस्से में बदल जाती है। वो समीर को खूब गालियां देता है। रानी की खातिर कर्नल को खुश करने की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। जब समीर मायूस हो जाता है वो दादी माँ को सारी बात बताता है कि वो रानी को दिलो जान से चाहता है मगर उसके अब्बू उससे बहुत नफरत करते हैं। पोते की परेशानी देखकर दादी माँ से रहा नहीं जाते हैं और वो कर्नल के पास जाकर समीर और रानी के प्यार के बारे में कहती है और कहती है कि समीर रानी से शादी करना चाहता है। कर्नल जब रानी से पूछता है कि तुम्हें समीर पसंद है या समीर, तो रानी कहती है उसे तो दोनों ही पसंद है। ख्यालों में समीर, सनी और रानी तीनों ही नाचते गाते हैं।

सभी से अब रहा नहीं जाता, वो खुलकर रानी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए पूछता है कि मुझसे शादी करोगी। रानी हाँ कहती है तो समीर खुश हो जाता है, और समीर वो भी कम खुश नहीं था, क्योंकि दरअसल समीर तो समीर का वो बचपन का दोस्त अरुण ही तो था, जो काफी साल पहले विदेश चला गया था। वो तो गोवा में सिर्फ समीर का साथ देने के लिए आया था। रानी को सनी ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। समीर और सनी को बचपन की बातें याद आती हैं, दोनों खुशी में गाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कहकशा प्रोग्राम के तहत मुझसे शादी करोगे फिल्म के कहानी और नगमे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमे।

बेले देखे जवानी के रेले देखे सुनो के मेले देखे जलते तू ही छा गया तू ही छा गया हर नैनों में सपना सपना।

زمانے ملے کے خزانے ملے ان کے بہار

अभी आप सुन रहे थे तोहफा फिल्म का नगमा, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। आइए सुनते हैं शराबी फिल्म का नगमा किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

0: आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक और साथियों की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आप खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसी में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। फिलीपींस के जनूबी खिते मानियानों में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकतवर जल्जिले के सबब 16 अफराद हलाक हो गए। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और न्यू चंडीगढ़ में खेले गए वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग्स और 300 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहबूद के सरकार के 12 साल के सफर को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदय से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुंचे जो कई दहाइयों से पिछड़े हुए थे। वजीर आजम ने कहा कि लोगों की अजमत वकार और मौकों को यकीनी बनाने के मकसद से जनधन अकाउंट्स फायदों की बराए मुंतकी स्वच्छ भारत पीएम आवास योजना जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम किए गए। जनाब

0: पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए के अजीम ख्यालात पर अमल करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोबा NSD मुल्क के हर शहरी को खो किसी भी खित्ते में रहता हो 24 घंटे सातों दिन तमाम अहम जुबानों और बोलियों में खबरें और नशरियात से हम करार कर रहा है। इसके साथ ही रेडियो नशरियात में आला तरीन और पेशावराना अखलाकियात और मेयारात की पाबंदी भी यकीनी बनाई जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कहा है कि इस महीने की 2 तारीख से 7 तारीख तक 12वीं क्लास के इम्तहान के पर्चों की फिर से जांच और तस्दीक के लिए जो वक्त दिया गया था उसमें 3,08,000 से ज्यादा इम्तहान के पर्चों के लिए 1,60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। मखसूस साइबर सिक्योरिटी टीमों ने किसी तरह की शरंगेज हरकत और साइबर खतरात की रोकथाम के लिए इस पूरे अमल की लगातार निगरानी की। तालीमी इदारों ने नतीजों के बाद के खिदमत पोर्टल के कामकाज के ताल्लुक से बाद मीडिया इत्तलात और सोशल मीडिया पुलिस का नोटिस भी लिया। CBSE ने कहा है कि वह नतीजों के बाद एक शफाफ तलबा के लिए मखसूस और बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने का पाबंद है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग्स और 300 रन से करारी शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने आज खेल के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 113 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पूरी टीम महज 152 रन बनाकर आउट हो गई। फॉलो ऑन के बाद दोबारा खेलते हुए भी अफगानिस्तान की बारी लड़खड़ा गई और उसकी पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर सिमट गई। उससे पहले भारत ने कुल 8 विकेट पर 564 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। भारत के इस बड़े स्कोर में कप्तान शुभमन गिल और KL राहुल की सेंचुरियों का अहम रोल रहा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय से तरकीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों बुनियादी मकाम हासिल रहा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिजाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया में बुरान फिर बढ़ गया है। फिलीपींस के जनूबी खित्ते में आज सुबह सवेरे 7.8 शिद्दत के ताकत और जल्जले के सबब 16 अफराद हलाक हो गए। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए वाहिद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग्स और 300 रन से हरा दिया। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: ए ऑल इंडिया रेडियो दासे राय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते हाजर हां प्रोग्राम घिन के हाल चाल हिन तुहाडे। मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो ते वाला शुरू करें दे हां प्रोग्राम। सरायकी भानो भरावो, पहला खिलावन पिलावन दी गल थी वंजे। अपना सरायकिया दा सुभाव ही है खिलावन पिलावन दा। ते आज खाना खजाना प्रोग्राम विच वीना तनेजा तुहाकू गुजराती खाने बारे दसेंदे पए हिन। गुजराती खाने दा भी अपना ही एक स्वाद है। ते पहला खांडवी किवें बनावनी है दसेंदे पए हिन वीना तनेजा।
1: खाना खजाना कार्यक्रम विच अज असा बने सो खांडवी ते थेपले। सब तो पहले असा बने सो गुजराती खांडवी, एकदम आसान ते जल्दी तैयार थी वाली। खांडवी वास्ते साकू जेड़ी समग्री दी लोड़े ओ है बेसन एक कटोरी, खट्टा दही एक कटोरी, पानी दो कटोरी, अदरक ते हरी मिर्च दा पेस्ट एक चम्मच, लून एक छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, हल्दी एक चम्मच, हींग दो चुटकी, ताजा नारियल कसा होया एक चम्मच, हरा धनिया थोड़ा जिया बारीक कटिया होया। ब्राउन वास्ते साकू चाहिदे दो तवे, एक नॉन स्टिक तवा ते दूजा सादा तवा जेड़ा लोहे आला हुंदा जिंदे ते तुसा रोटी पकेंदे वे। हुण खांडवी दा पेस्ट तैयार करेंदे आ। एक वड्डे कटोरे विच एक कटोरी बेसन ते हरी मिर्च अदरक दा पेस्ट पा देवो ते एक कटोरी खट्टा दही भी पा गिनो। दही खट्टा होना चाहिदा है, इंदे नाल स्वाद बहु चंगा आंदा है। एक छोटा चम्मच लून ते एक चम्मच हल्दी पा देवो, एक चुटकी हींग पा देवो, हींग दा भी बड़ा चंगा फ्लेवर आंदा है। इन सारी समग्री को तुसा मिक्सी जार विच पा के ते पेस्ट बना गिनो। जेड़े हिसाब नाल मैं समग्री ते तरीका दसा है उसी हिसाब नाल समग्री घिनसो ता ही तुहाडी खांडवी एकदम मुलायम बनसी। हुण एक वड्डे बाउल विच ए सारी पेस्ट कड गिनो। जेड़ी नाप दी कटोरी बेसन दी हाई उनी कटोरी नाल नाप के ते दो कटोरी पानी पा देवो, एक को चंगी तरह मिला गिनो। इंदे विच ना रोड़िया नहीं पावनिया चाहीदियां। एकदम पतला घोल तैयार थी वैसी, ना कोई कुकर ना कोई कढ़ाई, बिना मेहनत ते बिना झंझट ते साडा खांडवी दा बैटर तैयार थी गया। हुण एक नॉन स्टिक पैन गिनो ते उको तेल नाल चिकना कर गिनो, वल उको टिश्यू पेपर नाल पूंज गिनो। हुण एक कड़छी भर के बैटर दी पैन ते पा देवो ते पैन को चा के हथ नाल चंगी तरह घुमा गिनो ताकि बैटर सारे पैन विच इको जिया फैल वंजे पतला पतला। गैस चलाओ ते उंदे उत्ते लोहे आला तवा रख देवो। जेड़े वेले लोहे आला तवा गर्म थी वंजे ते इंदे उत्ते खांडवी आला पैन रख देवो। 3 मिनट वास्ते पैन ते ढक्कन ला देवो ते गैस फुल कर देवो। 3 मिनट बाद आराम नाल ढक्कन खोल के देखो, जेकर खांडवी थोड़ी कच्ची लगदी है तां इक एक मिनट होर पका गिनो। गैस बंद कर देवो ते पैन को तवे तो हटा गिनो। इको ना चंगी तरह ठंडा थीवण देवो। ठंडा थीवण तो बाद एक छुरी नाल लंबाई विच कट गिनो। 6-7 लंबे लंबे पीस पण वे सन, इंदे उत्ते कट्टा होया हरा धनिया ते कद्दूकस कीता होया नारियल पा देवो। एक एक टुकड़े को रोल करके लपेट दे वंजो, सारे टुकड़े में लपेट के ते प्लेट विच रख देनो। हुण असा बणे सो इंदे उत्ते पाउण वास्ते तड़का। तड़के वास्ते साकू लोड़े तेल एक वड्डा चम्मच, सरसों एक छोटा चम्मच, सफेद तेल एक छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता 5 या 6। गैस ते पैन रखो, उंदे विच एक वड्डा चम्मच तेल दा पाओ। जेड़े वेले तेल गर्म थी वंजे तां इंदे विच पाओ सरसों, सफेद तेल, कड़ी पत्ता ते एक चुटकी लूण ते गैस को बंद कर देवो। इन तड़के को खांडवी ते पा देवो। कट्टा हरा धनिया ते कद्दूकस कीते हुए नारियल नाल इको सजा गिनो। खांडवी ता साडी तैयार थी गई है, आप भी खाओ ते मिजवाना को भी खवाओ।
0: हमें तो सा सिखिया है खांडवी किवे मनावनी है दसेंदे पए हन वीना तनेजा। ते हुण गर्मी दा मौसम है, क्यों ना गर्मी दा एक वधिया गीत सुनावन जी। झल्ला पक्खी ते लगे ठंडी वा मौसम गर्मी दा। कलाकार हिन आबिदा परवीन।

एफएम बैंड 103.6 MHz पे आकाशवाणी का अमृतसर केंद्र है। तुम सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की पंजाबी सेवा। कुछ ही पलों बाद पेश प्रोग्राम देश पंजाब।

सब कोशिश कर रहे हैं कि पात्र साहब की रचना जी तो नजर करिए, कंप्यूटर साहब भी थोड़ी जी अड़ी कर रहे ने, पर खैर इन्हों मना सानू आता है। कंप्यूटर साहब मन गए ने, सुनते हैं जी। नहीं, मेरे ख्याल च अजे मन्ने नहीं है, खैर कोशिश तो जारी है जी।

जिस समय ने से सिलसिला एक गुणकार जिसके तहत तुसी हरजीत हरमन दे गाए गीत सुने ते हुण वधदे हां अगले सिलसिले वल। सिलसिला है तमन्ना, तो तमन्ना दे तहत सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज च इह नगमा।

0: ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
0: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਰੇਡੀਓ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
4: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी में 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मनोज सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारे
1: राम
0: राम राम।
1: भाई बहन देखिए, मौसम काफी बदल गया है।
0: बिल्कुल,
1: गर्मी इस कदर बढ़ी है कि जिंदगी जो है ना बेहाल है।
0: बिल्कुल भाई, एक तरह से
1: और हमारे किसान भाई जो है उनकी

0: कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई एक्टिविटी हो, वो बिना खेतों में गए हो ही नहीं सकती है। खेत, बाग, बगीचे, उनके खलियान, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पशु जो हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ से जुड़ के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बिना ना तो हमारी खेती चल सकती है और ना ही जो है कि और कई बहुत सारी दूसरी चीजें, जैसे हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, वो सीधे उससे जुड़ा हुआ है। तो
1: बिल्कुल
0: ये तापमान जो बढ़ रहा है, इसके कई वजह हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात ये करना चाहेंगे कि कैसे हमारे भाई बहन, खासतौर से गांवों के लोग, कैसे अपनी खेती बाड़ी और तमाम चीजों को सुचारू रूप से चलाते हुए मौसम से बचें।
1: बिल्कुल। देखिए, बात आपने मौसम की करी है, और देखिए जो खेत खलियान का काम है शाहिद भाई, वो बहुत जरूरी है कि भाई समय समय पर आप हर चीज का जो है भाई निरीक्षण करते रहें, आते जाते रहें, देखते रहें। और खेतों में तो देखिए निराई का, गुड़ाई का, खरपतवार का, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, छोटे छोटे काम जो हमारे किसान भाई बहनों को करने पड़ते हैं। तो ऐसे में तो भाई हम एक चीज तो जरूर कहेंगे कि भाई इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, अपने पशुओं का ख्याल रखें। और जैसी ही आपने बात कही है दुग्ध क्रांति की, श्वेत क्रांति की, तो भाई हमारे सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कृषि की जोत कम होती जा रही है, ऐसे में आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो मुनाफा है किसान का
0: वो घट रहा
1: वो
0: है।
1: घट रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई और
0: वैकल्पिक
1: भी
0: खेती की बात आप कर रही हैं,
1: वैकल्पिक खेत,
0: वो बिल्कुल सही कह रही
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने पशुपालन की बात कही है, पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन है, बहुत सारी चीजें हैं तो वो भी कर सकते हैं।
0: एक
1: और
0: और बड़ी चीज है कि अपने मतलब इस ऐसे मौसम, हार्ड मौसम से बच के, विपरीत मौसम से बचते हुए हम जो है कि मशरूम की खेती है और इस तरह की बहुत तरह की वनस्पतियां हैं ना, उनकी खेती कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल
0: जो औषधि काम में आती हैं। तो इस पे हमारे किसान भाई जो है कि थोड़ा सा ध्यान दे के ना, मौसम से बचते हुए अपनी आय को सतत रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, आय बढ़ा सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें कर कर भाई, जैसे कि नमी वाले तापमान में आप मशरूम की खेती कर सकते
0: जी
1: हैं। तो आज इसी बात में हम एक बातचीत सुनवाते हैं अपने सभी बहन भाइयों को, गांवों में मशरूम का उत्पादन जो है।
0: उसकी क्या संभावनाएं हैं
1: बिल्कुल
0: ना, इस पे बातचीत जो है कि कर रहे हैं डॉक्टर भारत सिंह, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं शिकोहपुर गुरुग्राम के।
1: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसी जानकारी अवश्य आपके लिए लेकर के आते हैं जो हमारे लिए जागरूकता होती है, आमदनी का जरिया होती है और कहीं ना कहीं खेतों और खलियानों को खिलखिलाने का अवसर देती है। आज हमारे युवा साथी जो हम पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, यदि हम देखें कि उससे अलग भी कुछ ऐसी फसलें हैं, ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनका बाजार में भाव बहुत अधिक रहता है, तो क्यों ना हम भी उनकी ओर अग्रसर हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि गांव में मशरूम उत्पादन की संभावना। इस विषय पर विशेष जानकारी लेकर के हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर भरत सिंह। आप वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के गुरुग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है मशरूम को लेकर के, तो जब हम ग्रामीण अंचल में आज भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम नई फसल की बात करते हैं, नई कृषि की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाई बहन हो या हमारे जो युवा साथी हैं वो हो, एक झिझक होती है, उसे पैर पीछे खींचते हैं कि कहीं घाटा ना हो जाए। तो आज इन सब बातों पर स्पष्ट चर्चा रहेंगे कि गांव में मशरूम उत्पादन की संभावना, तो हमारे जो ग्रामीण युवक हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, मशरूम की खेती में कैसे संभावना देख सकते हैं ग्रामीण स्तर पर।
3: देखिए, मशरूम की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को एक तो बहुत ज्यादा अपार संभावना है, उसमें सुनिश्चित एक निश्चित आमदनी का साधन भी मशरूम की खेती को हम कह सकते हैं। तो जहां तक आपने झिझक वाली बात कही, तो झिझक वाली इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं और हमारे किसान भाई हैं, मशरूम की खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण जरूर लेंगे। अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं किसी भी सरकारी संस्था से, या राज्य सरकार के बागवानी विभाग है या और कोई भी संस्था है वहां से, तो प्रशिक्षण के बाद में मशरूम का कार्य उसकी शुरुआत करेंगे तो इसमें उनकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और फिर इसमें कोई भी उनके लिए रिस्क वाली बात तो सामने आएगी ही नहीं।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने कि यदि हम किसी भी कार्य को प्रशिक्षण से लेकर के शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नुकसान है वो नगण्य हो जाता है, अच्छा लाभ मिलता है। तो प्रशिक्षण के लिए हमारे साथी कहाँ संपर्क कर सकते हैं जो मशरूम के लिए कि उन्हें प्रशिक्षण चाहिए, तो कैसे उनकी पहुंच वहां तक हो सकती है?
3: हमारे किसान भाई जो है अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में आगे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में देश के लगभग प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहां

0: प्रशिक्षण की कोई किसानों के लिए मुश्किल नहीं है, वहां से प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त करके मशरूम की खेती को वो अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि प्रशिक्षण भी ले लिया और हम कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है सभी को, कोई भी हम नया काम करेंगे तो पैसे की बड़ी दिक्कत है। कहीं ये लगेगा कि भाई आरंभ हम कार्य कर रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कुछ मैं बचा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो इसमें कितना खर्चा शुरू में हो सकता है कि अगर हम कोई कार्य शुरू करें।
0: मशरूम की खेती का कार्य करने के लिए दो तरह का प्रक्रिया करनी होती है। जैसे कि अगर हमारे किसान भाई प्रशिक्षण के बाद में उच्च तकनीकी युक्त मशरूम का घर बना रहे हैं तो उसके लिए बागवानी विभाग की योजनाएं हैं, उसमें 24 लाख रुपए से लेकर के 40-50 लाख रुपए तक का भी उनको एक अनुदान राशि का भी उसमें प्रावधान है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण बहुत मस्त है। जब प्रशिक्षण ले लेंगे तो तभी वो अनुदान राशि तो उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर हमारा एक साधारण किसान भाई है जो कि इतना बड़ा अनुदान नहीं लेना चाहते हैं या किसी कारणवश वो ले नहीं पाते हैं तो उसके लिए हमारे किसान भाई कम लागत से भी मशरूम का घर, जिसको गांव के स्तर पर झोपड़ी कहा जाता है, एक साधारण सी झोपड़ी बना करके जिसका साइज हमारे किसान भाई अपनी उपलब्ध जगह के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि 15 फीट 20 फीट चौड़ा है और 30-40 फीट लंबाई वाला आकार का कहीं भी उनके घर के आसपास में खाली जगह पड़ी हुई है या उनके पास में अतिरिक्त कोई कमरा है, बरांडा है, उसके अंदर भी वो मशरूम का घर बना करके, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि खुली जगह पर मशरूम की खेती हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उसको पूरा बंद करना पड़ेगा और बंद करने के लिए चाहे साधारण सी घास फूस की टाटी धान का पुआल है या सरगंडा का जो फूस होता है उससे भी हमारे किसान भाई एक कम लागत में मशरूम का घर तैयार कर सकते हैं। तो उस मशरूम घर के अंदर में लगभग 2-2.5 फुट की अंतर पर अलग अलग रैक्स क्रिएट किए जाते हैं जहां पर हम मशरूम के बैग या मशरूम का जो खुला सिस्टम है उसके आधार पर भी बेड बना करके उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक अगर 15 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा एक मशरूम का घर बना लिया, उसमें 6 तह वाला रैक बना लिए तो उसमें लगभग जो है 500 तक आराम से मशरूम के बैग आ जाते हैं। उनको बैग को रख करके हमारे किसान भाई उसमें मशरूम की खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि केवल 15 फीट से 20 फीट के कोई भी एक कमरे में हम ये शुरू कर सकते हैं, तो इसमें खर्चा अपने ऊपर, यानी कि जितना बड़ा सा काम करना चाहते उतना अधिक खर्चा, लेकिन अधिक में कहीं ना कहीं सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो अनुदान के रूप में आपकी सहायता निश्चित रूप से करती है। अब बात आती है जैसे आपने कहा कि हमने मशरूम का घर बना लिया, कोई कमरा है या कोई झोपड़ी है, लेकिन अब उसमें जो आवश्यकता होगी जो कंपोस्ट है के लिए क्या कुछ हमारे किसान भाइयों को करना पड़ेगा?
0: मशरूम के लिए मुख्य तौर पर इसमें तीन जो सामग्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाना जो एक प्रकार की खाद होती है तो इसको हम मशरूम की कंपोस्ट कहते हैं, दूसरा है मशरूम का बीज, तीसरा है मशरूम के लिए केसिंग सामग्री। तो ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो मशरूम का बीज है नियर बाई कहीं जिला स्तर पर कोई इकाई होगी, मशरूम बनाने वाली कोई प्रयोगशाला होगी तो वो आराम से जिले के अंदर ही या आसपास कोई विभाग है, बागवानी विभाग है जहां भी हमारे किसान भाई रहते हैं, निश्चित रूप से वहां पर बीज मिलने की संभावना होती है। अब इसमें बाकी जो दो सामान है, चाहे मशरूम की कंपोस्ट है या फिर केसिंग सामग्री है, इसको हमारे किसान भाई आराम से अपने फार्म पर जो उत्पादित जो अवशेष है, फसलों के अवशेष है और पशुओं का जो गोबर है, उसकी खाद है, जो गेहूं का भूसा है, उसी से सारे सामान आसानी से तैयार हो जाते हैं। जब हमारे किसान भाई किसी प्रशिक्षण में जाते हैं तो प्रशिक्षण के दौरान उनको सारी प्रक्रिया समझा दी जाती है कि इसमें कंपोस्ट बनाते समय कितनी कितनी मात्रा में, बहुत सारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे गेहूं का चोकर है, यूरिया है, जिप्सम है, म्यूरेटा पोटाश है, उनको भी एक निर्धारित मात्रा में उसमें कंपोस्ट बनाते समय समायोजित किया जाता है और लगभग 20-30 दिन की प्रक्रिया में और कम खर्चे में, इसके लिए कोई किसी प्रकार के उच्च तकनीकी युक्त घर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपोस्ट आराम से बना सकते हैं। लगभग कंपोस्ट में 6-8 पिटाई करनी होती है 3-3 दिन के अंतर पर और फिर वो हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ा सा एक किसान के लिए तो मेहनत ही कह सकते हैं, लेकिन एक साधारण सी मेहनत है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि मशरूम के लिए कंपोस्ट भी तैयार है, बीज भी मिल गया है और हमने लगा दिया, तो ये फसल लगभग कितने दिन की
0: ये फसल लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की फसल होती है। एक बार अगर मशरूम आपने लगा दिया, मशरूम के घर में मशरूम आना शुरू हो गया तो देखा तो ये आता है कि उसमें 3 या 4 बार ही अच्छा फ्रेश आता है, फ्रेश का मतलब अच्छी तरह से फसल का बूम आता है, तो 3-4 बार में मशरूम का अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में मशरूम का जो फसल है ना वो थोड़ी कम आने लगती है, तो अगर किसान भाइयों के पास में टाइम है तो कम रूप में भी फसल को लेते हुए फिर अपनी फसल को आखिर की तरफ ले जा सकते हैं, या उनको फिर मौसम अगर अनुकूल है और नई फसल लगानी है तो हमारे

0: किसान भाई जो है उस घर को फिर खाली करके फिर उसमें दूसरा आदि भी क्रॉप उसमें लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि सामान्य फसलों में कीट की और रोग की बड़ी एक समस्या है, तो क्या मशरूम के उत्पादन में भी या मशरूम की फसल में भी ये कीट और रोग प्रबंधन पर हमें क्या ध्यान देना होगा, ये आते हैं या नहीं आते?
0: मशरूम की खेती में कीड़े और रोग भी आते हैं, लेकिन उसके आने की बजाय मुख्य रूप से यही होती है, अगर मशरूम घर के अंदर में अच्छी तरह से साफ सफाई है, कंपोस्ट को आपने ठीक तरीके से बनाया है, उसमें आवश्यक सामग्री को सही ढंग से समायोजित किया है, तो उसमें कीड़े और पतंगों की आने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई है ना, मशरूम घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, उसमें एयरेशन नहीं होता है, ताजा हवा नहीं उसमें जाती है, तो उस स्थिति में उसमें फिर कोई भी समस्या बीमारी है, वायरस वाली है या बैक्टीरिया वाली बीमारी आ जाती है, या उसमें माइट है या दूसरे जो मक्खी है वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब इसमें कोई मशरूम के घर के अंदर का मौसम सही नहीं होगा तभी ये समस्या आती है, तो वो समस्या नहीं आए उसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए साफ सफाई का मशरूम घर के अंदर में विशेष ध्यान रखना है। कोई किसी प्रकार का अंदर में धूम्रपान नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की अंदर में गंदगी नहीं छोड़नी है, गंदे पैरों से अंदर में नहीं जाना है और गंदे हाथों से कोई भी मशरूम के कार्य को, फसल की कटाई को नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों के लिए कि जब भी मशरूम के घर में जाए उससे पहले आप अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ कर लें, पैरों को साफ कर लें और अंदर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर मशरूम तोड़ते समय मशरूम की खाद है, मशरूम के कोई भी प्रोडक्ट है वो जमीन पर नीचे गिर जाता है, तो अंदर में उसको एक अलग से वहां पर सफाई का ध्यान रखें, अंदर में कोई झाड़ू भी लगानी पड़ती है, तो मशरूम घर के अंदर में उसी कार्य के लिए एक झाड़ू अलग से होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये अपने किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कीड़े बीमारी इसमें तभी आएंगे जब हमने सावधानी प्रॉपर बरती हुई है। तो अगर कीड़े बीमारी इसमें आ जाते हैं तो फिर उसमें हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उसमें किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो तैयार फसल पर कोई किसी प्रकार के कीटनाशक के छिड़काव की मैं सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक दिन के बाद मशरूम की तुराई होती है और मशरूम का जो फल उसमें 90% पानी की मात्रा होती है
1: जी,
0: तो उसमें कीटनाशक अवशोषित हो जाते हैं, वो फिर ऐसा मशरूम मार्केट में जाता है वो हमारे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी बोल लाभदायक नहीं होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अगले प्रश्न को यहाँ जन्म दे दिया कि उपभोक्ता और मार्केट। हमारे किसान भाई बहन मान लीजिए कि वो खेती कर रहे हैं और आपकी दी हुई सलाह के कारण उनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, तो अब इसमें वो अपने लिए कैसे बाजार आसानी से चुने कि उन्हें उपभोक्ता मिले और अच्छा उत्पादन जो है वो बाजार तक जाए और उनकी जो कहीं ना कहीं आमदनी है वो बढ़ जाए।
0: देखिए, हमारे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मशरूम का बहुत ज्यादा विशेष चलन है। नंबर वन पर तो बटन मशरूम आती है, इसको हम श्वेत खोर भी कहते हैं, तो ये बटन मशरूम होगी, दूसरा दूधिया मशरूम है, तीसरा एक जो है ढिंगरी मशरूम है। इन तीनों प्रकार की मशरूम में सबसे ज्यादा जो चलन में है मशरूम वो बटन मशरूम है, और ये बटन मशरूम मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में 12 महीने मार्केट में मिल जाती है। दूसरा, ये हर घर की ये आवश्यकता बन चुकी है, तो मशरूम की बिक्री वाली जहां तक बात है, बिक्री को लेकर के कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या नहीं है, क्योंकि गांव में भी आज के टाइम में मशरूम का अधिकतम भाग गांव में ही सेल हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि 50% अगर आपके पास में 5 क्विंटल मशरूम निकली या छोटी यूनिट से 2 क्विंटल मशरूम निकली है, तो उसका आपका 50% भाग जो है मशरूम का लोकल गांव में या लोकल जो हमारे सब्जी विक्रेता है गांव में, सब्जी की दुकानें होती हैं वहीं पर के माध्यम से बिक जाती है, और फिर नियर बाई हमारे आसपास के क्षेत्र में जो आपका लोकल मार्केट है जहां पर सब्जी मंडी होती है, तो सब्जी मंडी में जाकर के आप इसको आसानी से बिक्री कर सकते हैं, जैसे वहां पर और सब्जियां बिकती हैं इस तरह से। तो मशरूम की बिक्री को लेकर के सभी किसान भाइयों को एक मैसेज है कि बिक्री को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से इसकी बिक्री हो जाती है और अच्छे दाम पर बिक्री होती है इसकी।
1: डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांवों में मशरूम उत्पादन की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर भारत सिंह वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं शिकोहपुर, उनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया। तो साथियों, ये विशेष जानकारी आपने पाई है। इसके अलावा आप जो है कि कई तरह के गैर सब्जी यानी औषधि मशरूम की भी खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए इसके साथ अब आपका कराते हैं मनोरंजन।
3: सुनवाते हैं रेणु बर्मन की आवाज में।

तो अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे रेणु बर्मन की आवाज में ये शिक्षा गीत, और चलते चलते अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं शीशपाल सिंह भाटी की आवाज में एक ये रागनी किसा रहेगा सरवर निगम का।

अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर का किस्सा शीशपाल सिंह भाटी की आवाज में, और इसी के साथ हम अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की गुजारिश करते हैं। सभी ग्रामीण साथियों को हमारा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थान है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब समय है कार्यक्रम गजलों का, आइए सुनते हैं गजलों के खूबसूरत खजाने में से एक ये खूबसूरत सी गजल।

0: passé.
1: गजलों कार्यक्रम आप सुन रहे थे और आप सुन रहे थे जगदीश सिंह की आवाज में ये गजलें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: जी, इस घर के कुछ नियम है, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ, जैसे UPI से।
5: अच्छा
4: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: हाँ भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में हाल में हुई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बराना में पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया। और आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए मालवीय नगर और अन्य आग की घटनाओं के बाद आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
8: बैठक में अवैध भवनों के खिलाफ चल रही अभियानों, अग्नि सुरक्षा संबंधी लाइसेंस के दुरुपयोग और भविष्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। इस दौरान दिल्ली की आपदा संबंधी प्रणालियों में सुधार करने पर बल दिया गया। बैठक में अग्निशमन विभाग के कार्यबल को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए पूर्व अग्निवीरों की भर्ती पर विचार करने का सुझाव दिया गया। साथ ही पिछले सप्ताह गठित अधिकारियों की टीम को समय पर कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट ATR प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बैठक में गर्मी से संबंधित आपदा प्रबंधन उपायों और मॉनसून की तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आगामी बरसात के मौसम में बाढ़ के प्रति अतिरिक्त सावधानी, सख्त कार्यान्वयन और शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया। निकिता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
7: दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच हुआ। ये पहल धूल रहित सड़कों, शहरी हरियाली और वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन को बढ़ावा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 2026 के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 जून से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। साइबर हमलों और किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा टीम ने इस पूरी अवधि में सिस्टम की लगातार निगरानी की। सीबीएसई ने मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पोर्टल के काम न करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है तो इसका कारण यह है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया। बोर्ड ने याद दिलाया कि नियम के मुताबिक सिर्फ वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित

0: वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में यमुना जीर्णोद्धार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि साफ और स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है और सबको मिलकर इसको जल्द पूरा करना है। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के अंत तक 99 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा चुके हैं। श्री शाह ने बल देते हुए कहा कि यमुना जीर्णोद्धार परियोजना में कार्य प्रगति की हर 20 दिन में समीक्षा की जाएगी। दिल्ली पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने आज खिचड़ीपुर के झुग्गी में बच्चों के लिए आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभागियों में व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। दिल्ली पुलिस ने आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मेगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को उभरते साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के रंग भवन में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया सहित विभिन्न लोक प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। श्री जोशी ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पीढ़ियों से समाज की रीढ़ रही है और सूचना, संस्कृति और रचनात्मकता के माध्यम से लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर उसके कर्मचारियों और श्रोताओं को बधाई दी।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन, हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM और डिजिटल स्ट्रीमिंग, हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 2400 घंटे 23 प्रमुख भाषाओं और 146 से अधिक बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली 9 मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं की जानकारी दी जाएगी और उनका लाभ

0: बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में बाहरी उत्तरी जिला प्रशासन ने एक गैर सरकारी संगठन सीड्स के सहयोग से बवाना में एक अभिनव और पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है, जो वर्तमान हीटवेव के दौरान लोगों को राहत प्रदान कर रहा है।
2: वर्तमान में बवाना और अलीपुर में 2 कूलिंग जोन संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 3 और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक कूलिंग जोन जिला उपयुक्त कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है। इस कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ड्राइवरों, रिहाड़ी पटरी विक्रेताओं और खुले में काम करने वाले अन्य नागरिकों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है। इन कूलिंग जोन का निर्माण मुख्य रूप से बांस से किया गया है। नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन में ठंडे पीने के पानी, ओआरएस पैकेट, अग्निशामक यंत्र, हीट वेव से बचाव और जागरूकता संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री और पर्याप्त बैठने और विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूलिंग जोन को लोगों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। नीतिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में और आसपास के राज्यों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में हाल में हुई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली को स्वच्छ हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच समझौता ज्ञापन। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बवाना में पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया। और आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
4: कब से पता चलेगा? कम से

0: से।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
2: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। तो एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
3: थैंक यू।
2: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
4: नमस्कार। यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहां पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखे कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए, जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है, शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तभी उन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IMC में चले गए चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
0: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग देशों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहां क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है, जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का, तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
4: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र हैं और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र हैं जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
3: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलिल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और भोजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था।

0: नन सुरजीत सिंह, लोटिका रत्नम, लोटिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु भाई, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। वेव्स है रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसीज फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कंफर्म करें। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहां तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलोअप, उसने कहा क्या फॉलोअप, आपने कहा था गोवा CM डेड, उसका फॉलोअप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई न तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो TV के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम की है वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी

0: घर की हो।
1: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी आज वो स्टूडियो है
1: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
0: जी।
1: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा, तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस है इसमें, वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने, एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भरत सिंह के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो, तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उस पर सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रिया जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
1: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
0: सबने,
1: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गांव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
0: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उससे बड़ा मुश्किल था। आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्डर हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर से बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको

0: तब डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टर्नर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात
0: कीजिए,
1: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहां पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूं कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉयस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइक्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करेस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बनके सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेते बड़ा मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहां किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परम्परा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
0: बिल्कुल,
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना। जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिट नहीं दिया।

0: अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारिक बारे को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूंगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन सर,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यावहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी है ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है और मैं ये बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता और न ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील

0: का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहिए अगर बताएं? जी आप बताएं।
2: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है, खुश हूँ इस बात के जानकर के सर की पहली कमाई मैम के भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मेरा नाम मनीष आजाद एडियो वाली है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
2: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजीएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
0: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदले आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो, कई बार वो जो वैन के कार्यक्रम उस पर जोर देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कभी पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह के वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। ये बहुत कार्यक्रम ऐसे हैं जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत एक कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई है, तो देखिये वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामायिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए, वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति खासतौर समाचारों के प्रति,
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार है वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है, और जितने लोग भी कार से सफर
1: करते हैं 8 बजे शुरुआत होती है वो
4: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है समय की, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
5: नमस्कार, मैं बैज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
5: और वेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार भी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो

0: उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खोती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
2: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
3: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई इतने पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना, रिसर्च करनी है,
0: संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
3: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
1: बहुत सुंदर,
4: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉ. वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
6: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। यह योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
7: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
7: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को इस तरीके से उतारना चाहिए। मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक साथ काम कर रहा है।
5: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रूपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रूपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: डेवलप दी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए careerairforce.gov.in या fcat.pvcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ, इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उन्हें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

0: फसल, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM और डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नवंबर के 20 मिनट पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस होंगे पंकज उदास की गई गजलों और गीतों से। नौ 45 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और 9:55 मिनट पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे आप सुनेंगे देवी मैगजीन आईना और 10:30 पर प्रोग्राम पेश होगा तामिले इरशाद। फरमाइशी फिल्मी नकबों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 11:45 तक। दोहराया प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सकीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन और 11:45 पर कवालियां पेश करेंगे सरफराज साबरी कवाल और हमनवा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी में आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद पर बजाया राग देवगिरी बिलावल।

इस दौर में कई नई नई आवाजें आईं, इनमें से पंकज उदास काफी मकबूल हुए। उनकी सिलेक्शन और गायकी में सादगी और कंपोजिशन में आम लोगों को अट्रैक्ट करने का एक अजीब सा चार्म है।

0: गीत और गजलों के प्रोग्राम एक फनकार में आज के फनकार थे पंकज उदास। आप महसूस हो रहे थे उनके गाए चंद गीत और गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। सामिन, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे आज का तमिल नशरियात प्रोग्राम 10:30 पर शुरू होगा और ये जारी रहेगा 11:45 तक। जी हाँ, हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में मजीद 15 मिनट रहेगा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला फौज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला फौज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से नवाजा। आज शाम राष्ट्रपति भवन में दिफाई अवार्ड दिए जाने की एक तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला फौज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवत और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाईयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाची सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्त गिर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। यह योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए अफजान सेहत तक मसावी रसाई के हसूल में एक अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफिदीन को फी कुनबा 5 लाख रूपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। इस स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है। जनाब नड्डा ने TMC की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। जनाब अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के अवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही क्यों न रहते हों। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसा पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला M चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कायम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तलात और नशरियाती तारीख में एक खुसूसी लम्हा था जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों, राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। इम्तहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तहान कराने के लिए इम्तहान के शहरों की पर्ची जारी की है। यह इम्तहान इस महीने 21 तारीख को होना है। हमारे नामनगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। भारत ने तरमीम शुदा यूरोपीय यूनियन इनकबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी जरात से मुतालिक अशिया की बरामद जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जब्तों का मकसद एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निपटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और DMK ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA तहत मीटिंग में शिरकत की। ममता बनर्जी की क्यादत में तृणमूल कांग्रेस ने आज मगरबी बंगाल असेंबली के स्पीकर के उस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया है जिसमें कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर ऋतव्रता बनर्जी को बनाए जाने की बात कही गई थी। खबरों के मुताबिक TMC ने दावा किया है कि अपोजिशन का लीडर ऋतव्रता बनर्जी को बनाए जाने का स्पीकर का यह फैसला पार्लियामानी कानून के खिलाफ है। इस अर्दाश में स्पीकर के फैसले का कानूनी जायजा लेने की बात कही गई है और इस अहदे के

0: ये पार्टी के उम्मीदवार एस चट्टोपाध्याय का नाम तजवीज किया गया है। भारत ने मगरबी एशिया में ताजा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि यह ताजा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बरादरी के लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। भारत ने फरीतैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिजाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने भी ताजा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट की क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतेह को भी पीछे छोड़ दिया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला फौज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अदा किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अपराध हलाक हो गए। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशात जारी है। मशवरे सेहत के इस सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। दोस्तों, आज ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग के सरतान का आलमी दिन है। हर साल 8 जून को यह दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है दोस्तों कि इसके मुतालिक आवाम में बेदारी पैदा की जाए। कई बार बीमारी की जानकारी न होने के वजह से बहुत सारे अफराद बेवक्त लुकमाए अजल बन जाते हैं और इसीलिए इस दिन को मनाने का फैसला किया गया। और ये फैसला जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के जरिए 2000 में हुआ था। शुरुआत में बहुत कम ममालिक में ये मनाया जाता था लेकिन उसके बाद इसके तहत बेदारी पैदा हुई और देखते देखते पूरी दुनिया में इसको मनाने का रिवाज हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो मकसद था वो ये था कि आम लोगों को यानी आवाम को इसके साइन और सिम्टम्स वो बताए जाएं और तशखीस जो है वक्त पर हो जाए जिसकी वजह से मरीज की जान को खतरा ना होने से बचा जा सके। और इसी वजह से इसमें न सिर्फ आम आवाम शामिल होते हैं बल्कि डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी अस्पताल हैं और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इसमें शामिल रहते हैं। और क्या क्या इसकी अलामत हो सकती हैं ये भी जानना जरूरी है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। शुरुआत में सिरदर्द, चक्कर आना और बिनाई में तब्दीली या फिर याददाश्त में कमी और आमतौर पर जो टेंशन

रहता है। इस तरह की अलामत को ब्रेन ट्यूमर से जोड़ दिया जाता है। हालांकि अलामत तो ऐसी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये तमाम अलामत अगर किसी शख्स में है तो वो ब्रेन ट्यूमर से मुतासर होगा। लेकिन अगर ये अलामत बार बार होती हैं तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और जांच करानी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि ये तमाम अलामत किसी और वजह से हैं या फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से हैं। अगर आदाद व शुमार की बात की जाए तो दुनिया भर में हर साल 3 लाख से ज्यादा मरीज जो है ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो जाते हैं, और चाहे छोटा सा ही क्यों ना ट्यूमर हो, साइज पर इसका इनसार जरूरी नहीं है, बहुत छोटा सा ट्यूमर भी परेशानी पैदा कर सकता है, और इसलिए इसका इलाज और वक्त पर इसका डायग्नोसिस या तशखीस जो है बहुत जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को अक्सर 24 घंटे देखभाल की जरूरत होती है, और यह दिन मनाने का मकसद न सिर्फ मरीजों की हौसला अफजाई करना है बल्कि मरीजों की देखभाल करने वाले यानी तीमारदार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्सेज भी शामिल हैं उनके साथ भी हमदर्दी का इजहार करना और उनको मरीजों की देखभाल के लिए उनकी हौसला अफजाई करना है। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे सामिन, ब्रेन ट्यूमर की बहुत सारी अकसाम हैं और आलमी सेहत तंजीम WHO के जरिए अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और तो इसके तकरीबन 120 से ज्यादा अकसाम हैं। बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में कैंसर होने वाली अमवात की खास वजूहात में से एक ब्रेन ट्यूमर भी है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि साइज से ज्यादा किस जगह पर यह है ये मायने रखता है, और किसी हसास एरिया में दिमाग के एक छोटा सा ट्यूमर भी बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा इस दिन के मनाने का जो मकसद है उसमें कुछ बातें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक तो जानकारी या मालूमात जो है उसको साझा करना चाहिए ताकि वो सही मालूमात एक दूसरे तक पहुंच सके, और आज के दिन इस दिन को मनाने का जो मकसद है और उसको सपोर्ट करने का जो है, उसको तावन करने का जो मकसद है, उसके लिए ग्रे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रे रंग को इस्तेमाल किया जाता है, और 8 जून को इसे पहना ये दिखाता है कि हम यकजा हैं और इस बीमारी से लड़ने के लिए हम बहुत ही ताकतवर होकर आगे बढ़ रहे हैं। और कई स्कूल कॉलेजेस और अलग अलग इदारों में जो है इस पर सेमिनार किए जाते हैं ताकि लोगों में बेदारी पैदा हो ब्रेन ट्यूमर के मुतालिक, और इस बीमारी से लड़ा जा सके और बचा जा सके। लगातार बिगड़ता हुआ सरदर्द खासतौर पर सुबह के वक्त, और बड़े अफराद में बगैर किसी पास्ट हिस्ट्री के अचानक दौरे पड़ना, मतली या फिर उल्टी आना, बिनाई में खलल पड़ना, बोलने में चलने में दुश्वारी होना, और याददाश्त में कमी या फिर कुछ चीजों को लेकर उनमें गफलत पैदा होना, हाथ पैरों में कमजोरी या फिर सुन्न हो जाना उनमें से किसी का, ये तमाम अलामत हैं। अगर ऐसी अलामत जाहिर होती हैं तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और फौरन अपने
मालिश से

रुजू करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप इस जानलेवा बीमारी से बच भी सकते हैं, क्योंकि वक्त पर अगर सही इलाज हो जाए तो बहुत सारे अफराद जो है लुकमा अजल बनने से बच जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी की जाती है और कार टी सेल थेरेपी इलाज के जो तरीके हैं इसके लिए उनको आजमाया जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस मर्ज के खिलाफ बेदारी पैदा की जाए, इसके मुतालिक लोगों को बताया जाए कि किस तरह की परेशानी हो सकती है और क्या क्या अलामत हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जरूरी नहीं कि हर तरह का सर दर्द ब्रेन ट्यूमर ही हो, लेकिन अगर ये बार बार होता है तो फिर इसे नजरअंदाज न करें। और बाकी अलामत भी हमने आपको बताई कि क्या क्या आप उसके साथ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। आज का जो दिन है ब्रेन ट्यूमर का जो आलमी दिन है, इसको मनाने का मकसद हमने आपको बता दिया और इसके की जो अहमियत है और बेदारी है ये जरूरी है कि आम आवाम तक ये बात पहुंच सके। और रेडियो से बेहतर जरिया तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जहां तक आकाशवाणी की बात है, आज हम 9 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मना रहे हैं। आज के सेगमेंट में बस इतना ही।

0: शायरी की दुनिया में अनीस सरदार जाफरी का नाम तरक्की पसंद शायर के नाम से जाना जाता है। तरक्की पसंद नजरिया उनका ओढ़ना बिछोना है, जिस तरह से रशीद अहमद सिद्दीकी अपनी इन शायर निगारी में अलीगढ़ से बाहर नहीं निकलते, उसी तरह सरदार जाफरी तरक्की पसंद ख्यालात तो नजरियात से बाहर कदम नहीं रखते। उर्दू अदब का पूरा एक दौर अमीर सरदार जाफरी की शख्सियत और कारनामों से वाबस्ता है। उनकी दूरदर्श निगाहें, हमदर्द दिल, पुख्ता और पाकीज़ा जज्बात ने लफ्जों में ढलकर अवाम और खवास दोनों को मुतासिर किया और अपनी मंजिल पाने के लिए उनको रगड़ दवा होने की ताकत बख्शी। अमीर सरदार जाफरी की शायरी एक ऐसा आईना है जिसमें उर्दू की तरक्की पसंद अदबी खल्लाक अपने पूरे आबोताब के साथ देखी जा सकती है। उनकी शायरी अवामी फिक्र फलसफा और इंसान दोस्ती के बुलंद आदर्शों के साफ और शफाफ तर्जुमान से पहचानी जाती है। उन्होंने मजलूम और मुफलिस अवाम की भलाई और तरक्की के लिए न सिर्फ कलम का सहारा लिया बल्कि अपनी जिंदगी के शब रोज को भी उनके लिए काम करने में वक्फ कर दिया। वो तरक्की पसंद तहरीक के एक मेरे कारवा है, इसीलिए गुमान गुजरता है कि उन्होंने अपनी सोच को एक शब्द देने के लिए बहुत गौर फिक्र किया होगा। इसलिए अगर तरक्की पसंद तहरीक का वजूद न होता तब भी सरदार जाफरी की शायरी आवाम के दिलों की धड़कन होती, मजदूरों के एहसास का आईना होती और मजलूमों और बेसहारा लोगों के हकूक की तर्जुमान होती।
1: उत्तर प्रदेश का जिला गोंडा वाकई तकदीर का धनी है, जहां से अली सरदार जाफरी जैसी शख्सियत नमोदार हुई।

0: सरदार जाफरी 29 नवंबर 1913 ईस्वी को कस्बा बलरामपुर जिला गोंडा में पैदा हुए। ये शहर लखनऊ के शिमाल की जानिब हिमालय के दामन में आबाद है। अली सरदार जाफरी शिया खानदान में पैदा हुए, जो मजहबी होने के साथ साथ रवादार भी था। उनके खानदान का शुमार औसत जमींदार घराने में होता था। सरदार जाफरी के वालिद रियासत में अच्छे ओहदे पर मुलाजिम थे, इसलिए कस्बे पर पूरे इस खानदान का रौब था। सरदार जाफरी का खानदान बेहद परहेजगार और ईमानदार था।
1: अली सरदार जाफरी 1935 से शेर व अदब की दुनिया में मुतारिफ हैं। 1933 से 1939 का जमाना आलमी तारीख में बहुत ही अहम रहा है। एक तरफ जर्मनी और इटली में फासिज्म ने सर उठाया, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। उन दिनों सरदार जाफरी ने अच्छी खासी शायरी शुरू कर दी थी। उस वक्त वो अलीगढ़ में तालिब इल्म थे।
0: इन दिनों अलीगढ़ में अक्सरियत बाएं बाजू के महाज के सोशलिस्टों की थी। यही मौका था जहां से सरदार जाफरी के जहन में इश्तराकियत ने लेना शुरू किया, जिसके नतीजे में 1936 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के जुर्म में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से निकलना पड़ा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद 1939 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए अंग्रेजी अदब में दाखिला लिया। उसी दौरान गमे पना के साथ साथ सरदार जाफरी की जिंदगी में मोहब्बत की मंजिल भी आई और इसी यूनिवर्सिटी की एक लड़की से उनको मोहब्बत हो गई, जो बाद में रिश्ताए अज़दवाज में बदल गए। जब सरदार जाफरी बम्बई मुंतकिल हुए तो वहीं उनकी शादी सुल्ताना के साथ 1948 ईस्वी में हो गई, जिससे दो बेटे नाजिम और हिकमत हैं। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर सरदार जाफरी ने बम्बई में ही सुकूनत अख्तियार कर ली।
1: अली सरदार जाफरी न सिर्फ एक शख्सियत का नाम है, बल्कि एक अहद, एक नजरिए का, एक शोले इनकलाब की एक कातिल अदा और खंजरों की चमक के मुकाबले बुलंद होने वाले नारे पुरजोश का नाम भी है। अली सरदार जाफरी उस तहरीक का नाम है जो 20वीं सदी के चौथे दहाई के आगाज में शहर लखनऊ से शुरू हुई, जिसकी बुनियाद अलीगढ़ में ही पड़ चुकी थी, जिसे तकवीयत लखनऊ यूनिवर्सिटी से मिली और बुनकरों की बस्ती भिवंडी की तंग गलियों तक जिसकी गूंज सुनाई दी। अली सरदार जाफरी उस रोशनी का नाम है जो बलरामपुर के खेतों खलियानों और इमामबाड़ों से निकलकर मुंबई की शाहराहों पर फैल गई। अली सरदार जाफरी का शेरी नुक्ता नजर वाजी है। उन्होंने न सिर्फ आवाम के लिए शायरी की है, बल्कि अपनी शायरी को जिद्दोजहद के काम भी लाए हैं। अवामी फलाह बहबूद मसरत और खुशहाली के लिए एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया है। इंसान दोस्ती और इंसानियत के खुशगवार मुस्तकबिल की तामीर उनकी शायरी का मकसद है। शायर को एक सेहतमंद और मुकम्मल जिंदगी चाहिए, जिसमें जिंदगी की एक रंगी नहीं बल्कि लातादाद रंगों से मुजयन जिंदगी चाहिए, और उसके हुसूल का रास्ता अली सरदार जाफरी के नजदीक इश्तराक कदरों की याफ्त है, जहां से ऐसी जिंदगी के हर गोशे तक पहुंचने के रास्ते निकलते हैं।
0: तरक्की पसंद ख्यालात की अशआर के लिए तरक्की पसंद शायर इंकलाब की जरूरत महसूस करते थे, और हकीकत भी यही है कि बगैर इंकलाब के कदीम निजाम और रुझान को खत्म भी नहीं किया जा सकता, और बगैर पुरानी इमारत ढाए उस जगह दूसरी इमारत की तामीर का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर तामीर के पर्दे में तखरीब और तखरीब के पर्दे में तामीर पोशीदा होती है। तखरीब का जब तक के तलातुम नहीं होता, तामीर के होंठों पे तबस्सुम नहीं होता। तरक्की पसंद शोरा ने इसी फलसफे के तहत इनकलाब

0: इसलिए उन्होंने मजदूरों, किसानों और अदना मुतवस्सित तबके को ख्वाबे गफलत से बेदार करने और रिवायती मुआशरे और उसके फर्सूदा निजाम इकदार के खिलाफ बगावत करने का। इस हवाले से अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शायरों में अहम नजर आते हैं।
1: बगावत मेरा मजहब है, बगावत देवता मेरा, बगावत मेरा पैगंबर, बगावत है खुदा मेरा। बगावत रस्म चंगेजी से, तहजीब ततारी से, बगावत रस्म चंगेजी से, तहजीब ततारी से, बगावत जबर इस्तबदाद से, सरमायादारी से, बगावत वहम की पाबंदियों से, कैद मिल्लत से, बगावत वहम की पाबंदियों से, कैद मिल्लत से, बगावत आदमी को पीसने वाली मशीयत से, बगावत हुर्रियत के देवता का आस्ताना है, बगावत हुर्रियत के देवता का आस्ताना है, बगावत असर हाजिर के सपूतों का तराना है।
2: तरक्की पसंद शोरा का पसंदीदा मशगला कौमी और अवामी मसाइल के मौजूदात पर शायरी करना था। इन मसाइल में 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक तरक्की पसंदों के नजदीक सबसे अहम मौजू वतन की आज़ादी था, जिसके जेर असर आए दिन रूनमा होने वाले हंगामी मौजूदात पर कही गई शायरी को बहुत जल्द मकबूलियत मिल जाती थी। इन सभी मौजूदात का ताल्लुक इंसान की खारिजी जिंदगी से है, जबकि इश्किया शायरी का ताल्लुक फर्द के दाखिली जज्बात से है। जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो तरक्की पसंद शोरा शोरी तौर पर इश्क व मोहब्बत के इजहार से गुरेज करने लगे। उनमें एक अहम नाम अली सरदार जाफरी का है। मिसाल के तौर पर उनकी नज़्म इंतजार न करना का ये बंद मुलाहजा हो। अजीब घड़ी है, मैं इस वक्त आ नहीं सकता, सुरूरे इश्क की दुनिया लुटा नहीं सकता, मैं तेरे साजे मोहब्बत पे गा नहीं सकता, मैं तेरे प्यार के काबिल नहीं, प्यार न कर, न कर खुदा के लिए मेरा इंतजार न कर।
0: अली सरदार जाफरी ने शायरी की दुनिया को कई मजमूए दिए, उनमें अवाम की कशमकश और उमंगों की अक्कासी होती है। अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी की शुरुआत अफसाना निगारी से की, लेकिन जल्दी उन्होंने शायरी की राह इख्तियार कर ली और बाद में इसी सिंफ सुखन में जौहर दिखाते रहे। उर्दू अदब में दो तहरीकों का नाम बतौर खास लिया जाता है, एक अलीगढ़ तहरीक और दूसरी तरक्की पसंद तहरीक। अलीगढ़ तहरीक बुनियादी तौर पर अंदरूनी मुल्क की तहरीक थी, जो एक कौम की इस्लाह की खातिर वजूद में आई थी। उसके बरक्स तरक्की पसंद तहरीक मार्क्सी नुक्ते नजर की तर्जमान थी और उसने बहुत कम अरसे में पूरे मुल्क में कबूलियत का शर्फ हासिल कर लिया। 1936 में अपनी शुरुआत से ही इस तहरीक ने अपनी मजबूत पहचान बना ली। इसी अहद में अली सरदार जाफरी की जहनी साख की तामीर हुई। उनका एक शेर मुलायजा हो, अपने हाथों से तशद्दुद को मिटाना होगा, अपने हाथों से तशद्दुद को मिटाना होगा, आनो संग की दीवार को ढाना होगा। शुरू में अली सरदार जाफरी के यहाँ रूमानी असरात नजर आते हैं। वो अपने जज्बात और ख्यालात को रिवायती अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन उस जमाने में भी उनके यहाँ वतन दोस्ती और इंसानी कदरों की अजमत का एहसास मिलता है। अली सरदार जाफरी बिलखसूस जोश की इनकलाबियत और घन गरज से ज्यादा मुतासिर नजर आते हैं।
2: सरदार जाफरी की शायरी का हकीकी खदोखाल वहाँ नजर आता है, जहाँ रूमान और इनकलाब सीरो शकर हो जाते हैं। मसलन उनके मजमुआ पत्थर की दीवार की गजलों के अशार मुलायजा हो।
1: इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम।

मीडियम वेव से एक हजार इकहत्तर किलो हर्ट्ज मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। आज का ये प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपका दोस्त आपका होस्ट नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब और सभी सामयीन को आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ही के दिन सन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम पड़ा था ऑल इंडिया रेडियो, और फिर 1956 में इसको आकाशवाणी का नाम दिया गया। अगर आज की बात की जाए दोस्तों, तो आज जश्न का माहौल है और खासतौर पर हमारे यहां आकाशवाणी में एक खसूसी प्रोग्राम स्पेक्टर के नाम से मुनक्किद किया गया रंग भवन में। आकाशवाणी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 591 स्टेशंस और इसकी पहुंच की अगर बात की जाए हिंदुस्तानी आवाम में तो 98% है। मुख्तलिफ जबानों में ये नशो होती है। हवा के दोष पर आप से हम मुखातिब होते हैं, हम आप तक पहुंचते हैं, हमारी आवाजें पहुंचती हैं, हमारे प्रोग्राम आप तक पहुंचते हैं, जिसमें आप नगमे भी सुनते हैं, फीचर्स भी सुनते हैं, ड्रामे भी सुनते हैं, मालूमाती प्रोग्राम भी होते हैं, फीचर्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम आप तक पहुंचते हैं। बहरकैफ आपका हमारा ये रिश्ता आज के बाद और मजबूत होगा, एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे।

0: आंखों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: जब जनाब चाहत हो और मोहब्बत हो तो फिर दूरियां कैसे मिटती हैं, ये आपने महसूस किया होगा और महसूस हुए होंगे आप इस नगमे से जो इस बात की अहमियत को उजागर कर रहा था। तुमसा नहीं देखा फिल्म का यह नगमा था आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, ओपी नैयर की थी मौसीकी। और जहां तक फरमाइश की बात है तो बहुत सारे दोस्त लाइन लगाकर, जी हाँ बिल्कुल कतार में है सब, ईमेल के जरिए यूं लगता है जैसे बस हमारे रूबरू हैं। चलिए तो जनाब शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि इनको संभालना जरा मुश्किल हो जाता है, जैसे बारिश होती ना उसी तरह का कुछ नजारा होता है हमारे स्टूडियो में हमारी स्क्रीन पर। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से पहला ईमेल शामिल करें मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार का। और गांव दुल्लापुर मुरादाबाद से हैं मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार और उनके अहल खाना। और ये फरमाइश आई है कदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान की। और आते हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, दान खान गंज टुंडवारा से, अजालता, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम कोल सिटी बरकाकाना से शामिल हुए ईमेल के जरिए। और तामिशाद प्रोग्राम में अगला ईमेल है मच्छिंद्रा पाटिल, कल्पना पाटिल, बुरोले नगर चोपदा महाराष्ट्र से। और ही फरमाइश दातागंज बदायूं से मौसूल है शरीफ अहमद सैफी, बेगम रेशमा सैफी की। और पहले नगमे को आप भी सुन रहे थे, आप हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत रकम और साथ में उनके रुबीना वसीम। सलाही सोकनाहा नेपाल से फरमाइशी अरुण कुमार शर्मा, रेणुदेव शर्मा, राहुल कुमार शर्मा ने। और आप हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। और जंक्शन पर राजकोट से प्रभदास कोटीचा, हंसा कोटीचा और आशीष की फरमाइश भी थी। एसएम जावेद शगुफ्तान्यम टावर चौक गुमला झारखंड से शामिल हुए। और ये ईमेल मिला है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का। और इसी नाफे को एंजॉय कर रहे थे मोहम्मद यासीन अंजान और साइमा और साथ में बाबू अहद गेडी झारखंड से आपने फरमाइश हमें साल की। शहबाजपुर कला कस्बा पाकबड़ा जिला मुरादाबाद से फरमाइश की मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज और मुजक्किर बाबू ने। और ये फरमाइश ईमेल टैगोर गार्डन नई दिल्ली से मिला रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। और आपने भी आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने पर

मुबारकबाद दी, तो आपको भी और सभी सामईन को इस खास दिन की मुबारकबाद। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से सुन रहे थे पहला नगमा, और दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से फरमाइश की बसंत कुमार सिन्हा, अजय और तनुश्री गुप्ता पूरा नाम है इनका, और साथ में अनविका बेबी, मनोवर लल्ला पीरजादा, नसीन मिर्जा, अरबाज शहबाज पश्चिम थोक गंज टुंडवारा से, और ये फरमाइशी मेल गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से मिला, बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष का। और इसी नगमे से महसूस हो रहे थे राम देवड़ा से दिनेश चौहान, और आप हैं अनिल जैन, संयम जैन, मास्टर जीपीएम जैन, मलियान सरधना मेरठ से, और यूपी के अलीगढ़ से फरमाइश है सलीम अख्तर और रेशमा बेगम की, और अगला ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हो गया, इसको करना पड़ेगा साइडलाइन। सांगली जतशह से अल्ताफ उजे, सैफुल्ला और सबाहत उजे की फरमाइश थी, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल व राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर और अक्षय रामेकर का। और अब बारी है अगले नगमे की, और अगला नगमा है शमशाद बेगम की आवाज में बहार फिल्म से, एस डी बर्मन की है मौसीकी। तो चलिए जनाब ये नगमा तो सुनवाते हैं, लेकिन पहले नाम शामिल करना चाहेंगे। अनिका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार साथ में कुलदीप गांधी, सुनने के मुंतजिर इस नगमे को। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, और मुझे लगता है पहले शायद ये शामिल हो गए जनाब अनिल शर्मा साहब, अगर ऐसा है तो दूसरे दोस्तों से मादरत। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, और सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, साथ में प्रतीक मल्होत्रा। शाहीन परवीन सोनम, मारिया शेख, मोहम्मद अरीफ शेख, बांद्रा आर्मकोट मुंबई ईस्ट से सुनना चाहते हैं तामिल शाद प्रोग्राम का अगला नगमा, और इसी नगमे को आपने भी पसंद किया है। मुल्लापुर दाखा से हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, और ये फरमाइशी ईमेल करनाल से मिला है बलविंदर सिंह सोडी साहब का। अगले नगमे के लिए आप भी मुंतजिर हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार जमशेदपुर से, और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, साथ में शीतल राजेश, और ये फरमाइश आई है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, साथ में है सागर बालूजा। आसिगांव बाजार से फरमाइश की करण रंजीत पुनकर ने, अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं, आप हैं शाहरुन नूर अंसारी, तस्लीम अंसारी और मोइन अंसारी, और मटकली बरेली से आपकी फरमाइश थी। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अगला नगमा लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, साथ में है शैलेश, और ही फरमाइश मौसूल हुई है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे और रेखा पांडे की जानिब से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशत जहां और अजीम खान, और आप हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली, चंद्रनगर सहारनपुर से। अगला ईमेल मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से मिला विजित कोहनकर राही, सरिता कोहनकर, अर्जुन कोहनकर डुग्गू का, और राहुल मनवर, सरला मनवर, बेबी प्रियांशी हैं शाहू नगर यवतमाल से सुनने के मुंतजिर अगले नगमे को। नागेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नाहकर और अहले खाना, और राम सुब्रत चौधरी साहब हैं कोलकाता से जो सुनना चाहते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा। तो आइए महसूस होते हैं शमशाद बेगम की इस खनकती आवाज से।

तो ये था बाहर फिल्म का नगमा शमशाद बेगम की आवाज में, और तामिल शायद प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज में दिल ही तो है फिल्म से साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ नगमा मौसीकी रोशन की है। और फरमाइश किस किस की है ये भी जानना चाहेंगे जनाब। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, तुषार करंगले, और ये फरमाइश आई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, साथ में है उनके हमेशा की तरह बिमला अनेजा। और आपने भी आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया जनाब आपका। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद का, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर है मोटाला महाराष्ट्र से। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है राजकुमार विद्यार्थी, सवितरादे विद्यार्थी, बुल्केवाली फलनाजा का, गोकुल चौक, गंगजला, सहरसा, बिहार से। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करना पड़ेगा रनआउट जैसे इंडिया ने किया अफगानिस्तान को रनआउट। आकुट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे और साथ में शुभम बेंडे। और भोला कॉलोनी घरौंदा जिला करनाल से फरमाइश की विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन और उनके कुछ और साथियों ने। और ये फरमाइशी ईमेल बिलाम गेट कासगंज से मिला है मसलम सैफी, जेबुल निसा और आबाद खान का। और आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, साथ में भानु प्रकाश, उत्तम नगर दिल्ली से। ये फरमाइशी ईमेल ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय का है, कोर्ट व नारायणपुर पट्टी बलिया से आपने फरमाइश हमें भेजी है। और अगला ईमेल फिर हो गया रिपीट, इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा। अहमुद्दीन बनट्टी, मुमताज बनट्टी, रियाज बनट्टी हैं गढ़ मोहल्ला महालिंगपुर से। और अब शामिल हुए शबनम अकरम और फरजाना ठीकरी एमपी से। ईमेल के जरिए

एक और एंट्री की है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन और हेमलता देवांगन ने। एक और से मतलब ये अगले सामने है, एक और दोबारा, यानी कि इनकी एंट्री नहीं है, एक ही बार शामिल हुए जनाब। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, आशीष गौड़ सुनने के मंत्र थे अगले नकमे को, और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा, जफर मुअज्जम शेख, पलक तबस्सुम साथ में, बेबी अलिस्बा शेख, रघुवीर नगर दिल्ली से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। रजाक मोहम्मद, इमरान खान, इरफान खान और उनके कुछ और साथी हनुमानगढ़ राजस्थान से। ये अगला ईमेल मौसूल हुआ है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हमारे मुस्तकिल सामईन नासिर शेख, नाजिया नासिर और साथ में साजिद शाहिद। और अगला ईमेल उसके साथ भी वही रवैया जो हमने पिछले रिपीटेड ईमेल्स के साथ किया है। साधु शहर से अगला ईमेल राजस्थान से है, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, और जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान की फरमाइश भी होनी जा रही है मुकम्मल। और ये फरमाइश आई है जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और प्यारी सी गुड़िया है इनकी वेदा सिंह, और आपका भी खैर मकदम है। गुवाहाटी असम से हैं हरेन पांड्या, नरेन पांड्या साथ में, वीरेन पांड्या और इसहाक मोहम्मद साथ में, उनके खदीजा बेगम और मोहम्मद अल्ताफ भी हैं। चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान साथ में, रवनीत निशो मुख्तसर पंजाब से, और किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया विशाल सपकाल शास्त्री नगर बीड शहर से सुनना चाहते हैं अगला नकमा। इसी नकमे को सुनने के मंत्र थे भाटापारा से हरविंदर चावला, सोन जोशी और शिव कुमार शर्मा।

साहब, दिल तो बहुत मायने रखता है और ये इतने राज दिल में छुपा कर रखता है। जी हाँ, दिल बहुत वसी है और न जाने क्या क्या इसके साथ रहता है। चलिए तो जना, दिल की बातें और मोहब्बत की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन नगमा भी आपको सुनवाना है, नाम भी शामिल करने। रघुवीर नगर से शामिल हो रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब। ईमेल के जरिए तामिल इशाद प्रोग्राम में अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं। आप है अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे और शुभम साक्षी खुशी, कुछ इस तरह से एक नाम मिलाकर लिखा गया है। अब ये सही नाम क्या है ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। वाडी खामगांव से ये ईमेल मौसूल हुआ है। और मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर साथ में हैं, अनिकेत और उनके कुछ और साथी। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर की फरमाइश है जयपाल यादव के साथ, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से। और आप हैं शुभ दले, साथ में उनके हैं सविता दले, अनिकेत दले, कुमार गली श्रीरामपुर से। और अगला ईमेल मिला है अनिल मोहन, उषा मोहन, मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। और आप हैं बबलू ठेकेदार, शेख वजीर, सोहेल शेख, मोटाला महाराष्ट्र से। और बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान की फरमाइश भी है अगले नगमे को सुनने के लिए। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं नगमा नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओंकार गायकवाड़। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया आज पूरी फौज के साथ हैं जज्जर हरियाणा से। कभी कभी बिट्टू साहब अकेले चले आते हैं या फिर साथ में सिर्फ रीटा होती हैं, और रजत और मयंक से होती है उनकी नाराजगी। चलिए तो आज मना लिया उन्होंने सबको। जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और महेंद्र प्रसाद, महेंद्र मोदी माफ कीजिएगा, ठाकुर साहेब हैं, साथ में ठकुराइन साहिबा भी हैं रामगढ़ कैंट से जो सुन रहे हैं इस वक्त तामिल इशाद प्रोग्राम। और राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा गांव हंडी खेड़ा से हैं, सिरसा से। और ये फरमाइश मिली है शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख, बेबी मुस्कान की, गणेशपुर गंज डंडवारा एटा यूपी से। अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल अक्टावर, जयलक डावर है, नागचुम रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है असली नकली, हसन जयपुरी का लिखा हुआ नगमा है। और जहां तक मौसीकी की बात है तो तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: चेहरे के साथ साथ आंखें भी कभी कभी चुगली कर देती हैं। जी हाँ, जो बात आप जुबान से नहीं कह पाते वो आंखें भी कह जाती हैं। बहरकैफ, ऐसे ही चंद खूबसूरत नगमे आप तक पहुंचाते रहेंगे आकाशवाणी उर्दू सर्विस की जानिब से तामिल शायद प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम अभी जारी है। दोस्तों, आइए पहले सुनते हैं खबरें बरसग़ीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन, और उसके बाद यकीनन ये सिलसिला जारी रहेगा आपका और हमारा।
1: ये आकाशवाणी है, बरसग़ीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्लह अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अता किये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से नवाजा। आज शाम राष्ट्रपति भवन में दिफाई अवार्ड दिए जाने की एक तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किये। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख ने रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शौर्य पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मिनाटिच सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्त गिर दहशतगर्द को हला किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हसूल में एक अहम संगी मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रूपये तक की सानवी और अला दर्जे के इलाज की सहूलत फराहम करती है। इस स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किये। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शोविंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मुफाहमत नामे पर दस्तखत किये गये। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है। जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। जनाब अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के अवाम को फायदा पहुंचाएगी अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के नफाज से रियासत के

शामिल करेंगे। तमाम चेन्नई से शाहिद अली, इफ़त फारूकी और हिफ्जा अली जो सुन रहे थे झूला फिल्म का ये नगमा, और जिला मुरादाबाद गांधुलापुर से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, साथ में सोनू सुरेश और ये फरमाइशी मेल मौसूबा। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मूरज जंगेल और अजीत कुमार का, और कुछ और साथी भी इसमें शामिल हैं। गुजरात के गांधीग्राम से फरमाइश की प्रवीण सोनी, करवती सोनी और प्रथम सोनी ने, और आप हैं रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, भानु प्रिया, किशनगंज बिहार से। यवतमाल विदर महाराष्ट्र से सुनना चाहते थे इस नगमे को संतोष खट से और विनोद खट से, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से। कैलाश चंद सोनी, गोविंदा उत्तम कुमार सोनी है बीकानेर राजस्थान से जो सुन रहे थे इस नगमे को, और इसी नगमे को पसंद किया था भोपाल से चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शित ने, और दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी थे शनि मंदिर चौक खंडवा से। और अगला नगमा

0: शाह, छोटे वाले अकाजत मुंबई से फरमाइश की है अहमद भाई सदफ आरजू और अहले खाना ने, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनीजा, पूनम कगनीजा और निशानी और उनके कुछ और साथी।
1: जो इजाजत हो तो एक बात कहूं, जो इजाजत

मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है दोस्तों कि क्या नहीं जाता बल्कि हो जाता है। कहते हैं ना मोहब्बत हो जाती है की नहीं जाती, वाकई ऐसा है। और कब किस पे आपका दिल आ जाए ये बात जो है कुदरत पर इसका इन्हिसार है। चलिए तो जनाब हमारा इन्हिसार तो इस बात पर है कि आपके ज्यादा से ज्यादा नाम शामिल हो जाएं, अच्छे से अच्छे नगमे और ज्यादातर नगमे आप तक पहुंच जाएं, बस ये हमारी कोशिश रहती है और इसी कोशिश में आगे बढ़ते हैं। और अगला नगमा आपकी नजर करते हैं। फिलहाल तो इस नगमे के बारे में बता देते हैं, मुकेश की आवाज में था ये नगमा जो आप सुन रहे थे। फिल्म थी ब्लफ मास्टर, राजेंद्र कृष्ण ने इस नगमे

लिखा और कल्याण जी आनंद जी की थी मौसीकी। और अब आपकी नजर करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आरती फिल्म का दो गाना। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ रोशन की है मौसीकी और इस नगमे को सुनने के लिए बेताब है हमारे बहुत सारे सामईन। नाम शामिल कर लेते हैं जल्दी से। वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, साथ में पिंकी अरोड़ा और ये फरमाइश मिली है। नवस्ती गंज डंडवा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी की और शबनम अनवार हैं, साथ में उनके डॉक्टर दबीरुल हसन। भुवन प्रकाश गौतम भी अमीर खुसरो रोड गंज डंडवारा से हैं। सुनील सामक अंजलि सुनील की फरमाइश है। महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिडको संभाजी नगर से और आप हैं तिवर्ता डबरी पारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम और साथ में जया मरकाम। और गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार, और इस सुतार नाम के लड़के ने काम कर दिया, कमाल कर दिया और अफगानिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। जी हाँ, बहुत उम्दा बॉलिंग की उन्होंने। और पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और यह फरमाइश मौसूले गांधी नगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार और हर्ष और उन दिगर साथियों की। और ये नए नाम है कुछ गांधी गुजरात से जो है, गांधी नगर से। बहुत खैर मकदम जनाब, आपका खुशामदीद कहते हैं आपको। और जो सरनेम है हालांकि वो हमारे लिए जाना पहचाना है, बहुत पुराना है। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से भारतीय प्रकाश लंबाड़े, वैष्णवी हर्षल लंबाड़े, साथ में जहानवी और ये फरमाइश है। ये कल्याण मल का जिला बठिंडा, पंजाब से अमृत पाल सिंह, रामगढ़िया परविंदर और सचनूर भी साथ में शामिल है। इसी नाटक को सुनना चाहते हैं डॉक्टर गजानन कुमार, पद्मावती कुमार और मधुरा अकोला महाराष्ट्र से। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भी साथी हैं इसमें, पदमपुर श्री गंगानगर से हैं। और बरगद बेल हुबली कर्नाटक से हैं फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी। और अगला मेल सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से मिला है किशोर वडतकर का, शुभम वडतकर और पुन्नू वडतकर का। और आप हैं खानजीपी उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू अशरफ। हिना साबरी आयदल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम की फरमाइश है इमाम मंजिल गेड़े झारखंड से। और आप हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और कुलदीप और उनके बहुत सारे साथी। करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और अगला ईमेल मिला है कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका सुशांत नायक का, इसी नाखमे को सुनना चाहते हैं। मोहम्मद मुजीब शेख, जायना नावे शेख, बेबी अमीरा शेख, आशन अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं बचकामल, डॉक्टर बसंत भिरगु और मोतीलाल यादव, इसी नाखमे को सुनना चाहते हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा छत्तीसगढ़ के पलारी से आपने फरमाइश है मिसाल की है। और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, साथ में मीनाक्षी और मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री हैं छिपा कॉलोनी खंडवा एमपी से। और राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी है उगाला अम्बाला हरियाणा से, इसी नाखमे को सुनना चाहते हैं। राम सिंहपुर श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश उनके बहुत सारे साथी। और ये फरमाइश बुटाना वर्षिंग की महाराष्ट्र से मिली है। अमोल मानकर, शोभता मानकर, साथ में श्लोक कुमार। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। मराठवाड़ा से हैं आष्टी जालना से सैयद यूनुस, सैयद ओमान, सर तनवीर मसरत। और मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की फरमाइश भी अगले नखमे लिए। तो जल्दी से सुनवाते हैं खूबसूरत दुगाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

और इसी खूबसूरत दुगाने को पसंद फरमाया रश्मि जरना और भरत कुमार ने राजकोट से, और ये ईमेल मौसूल हुआ है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और उनके बहुत सारे साथियों की जानिब से, मुकेश भट्टा नीलम अंता और साथ में है निहारिका, खनेरा मोहल्ला पटियाला से आपने फरमाइश साल की, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मिराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फैज तकमे को, और शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, साथ में सुरीत रमेश साहू बक्सर बिहार से, मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, साथ में मोहम्मद रिजवान बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, साथ में करुणा वर्मा, और गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बरासा और विकास बरासा।

और दोस्तों हमें भी याद है कि नाम शामिल करने वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे की फरमाइश, जलगांव जामोद, बुलाना महाराष्ट्र से मिली है अगले नकमे के लिए। सरावा से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और ये फरमाइश मिली है। कंडेला बंद कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी की, और आप हैं नाथुराम शर्मा, सुरेश शर्मा और इंद्राज शर्मा, मंडी हरजीराम मलोट से। अगले मिले कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, वेदिका का अहमदपुर के गांव खंडवा से हैं, और साईनगर आरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, साथ में डॉक्टर प्रियंका काल पांडे, विनोद वंडलकर, वीना वंडलकर और विविधा वंडलकर हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से सुनने के मुंतजर अगले नकमे को। और ये फरमाइश मिली है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू की, इसी नकमे को सुनना चाहते हैं। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और मोहम्मद रुकनुद्दीन मंडाल, शब्बीर बनट्टी, आसिफ इकबाल ने गुलबर्गा कर्नाटक से। अगला मेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। और आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दे रहे हैं गांव डाकघर निम्नाबाद चींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, लवप्रीत कौर और उनके बहुत सारे साथी, शुक्रिया जनाब आपका। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, साथ में संप्रीत पंचोलिया और बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवे, दर्द और अहले खाना। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं

दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक हैं, पहचानिया जालान यूपी से। और अगला ईमेल मास्टर नईम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी और नईम रजा सिद्दीकी का, पश्चिम थोक गंज डुंडवारा से। अगला ईमेल फिर रिपीट हुआ, इसको भी करते हैं साइडलाइन। के संजीव डाबीराव, डॉक्टर रसिका डाबीराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबीराव हैं विदर्भ आकोट से, सुनने के मंतजर अगले नकमे को। और शाहरुख फारूक और शबनम है जय विहार नजफगढ़ से, ये फरमाइश आई है। गन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली की आपने भी मुबारकबाद दी है, आकाशवाणी के इस जश्न में वो शामिल हो रहे हैं, शुक्रिया जनाब आपका। मोहम्मद करीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी रेलवे रोड गंज टंडवारा से हैं, पंजाब रामटेके यशोधरा और शव्य हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से, ये फरमाइश मिली है। वैशाली शैलेश गोहनकर, सुमित गोहनकर ध्वनि की आगा हाइट्स बहादुरा नागपुर से। और अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। और ये फरमाइश ईमेल शिव कुमार चौहान संक्रांति और रितेश का है, बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं। और गुरप्रीत सिंह बिलिंग साथ में हैं, वीर सिकंदर सिंह बिलिंग डंगेड़िया सरहिंद पंजाब से। और सोमदत्त, गोमंत कौर और मनो की फरमाइश है, पटियाला पंजाब के नाभा से। सिद्धार्थनगर दरपुर बाबी से गजानंद नीले, नवदीप साथ में सुशील और सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू कृष्णा कॉलोनी हासी से हैं, सुशांत प्रिया झा मास्टर निवेश कुमार हैं और साथ में लड्डू कुमारी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर नई दिल्ली से। धन्य चीपा, पूजा परिहार, कपिल चीपा भोपालगढ़ राजस्थान से हैं, आपने भी मुबारकबाद दी आज के खास दिन की, शुक्रिया आपका। अगर हमें फिर रिपीट होगा, इसको भी करते हैं साइडलाइन। मधुसूदन भट्ट साहब के साथ में आज कौन कौन है ये भी देख लेते हैं जनाब। आरती भट्ट हैं, साथ में प्रयागराज भट्ट, जराज प्लॉट राजकोट से आता है आपका ईमेल। गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, रामरतन टॉकिस कोंडलवाड़ी से इस खास दिन की मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका भी शुक्रिया जनाब। पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री और घनश्याम भार्गव, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से। और अजमेर शरीफ से फरमाइश आई है, गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी की। और भूषण खेड़ा साथ में है, विशाल खेड़ा और विशु खेड़ा भी है, फाजिल का पंजाब से आपने फरमाइश है मेरे साल की है। अगला ईमेल भी रिपीट हुआ है। कैशाही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी, तहसील रोड गंज टंडवारा से हैं। और अगला ईमेल, जी हाँ ये शामिल हो चुका है, इसको भी साइड लाइन करना पड़ेगा। धरावी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और उनके कुछ और साथी, के आर साहू, आकाश और कमलेश हैं देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अगला ईमेल भी रिपीट हुआ है, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। पाणु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा हैं कुमार गली कोलगांव से। और ये फरमाइश आई है चीनी को ऐसे काले से, इंदुभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह की। तो आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

इसी नगमे को सुन रहे हैं। छोटी बलिया का जत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले इकबाल अहमद और इमरान अहमद और अहल खाना, और ये फरमाइश मिली है उन दोस्तों की जो हो गए हैं शामिल। रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू हैं, मामना हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से, और दुर्गा प्रसाद सैनी, इंतर सैनी, गौरव सैनी शनि मंदिर चौक खंडवा से शामिल हो रहे हैं। और ये फरमाइशी मेल मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा और निखिल वर्मा का, और बांदा यूपी से हैं फनी मंसूरी आदि, और साथ में फातिमा मंसूरी, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, रानी मुकेश।

पूछे हैं राजनगर कांति निकेतन से और डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमिद सिद्दीकी शाहनवाज अहमद सिद्दीकी हैं पुरानी मिलाई 3 चरादा छत्तीसगढ़ से और मास्टर विट्ठल सुरोशी मायरा और सुषमा हैं काटा रोड वाशिंग से और ये फरमाइशी ईमेल मिला है मदरसा गेट भोपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान निषाद और अजरा तबस्सुम का और आदर्श मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा और निवान शर्मा सलामी चौरसिया सुबोध चौरसिया यूपी से आपने फरमाइश इरसाल की है आज जगह का नाम नहीं लिखा लेकिन जहाँ तक हमें याद है आगरा से आपकी फरमाइश हमें मिलती है और तेलंगाना भोंगी से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और ये फरमाइशी मेल मिला है आनंद राज सागर तरलता सागर का चांदखेड़ा अहमदाबाद से और रोहिल नगर राजकोट गुजरात से धनेश सेजपाल और विहान खुंट अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले देवयानी साथ में गणेश कामले और फरमाइशी मेल भारत भूषण साहब का साथ में अंजू श्रीवास्तव व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आपने फरमाइश मिसाल की है और कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना और अहले खाना और सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदु पार्वती साथ में कुछ और साथी भी हैं हीरावाली फाजिलका से आपने ये फरमाइश मिसाल की और जाते जाते एक और नकमा मोहम्मद रफी और राशि भोसले की आवाजों में आपकी नज़र करते हैं फिर है माल रोड

और इसके नगमे से महसूस हो रहे हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और मयंक शर्मा, मोहम्मद कलीम अंसारी साथ में हैं, जाहिरा बेगम और मोहम्मद अयान गणेशपुर गंज टुंडवारा से, एम ए वहीद रोमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी हैं औरंगाबाद तेलंगाना से, और वलीउल अंसारी, असमानाद अंसारी, मोहम्मद सुल्तान पुराना तालाब डुमराव से शामिल हुए, गन्नौर से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज और अहले खाना, और तख्तपुर छत्तीसगढ़ से हैं मिश्राल विश्वकर्मा, मीरा देव विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। 90 साल आकाशवाणी के मुकम्मल होने पर आपने भी मुबारकबाद दी है, शुक्रिया जनाब। और गानीबाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और कुछ और साथी, और सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुक, अश्विनी चुक साथ में, गोविंद चुक, मोहम्मद सारिफ, मोहम्मद शाक अहमद, मोहम्मद शराब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावत से शामिल हुए, और हरियाणा के रोहतक से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, और छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन, विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू हैं रामगंज खंडवा से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज का, और आप हैं फैसले माँ, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल अररिया बिहार से, और दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता, और ये ईमेल तो बहुत पहले शामिल हो चुका है जनाब, आप क्यों परेशान हैं। और अगला ईमेल मिला है अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक हैं नेहरू पार्क जहाँबाद तेलंगाना से, और ये था इस प्रोग्राम का आखिरी नहीं, एक और ईमेल है बुराव के नगर श्रीरामपुर से मानोज जेठवा और हर्षा जेठवा, और ये थी तानाशाह प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है चंद कवालिया, फनकार हैं सरफराज साबरी कवाल और हमनवा।

0: अभी आप कव्वालियों से महसूस हो रहे थे, फनकार थे सरफराज साबरी, कव्वाल और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी हैं। शब के 12 बजे हैं, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से आलमी खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराए से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम को नाफिज किया गया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। भारत ने मगरबी एशिया में ताजा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि यह ताजा पेशरफ पूरी बैनुल अक्वामी बिरादरी के लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वजारत ने सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की अपील भी की ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सिफारतखाने ने भी ताजा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। उसने ये सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफर के दस्तियाब वसायल से ईरान से चले जाएं। भारत ने तरमीम शुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी जरात से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खसूसी तौर पर अहमियत की हामिल है क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिल वक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर्स है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से नवाजा। कल शाम राष्ट्रपति भवन में दिफाई अवार्ड दिए जाने की एक तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अदा किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवत और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख ने रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्त गिर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में एक अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफिदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपए तक की सानवी और आला दर्जे के इलाज की सहूलियत फराहम करती है। इस स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने कल नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शोभिंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है। जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। जनाब अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के अवाम को फायदा पहुंचाएगी अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों मुस्तहिक मुस्तफिदीन को फायदा पहुंचेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किये। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल निफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली जमीनों मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निजाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके माविन दरियाओं के माहौलियाती निजाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो जंगलात और माहौलियाती निजाम की बहाली के लिए वक्फ है। भारत के जंगलात और दरख्त 8.27 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित हैं जो मुल्क के जोग्राफियाई इलाके का 25% से ज्यादा है। भारत कुल जंगलाती रकबे के लिहाज से दुनिया में 9वें मकाम पर पहुंच गया है। 2024 में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था जो दुनिया के सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने कल अपने क्याम के 90 साल पूरा होने का जश्न मनाया। 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह तारीखी दिन मुल्क की सकाफत इत्तलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कल बेलिया पेश किया गया। भारत ने कल उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दी। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी

0: छोड़ दिया है। ये जीत भारत की जबरदस्त गेंदबाजी कारकर्दगी की भी अक्कासी करती है, जहां मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान के 15 खिलाड़ियों को आउट किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराए से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला फौज और पुलिस अहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अदा किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए, अब सुनिए उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद पर बजाया राग देवगिरी बिलावल।

गिरी बिलावल। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आखिर शब इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। आगाज सीमा फिल्म के नगमे से, आवाज लता मंगेशकर की।

0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमी तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं।

0: نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है. यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं. वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है. ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत चटक बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है. तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है. मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया. नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा. उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा.
2: डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है. भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे. इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं.
1: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है. अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं. क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है. ब्रिटेन के कार्डिफ में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई. भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा. भारत इस महीने की 14 तारीख को एडजस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the armed forces, central armed police forces and state and union territory police. The awards were conferred during the defence investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed police forces were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage, with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal Government signed a Memorandum of Understanding in New Delhi for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday met with West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari in New Delhi to discuss ways to accelerate West Bengal's development journey. The issue of credit availability in the state across various sectors and the implementation of central government schemes were also discussed. Finance Minister Sitharaman announced that in close coordination with the state government, a renewed saturation drive of flagship schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and PM Swanidhi will be undertaken to cover every eligible beneficiary. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal shared these remarks while addressing the Global Ambassador Meet on the pharmaceutical sector and the curtain raiser ceremony of the Global Drug Regulators Conclave 2026 and International Exhibition of Pharma and Healthcare 2026 in New Delhi yesterday. He noted that India has signed 9 free trade agreements in recent years and now has trade agreements covering more than 50 countries, providing preferential market access across most of the developed world. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries, while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday. According to the Union Ministry of Steel, the accident occurred at around 4:15 PM during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The ministry stated that a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel from the ladle into the tin dish. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief of the loss of lives in the accident at the Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh. Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired a high-level review meeting in New Delhi on the rejuvenation of the Yamuna River. Addressing the meeting, Mr. Shah said that the clean and pristine Yamuna is a collective result under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and called for coordinated efforts by the governments of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh along with the concerned ministries under an integrated action plan. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off Test in New Chandigarh yesterday. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's

0: down in bowling performance. It saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this year's bulletin.
1: यही आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों समय हुआ है 1:10 और 5 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गीतों का एक बेहतरीन कार्यक्रम होता है। जी हाँ, सुनहरे नाम से ही प्रतीत होता है कि सुनहरे यानी कि गोल्डन। जी हाँ, गोल्ड बिल्कुल उसी तरह खरा सच्चा और बेहतरीन खूबसूरत सोना, और उसी प्रकार से एक बेहतरीन लाजवाब गीत भी। इसीलिए कहा जाता है गोल्डन एरा। जी दोस्तों, और ऐसे जो गीत होते हैं 1931 से लेकर लगभग 1965 तक का ये एरा माना जाता है। तो इसी खूबसूरत कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतर्गत आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और बेहतरीन खूबसूरत रचना से आगाज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये सुंदर बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गीत, चलो देखो आगे पीछे। जोम की पुकार फिल्म से एक शानदार खूबसूरत रचना है, जो 1979 की फिल्म रही है। मन्ना डे की आवाज में खूबसूरत रचना और संगीत से सजाया है सोनिक उम्मीद ने। आइए सुनते हैं पहला सुंदर नगमा।

चांद के पीछे पड़ा है रात, चांद के पीछे साइंस पड़ी।

गंगा जी के तुला लगी है, तुला जी के अमन वाला।

पीछे कौन है देखो आपके पीछे आपके पीछे मजहब लगे हैं मजहब के पीछे पढ़ी है नफरत।

जी दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, संदेश प्रद, खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है फिल्म दास्तान से। जी हाँ, सुरैया और कोरस की आवाज में शानदार रचना, फिल्म दास्तान से। ऐ मेरे दिल में तू, आया मेरे दिल में तू। दास्तान फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत शकील बदायूं के हैं और संगीत नौशाद का। आइए सुनते हैं ये सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही अनसुना और बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही अलग काइंड ऑफ सॉन्ग, वाकई बहुत ही प्यारा। और ये जिस गीत के बारे में हम बता देते हैं, ये गीत किस फिल्म का था? जी हाँ, ये फिल्म थी दास्तान। जी हाँ, आया मेरे दिल में तू, सुरैया की आवाज में सुंदर खूबसूरत गीत। ये फिल्म दास्तान 1955 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का था। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर मधुर गीत है ये खास तौर से। और अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, प्यारी सी गुड़िया होती है, उन्हीं पर दर्शाया हुआ और खूबसूरत मधुरता के साथ गाया हुआ लता मंगेशकर की आवाज में सुंदर रचना फिल्म सीमा से, जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही। संगीत से सजाए हैं शंकर जय किशन ने इस खूबसूरत गीत। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही मधुर सुंदर मार्मिक नोट पर खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और ये गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ, रमैया वस्तावैया, फिल्म 420 फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश और साथ दे रहे हैं कोरस यानी कि साथी। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

दोस्तों, वाकई रमैया रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता बस्ता, वाकई वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई रमैया बस्ता भैया, फिल्म श्री 420 से। एक और खूबसूरत गीत आ रहा है तुमसा नहीं देखा फिल्म से, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना है। गीत संगीत से सजाया है उपी नैयर साहब ने। जी हाँ, इस सुंदर बेहतरीन गीत को तो आइए सुनते हैं। एक और खूबसूरत गीत।

क्या बात है, क्या बात है रही साहब की, क्या बात है। वाकई बहुत ही सुंदर अंदाज में शानदार खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे। जी हाँ साथियों, एक और खूबसूरत गीत की ओर बढ़ते हैं और ये गीत है जमुना किनारे। जी हाँ, जमुना किनारे टाइटल है इनका गीत का। और फिल्म की अगर हम बात करें तो एक एल्बम है साक्षी गोपाल, मनोहर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुंदर रचना है ये। साक्षी गोपाल 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है और इस गीत को खासतौर से संगीत से सजाया है चित्रगुप्त ने। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत रचना।

बेहद बेहद खूबसूरत, जस्ट लाइक ए भजन। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, जमुना किनारे। जी हाँ, वाकई प्यारा सा गीत, लाजवाब। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा गीत है, और ये गीत आ रहा है आपके पास। एक फिल्म है, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, और इस फिल्म का जो गीत आ रहा है आपके पास, जी हाँ, एक फिल्म है, बहुत ही शानदार। और ये वाकई इतनी सुंदर खूबसूरत रचना है, हम क्या कहें। जी हाँ, फिल्म दाग से लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार गीत। फिल्म दाग 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है, और गीत हसरत जयपुरी के, और गीत और संगीत शंकर जयकिशन का। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना।

Who is to feed them?

साथियों, वाकई बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत रचना अभी आप सुन रहे थे, वाकई बहुत ही लाजवाब। हाँ, कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो दुख भरे होते हैं, मार्मिक होते हैं, लेकिन उन गीतों में बहुत ही सुंदर मधुरता का जो एक समावेश बनता है वो अलग बात है। लेकिन हाँ, दुख तो दुख ही होता है ना, तो दुख नहीं होना चाहिए जिंदगी में कभी भी किसी के साथ। और बस हम यही दुआएं करते हैं। और फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक और सुंदर और बेहतरीन गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म है, बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है। और इस गीत को भी हम अब सुनवाने जा रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर अनमोल गीत लेकर आ रहे हैं हम। जी दोस्तों, वाकई बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सुंदर सुंदर गीतों का जो समावेश बनता है, जो पुरानी फिल्में जो होती हैं, वाकई उनकी बात कुछ अलग होती है। तो आइए सुनते हैं, एक सुंदर बहुत ही खूबसूरत गीत है और ये गीत आ रहा है आपके पास। फिल्म कौन सी फिल्म है, कौन सी फिल्म है तो हम बता देते हैं आपको, ये कौन सी फिल्म का गीत है। जी हाँ, ये है नया दौर फिल्म से, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है और मोहम्मद रफी और बलवीर सिंह की आवाज में सुंदर

खूबसूरत रचना है और संगीत से सजाया है इस बेहतरीन गीत को ओपी नैयर ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत आज के कार्यक्रम गीत सुनाने की अंतिम रचना।

0: जी हाँ साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, 2 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के

0: पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक, जहाँ तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस R&D एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
0: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के साथ होगा और 14 जून को एडजस्टन में भारत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces, and state and union territory police. The awards were conferred during the defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kevath and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal Government signed a Memorandum of Understanding in New Delhi for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday met with West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari in New Delhi to discuss ways to accelerate West Bengal's development journey. The issue of credit availability in the state across various sectors and the implementation of central government schemes were also discussed. Finance Minister Sitharaman announced that in close coordination with the state government, a renewed saturation drive of flagship schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bhima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bhima Yojana, Atal Pension Yojana and PM Swanidhi will be undertaken to cover every eligible beneficiary. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal shared these remarks while addressing the Global Ambassador Meet on the pharmaceutical sector and the curtain raiser ceremony of the Global Drug Regulators Conclave 2026 and International Exhibition of Pharma and Healthcare 2026 in New Delhi yesterday. He noted that India has signed 9 free trade agreements in recent years and now has trade agreements covering more than 50 countries, providing preferential market access across most of the developed world. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday. According to the Union Ministry of Steel, the accident occurred at around 4:15 p.m. during the casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The ministry stated that a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel from the ladle into the tundish. Rashtra Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident at the Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh. Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each diseased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired a high-level review meeting in New Delhi on the rejuvenation of the Yamuna River. Addressing the meeting, Mr. Shah said that a clean and pristine Yamuna is a collective resolve under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and called for the coordinated efforts by the governments of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh along with concerned ministries under an integrated action plan. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings of 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh yesterday. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance and saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
4: यही आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों समय हुए 2:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम है हमारा। जी हाँ, हमेशा की तरह एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत का कार्यक्रम है।

0: गीत बहार।
1: जी हाँ,
0: गीत बहार फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप।
1: जी हाँ,
0: नॉन स्टॉप म्यूजिक ऑफ फिल्म सॉन्ग्स। वाकई दोस्तों बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत कार्यक्रम है और इसमें बिना रुके, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हड़ल के, लगातार बिना रुके खूबसूरत गीतों की रचना सुनने को मिलती है, हम सुनवाते हैं। और वाकई कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि भाई बीच बीच में यदि कोई हड़ल आ रहा है, कुछ और चीजें हो रही हैं या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ गीत वाकई लगातार चलते रहते हैं। तो फिलहाल सुनवा रहे हैं आज हम इस खूबसूरत कार्यक्रम में। जी हाँ, ये कार्यक्रम है गीत बहार फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत रचना।

इंसानों को भी गिरा दूंगा, बना के हाथ और फिर हाथ को उड़ा दूंगा।

0: लाल जी,
1: बोलो लाल जी।
0: अरे यार क्या नहीं यार,

0: बोलूं क्या मैं? अरे बोल कन्हैया।
1: आज की रात? हाँ, कल की बात। आज की रात, कल की बात। भाभी ने तुमने देखा, तुमने भाभी में

0: 你
1: बड़ी पावन है बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी।

0: श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharati Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewad and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage, with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal Government signed a memorandum of understanding in New Delhi for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday met with West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari in New Delhi to discuss ways to accelerate West Bengal's development journey. The issue of credit availability in the state across various sectors and the implementation of central government schemes were also discussed. Finance Minister Sitharaman announced that in close coordination with the state government, a renewed saturation drive of flagship schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and PM Swanidhi will be undertaken to cover every eligible beneficiary. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal shared these remarks while addressing the Global Ambassador Meet on the Pharmaceutical Sector and the Curtain Raiser Ceremony of the Global Drug Regulators Conclave 2026 and International Exhibition of Pharma and Healthcare 2026 in New Delhi yesterday. He noted that India has signed 9 free trade agreements in recent years and now has trade agreements covering more than 50 countries, providing preferential market access across most of the developed world. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtra Ispat Nigam Limited yesterday. According to the Union Ministry of Steel, the accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The ministry stated that a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel from the ladle into the tundish. Rashtra Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident at the Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh. Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired a high-level review meeting in New Delhi on the rejuvenation of the Yamuna River. Addressing the meeting, Mr. Shah said that a clean and pristine Yamuna is a collective resolve under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and called for coordinated efforts by the governments of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh along with the concerned ministries under an integrated action plan. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings of 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh yesterday. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले 1942 अलव स्टोरी फिल्म से यह खूबसूरत सा गीत।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। अब आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में दीवाना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज में देवदास फिल्म का ये गीत आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में मुस्कान फिल्म का ये गीत।

यहाँ कभी ना इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब सुनवाते हैं बादल फिल्म का ये गीत, जिसको आवाज दी है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: ब्यूटी, आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर।

0: कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में क्या कहना फिल्म से। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत और गजल अब यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

0: आप नाद ब्रह्म कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरंजनी। 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे प्रातः 6:10 पर। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन। श्री रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:45 पर। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 पर। 7:30 पर होगा हमारा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। दिन में 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9:30 से। 10:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे प्रातः 10:10 पर। दिन में 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। सुमंजरी कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:10 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT, ये कार्यक्रम होगा दिन में 3:00 से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। 5:00 को है, अब समाचार होंगे।
1: अच्छे आ रे आए तेग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

I'm gonna go.

वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएदा नदरू पट्टी जे कै सुल्ताना काओ कराएदा दर मंगण पेखना पाएदा दर मंगण पेखना पाएदा।

करे नानक के सो मिले ये कटे कर दे पहला जोर जोर सुनावनी आवा।

Thank you.